मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आज दिन है बुधवार, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 53 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहक के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर इस

0: वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी कि 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी दिल्ली का

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के

0: अगोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आइए सुनते हैं सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन विषय पर डॉक्टर ललन सिंह यादव की भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की सब्जियां आपके खेत में खड़ी हैं। खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से सह प्राध्यापक डॉक्टर LS यादव साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो भी सब्जियां इस समय खेत में हैं, तो उनमें कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन।
3: नमस्कार, इसमें जो सब्जियां खड़ी हैं आपके खेतों में, उसमें सबसे प्रमुख फसल बैगन की है और बैगन में एक कीड़ा लगता है, तनाव फल भेदक कीट जिसको कहते हैं। और इसमें किसान भाई देखे होंगे कि इसमें तने का ऊपरी भाग जो मुरझा करके है लटक जाता है। दूसरा यह है कि जो फल होते हैं वो भी अंदर से खराब हो जाते हैं, उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो आपका उपज खराब हो जाती है। तो ऐसी दशा में इसका प्रबंधन बहुत जरूरी है। और इसमें प्रबंधन में सबसे पहला किसान भाई बातें करें कि जो प्रभावित पौधा ऊपर से जो झुक गया है उसको कैंची से काट कर एक बैग में इकट्ठा करके उसको नष्ट कर दें। जो हमारे प्रभावित फल है उनको भी इकट्ठा करके नष्ट कर दें, तो इस तरह से जो और जो है कीड़े का पौधों में प्रसार नहीं हो पाएगा,
2: यानी पीढ़ी बढ़ेगी नहीं।
3: हाँ। और अगर इसके नियंत्रण की बात करें, प्रबंधन की बात करें
2: जी,
3: तो एक ट्राइकोग्रामा किलोनिस अंड परजीवी होता है,
2: यानी ट्राइको कार्ड लगाना पड़ेगा।
3: हाँ, ट्राइको कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके जो है 40,000 अंडे एक एकड़ की दर से अगर 3 से 4 बार अगर खेत में छोड़ देंगे, तो इससे जो है तनाव फल भेदक कीट का नियंत्रण करने में आसानी हो जाएगी।
2: यानी ट्राइको कार्ड हर 10-15 दिन पर बदलते रहे।
3: जी जी।
2: और इसके अलावा कुछ और जैविक उपाय?
3: हाँ, जैसे इसमें किसान भाई और कर सकते हैं, NSK ही होता है, नीम आयल, नीम के बीज का सत होता है।
2: जी जी।
3: उसका अगर 5% घोल बना लें और उसको भी छिड़काव करें, तो इससे भी जो कीड़े हैं संख्या जो है नियंत्रित रहती है।
2: और
3: इसका भी प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई।
2: या नीम का तेल मिल जाए?
3: हाँ, नीम का तेल मिल जाए तो नीम के तेल का 0.15% का एजाडिरेक्टिन के नाम से आता है
2: जी,
3: उस पर 1 लीटर ले लें और उसको 2 से 2.5 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ में छिड़काव कर दें, तो भी कीड़ों की संख्या जो है प्रबंधित हो जाती है।
2: डॉक्टर साहब, बैगन में कोई और हानिकारक कीट जो नुकसान पहुंचाए इस समय?
3: ये बैगन में एक और कीड़ा किसान भाइयों लगता है, जो सफेद मक्खी कहते हैं।
2: हाँ,
3: देखे हुए किसान भाई,
2: ये तो भिंडी भी और अन्य सब्जियों में भी नुकसान।
3: हाँ, अन्य सब्जियों में भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये देखेंगे कि पत्तियों के जो कोमल भागों से रस चूस कर जो है ना पौधों को नुकसान पहुंचाती है, तो जो चूंकि जो रस चूस लेती है तो पत्तियों की जो क्षमता जो है कम हो जाती है, कमजोर हो जाता है।
2: और विषाणु जनित बीमारियों को
3: भी फैलाती है,
2: पीला सिरा मोज़ेक रोग।
3: हाँ, पीला मोज़ेक रोग लगता है, या जो है लीफ कर्ल रोग रखता है, पर्ण कुंचन रोग रखता है
2: जी,
3: उसके जो है वाहक का काम करती है। तो इसमें ये आता है डेल्टा ट्रैप आता है या येलो स्ट्रिकी ट्रैप आता है, जिसमें अगर खेत में जगह जगह लगा देंगे तो इसमें जो कीड़े जो है चिपक जाते हैं, तो उनकी संख्या नियंत्रित हो जाती है। या नीम आयल का भी छिड़काव कर देंगे, 5 ml/L पानी के हिसाब से छिड़काव करेंगे।
2: कोई स्टिकर भी मिलाना पड़ेगा?
3: हाँ, अगर उसमें स्टिकर मिला लें तो चूंकि वो पौधों पर चिपक जाएगा तो उसका प्रभाव जो है ज्यादा आएगा।
2: अगर नुकसान का स्तर अधिक है तो कोई सुरक्षित रसायन? डॉक्टर साहब,
3: अगर नुकसान का स्तर अधिक है, 5 से 10 मक्खी प्रति लीफ दिखाई पड़ती है,
2: प्रति पत्ती।
3: हाँ, मतलब ये हो जाता है कि ये आर्थिक क्षति स्तर के ऊपर पहुंच गया है।
2: तब
3: इसमें एक थायोमेथॉक्साम 25% WG आता है, उसका अगर 80 ग्राम मात्रा ले लें, या इमिडाक्लोप्रिड आता है 17.8% का, इसका भी 80 ml मात्रा ले लें, तो इसको अगर प्रति एकड़ की दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर लें, तो इसका आसानी से जो कीड़ों का नियंत्रण हो जाता है। मिर्च में एक रोग है जो कि बहुत ज्यादा होता है, पर्ण कुंचन रोग
2: जी, पत्तियां मुड़ जाती हैं।
3: तो ये क्या विषाणु जनित रोग है, और इसमें पत्तियां छोटी होकर के मुड़ जाती हैं और इसे

0: पौधे ग्रोथ रुक जाता है, ये चूंकि एक सफेद मक्खी से फैलता है, तो अगर सफेद मक्खी किसान भाई नियंत्रित कर लें तो इसका जो है पर्ण कुंचन का प्रबंधन आसानी से हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाई हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 6393772828, 6393772828, 6393772828, 6393772828।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: एक किसान भाई से हम आह्वान करना चाहेंगे कि अपने फसल की जो है नियमित निगरानी किसान भाई करें।
1: डॉक्टर ललन सिंह यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन विषय पर अभी हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ललन सिंह यादव, और आपसे इस विषय पर भेंट की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण, और अब प्रस्तुत है आज का सुविचार संस्कार। मनुष्य का वास्तविक वैभव उसके ज्ञान या पद में नहीं बल्कि उसके संस्कारों में निहित है। ज्ञान किसी को बाहरी जगत का अधिकारी बना सकता है, किंतु संस्कार ही उसे भीतर से महान बनाते हैं। यही कारण है कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो विद्यार्थियों के चारित्रिक उत्थान और नैतिक परिष्कार का साधन भी थी। प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करते, जहां विद्यार्थी केवल गणित, व्याकरण, वेद वेदांग या अस्त्र शस्त्र चलाना ही नहीं सीखते थे, बल्कि सबसे पहले स्वनियंत्रण, अनुशासन और संयम का अभ्यास भी करते थे। गुरु का आचरण विद्यार्थियों के लिए एक जीवंत पाठ्य पुस्तक होता, शिष्य उनके आचार विचार से प्रेरणा लेते और जीवन में उन मूल्यों को उतारते थे। मनुष्य का मन यदि असंयमित हो तो वो उसका सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होता है। मन में उठने वाली वासनाएं, इच्छाएं और विकार व्यक्ति को भटका देते हैं। इसी को रोकने के लिए शास्त्रों में भी कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि मन विकारों में फंस गया तो वो पतन का मार्ग प्रशस्त करेगा, और यदि साधना द्वारा शुद्ध कर लिया गया तो वही मुक्ति का द्वार भी बन सकता है। एक विद्वान व्यक्ति यदि ईमानदार ना हो तो उसका ज्ञान समाज के लिए खतरा बन सकता है। एक बुद्धिमान यदि चरित्रहीन हो तो उसकी प्रतिभा विध्वंस का साधन बन सकती है। एक शिक्षित व्यक्ति यदि संवेदनहीन हो तो वो समाज को बांधने के बजाय तोड़ देगा। इसीलिए शिक्षा का पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि विद्यार्थी सुसंस्कारी और आत्मानुशासित नागरिक बने। संस्कार मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख सुविधा जुटाना नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए योगदान देना है। संस्कार हमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस देते हैं। वो हमें वाणी का माधुर्य, व्यवहार की शालीनता और आचरण की पवित्रता सिखाते हैं। वे लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचाकर हमें सेवा, सहयोग और परोपकार की राह पर ले जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, इन्हें टालना संभव नहीं, परंतु इन्हीं कठिनाइयों में ये परखा जाता है कि मनुष्य का मन कितना दृढ़ और संस्कारित है। आलस्य और प्रमाद मनुष्य को नीचे गिराते हैं, परिश्रम और आत्मसंयम उसे ऊपर उठाते हैं। स्वार्थ और छल जीवन को अंधकारमय करते हैं, त्याग और सेवा जीवन को दिव्य बना देते हैं। वास्तव में विपत्तियां ही वो कसौटी हैं जिस पर मनुष्य के संस्कार परखे जाते हैं। शास्त्रों और संतों ने बार बार यही शिक्षा दी है कि स्वयं को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। वाणी मधुर हो, कर्म पवित्र हो और विचार उदात्त हो, धन संपत्ति क्षण भंगुर है पर संस्कार स्थायी हैं। ये सत्य है कि भौतिक प्रगति आवश्यक है, परंतु यदि उसके साथ आंतरिक संस्कार ना हो तो वो प्रगति अधूरी और विनाशकारी सिद्ध होगी। आज जब संसार भौतिकता, स्पर्धा और उपभोगवाद की दौड़ में उलझा हुआ है, तब ये और भी आवश्यक हो गया है कि हम अपने मन को संस्कारित करें। विद्यालय और विश्वविद्यालय केवल विद्या के केंद्र ना होकर चरित्र निर्माण के तीर्थ बने। घर परिवार में माता पिता बच्चों को केवल सुविधाएं ही ना दे बल्कि अच्छे संस्कार भी दे। समाज को अपने उत्सव और परंपराओं के माध्यम से लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग और सेवा भाव जगाना चाहिए। संस्कारित मन ही जीवन को सच्चा वैभव प्रदान करता है। शिक्षा, धन, पद, प्रतिष्ठा, ये सब तभी सार्थक है जब उनके साथ आंतरिक शुचिता और सुसंस्कार जुड़े हों। जो मनुष्य अपने मन को अनुशासित करता

0: है सच्चे अर्थों में वो ही विजयी कहलाता है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और सच्चे अर्थों में मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है।
1: संस्कार। डॉक्टर शीबा राकेश के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 6:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है आस्था प्रार्थना आत्मा व परमात्मा के प्रेम भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम आराधना का।

आरती का पवित्र दिया भक्त की उस भक्ति का प्रमाण होता है जो उसे अपने प्रभु की भक्ति से जोड़े रखता है। हम उस पवित्र दिए को साक्षीमान अपने प्रभु की पूजा करते हैं और सदा के लिए प्रभु के पावन चरणों में समर्पित हो जाते हैं।

हे माँ गंगे, हम अज्ञानियों को आपकी अपार ममता का अभी तक कोई ज्ञान ही न था। हम तो यूं ही प्रेम और ममता की खोज में भटकते रहे, लेकिन अब तो मेरी यही लगन है कि आपकी अपनी माँ की भक्ति में लीन होकर उनकी ममता को पालूं। माता, अब हम आपकी शरण में हैं।

सही अर्थों में वास्तविक धर्म है मानव धर्म। हे मानव, यदि तू अपने हृदय में सत्य, शांति, दया व अहिंसा की भावना रखेगा तो ईश्वर तुझे अपने हृदय में ही मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर आस्था और विश्वास का केंद्र बिंदु है।

सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना भोलेनाथ कभी नहीं ठुकराते। अपने भक्तों के लिए उनके पास कृपा का अथाह सागर व्याप्त है। उनकी कृपा के भव्य सागर में सच्ची आस्था के साथ जिस किसी ने भी डुबकी लगाई है, प्रभु ने सदैव उसे उसकी भक्ति का मोल दिया।

श्रोताओं, हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय प्रसंग। आज सुनिए भाग 260।

शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति जिसके अभाव में जात पात, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य सभी निरर्थक और निष्फल होते हैं। इस प्रकार जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ होती है, वो शबरी को सहज ही प्राप्त हो गई। क्या उसे जनक नंदिनी सीता का कुछ अता पता है? श्री राम के इस प्रश्न के उत्तर में शबरी उन्हें पंपा नामक सरोवर जाने का परामर्श देती हैं, जहां उनकी भेंट होगी धीर बुद्धि वाले वानर राज सुग्रीव से। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। अतुलनीय शोभा युक्त वन में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, ये देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। राम लक्ष्मण को देखकर हिरण भागने लगते हैं, तो हिरनिया मानो उन्हें आश्वस्त करती हैं कि तुम्हें भयभीत होने का कारण नहीं, क्योंकि तुम साधारण हिरण के वंशज हो। ये लोग तो सोने का मृग खोजने आए हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग। स्वर सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल के थे और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।

0: रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: केरला इति लिखितम् आसीत्। राज्यसभया राष्ट्रिय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयकम् अपि पारितम्। सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहिल इत्यनेन उपस्थापितं विधेयकं निगमस्य गतिविधीन् औद्योगिकपण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमतिं ददाति। उभयपि विधेयके नीट विप्रतिपत्तिमधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलमध्ये चर्चां विनैव पारिते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य पूर्व राजस्थान ओडिशा प्रभृति प्रदेशेषु अतिवृष्टेः पूर्वाभासः प्रकटीकृतः। पंजाब उत्तराखंड गुजरात क्षेत्रेषु अपि अतिवृष्टिः संभाव्यते। आंध्रप्रदेश झारखंड कर्नाटक प्रदेशेषु विद्युतपात झंझावाताभ्यां सह अतिवृष्टि परा संचेतना च प्रसारिता। राष्ट्रीय राजधान्यां तावत् देहल्यां सायंकाले मेघाच्छादनेन सह मंद वृष्टिः संभाव्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं सुबह के 7 बज चुके हैं, आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी है, ये रोज हम आपको बताते हैं हमारी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं युवा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के बारे में। आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं उस वर्ग की जो किसी भी समाज की सबसे जीवंत शक्ति है, हमारी युवा पीढ़ी। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो हमें ये सोचने का अवसर देता है कि हम अपने युवाओं को वास्तव में क्या दे रहे हैं। सिर्फ शिक्षा और रोजगार की बात नहीं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनकी भावनात्मक भलाई और उनके जीवन में संतुलन की बात। आज के दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा, करियर की दौड़ और निजी जीवन की उलझने, ये सब मिलकर युवाओं पर बहुत गहरा मानसिक प्रभाव डाल रहे हैं। एक ओर उनके पास अवसरों की भरमार है, लेकिन दूसरी ओर उनमें असमंजस, अकेलापन, तनाव और आत्मसंदेह भी बढ़ता जा रहा है। कई बार ये समस्याएं इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि युवा खुद भी नहीं समझ पाते कि वे मानसिक रूप से परेशान हैं और धीरे धीरे वे खुद को दुनिया से काटने लगते हैं। श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य केवल गंभीर मानसिक रोगों से नहीं है, ये हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। जब कोई युवा पढ़ाई में अच्छा कर रहा हो लेकिन भीतर से टूट रहा हो, जब वो मुस्कुरा रहा हो लेकिन मन ही मन उदास हो, जब वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो लेकिन असल जिंदगी में एकाकी, तब समझ लेना चाहिए कि वहाँ मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है। और ये जरूरत उतनी ही वास्तविक है जितनी की शारीरिक स्वास्थ्य की। आज के समय में युवाओं को कई प्रकार की मानसिक चुनौतियाँ झेलनी पड़ती है, जैसे कि परफॉर्मेंस प्रेशर, बॉडी इमेज की चिंता, सोशल मीडिया पर तुलना, परिवार की अपेक्षाएं और कई बार आर्थिक असुरक्षा भी। इन सभी कारणों से युवा तनाव, अवसाद, चिंता और यहाँ तक कि आत्महत्या के विचारों तक पहुँच जाते हैं। श्रोताओं, ये एक गंभीर समस्या है और इसे समझना तथा समय रहते समाधान करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बात अगर समाधान की करें तो पहला कदम है संवेदनशीलता। हमें युवाओं की बात सुननी होगी, उन्हें ये महसूस कराना होगा कि वे अकेले नहीं हैं, कि उनकी परेशानियाँ वैध है और हम उनके साथ हैं। कई बार एक खुला संवाद, एक भरोसेमंद व्यक्ति की उपस्थिति और एक छोटा सा मार्गदर्शन भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। दूसरा बड़ा कदम है स्कूल और कॉलेज स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की चिंता। सिर्फ नंबरों की दौड़ नहीं, नहीं बल्कि ये भी सिखाना जरूरी है कि असफलता को कैसे संभालें, आत्मसम्मान कैसे बनाए रखें और जीवन में संतुलन कैसे लाएं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किशोर अवस्था में ही बच्चों को इमोशनल एजुकेशन दी जाए तो आगे चलकर वे अधिक संतुलित और आत्मविश्वासी वयस्क बनते हैं। परिवार की भूमिका भी बेहद अहम है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की भावनाओं को समझें, उन्हें टोकने से पहले सुनें और ये जानें कि हर बच्चा अलग होता है।

0: है। हर बार तुलना करना, हर गलती पर आलोचना करना या सिर्फ अच्छे ग्रेड को ही मापदंड बनाना, ये सब बच्चों को भीतर से कमजोर बना सकते हैं। आज के युवा को प्यार और मार्गदर्शन दोनों की जरूरत है, लेकिन किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक साथ चलने वाले साथी की तरह। शारीरिक गतिविधियाँ, ध्यान, योग, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, ये सभी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। युवाओं को चाहिए कि वे दिन में थोड़ा समय अपने लिए रखें, जहां वे बिना किसी दबाव के खुद से जुड़ सकें, अपने मन की बात समझ सकें और धीरे धीरे खुद को संतुलित कर सकें। जर्नलिंग, शांत संगीत, प्रकृति में समय बिताना और तकनीक से थोड़ा विराम लेना, ये छोटे छोटे उपाय दीर्घकालीन संतुलन ला सकते हैं। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, तो ये अवसर है उस ऊर्जा, उस उम्मीद और उस उजाले को पहचानने का, जो हमारी युवा पीढ़ी में है। लेकिन अगर ये ऊर्जा भीतर ही भीतर बुझने लगे, तो विकास केवल बाहरी दिखावा बनकर रह जाएगा। हमें एक ऐसा समाज बनाना है, जहां युवा अपनी परेशानियों को छिपाने के बजाय साझा कर सके, जहां उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहानुभूति मिले, न कि शर्मिंदगी। श्रोताओं, ये जरूरी है कि हम आज से, अभी से ये बदलाव शुरू करें, अपने आसपास के युवाओं की बात सुनें, उन्हें समझें और उन्हें वो सुरक्षित वातावरण दें, जिसमें वे न केवल आगे बढ़ सकें, बल्कि संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकें। युवा केवल भविष्य नहीं है, वे वर्तमान हैं, और अगर उनका मन स्वस्थ है तो समाज भी मजबूत होगा। तो आइए इस युवा दिवस पर हम ये प्रण लें कि मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा को सामान्य बनाएंगे, मदद मांगने को ताकत मानेंगे और हर युवा को ये भरोसा देंगे कि उसकी आवाज़ मायने रखती है। यही असली विकास है, यही असली सशक्तिकरण है। आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, मैं थी नीना सोनकर। अगली बार फिर मिलूंगी एक और गहराई से जुड़े विषय के साथ। तब तक अपने आसपास के युवाओं को समझने का प्रयास करें और उनके मन की सेहत का भी उतना ही ध्यान रखें जितना शरीर का रखते हैं। धन्यवाद।
1: अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नीना सोनकर आज हमें जानकारी दे रही थी युवा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग इस विषय पर। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, आइए डालते हैं एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से रिले। संसद में हुए प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 से हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का प्रसारण समय रहेगा 10:10 का। जिले की हलचल आज आप सुन सकते हैं 9:15 से, जिसमें आज आप सुनेंगे रायबरेली और सहारनपुर जिलों की हलचल।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में सुबह 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। सुबह 7:31 से कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अभिजीत राय चौधरी का सरोद वादन, राग होगा तोड़ी। लोक गीतों से सजे लोक रंग कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगी कुसुम वर्मा, जो आपके लिए प्रस्तुत करेंगी अवधि लोकगीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर, और साथ ही साथ इन्हीं के गाए अवधि लोकगीत आप सुन सकते हैं लोक माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत भी। समय होगा दोपहर 2:45 का। सुबह 9:30 का वक्त रहेगा उर्दू प्रोग्राम का। आज की पेशकश

होगी आकाशवाणी गोरखपुर के मरकज से। इसमें आज आप सुनेंगे मुख्तसर तकरीर तहरीक आजादी और उर्दू अखबार मोहम्मद फर्रुख जमाल की। कलामी शायर होंगे शब्बीर अजीजी। विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे खरीफ फसलों में समन्वित नाशी जीव प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर अरुण कुमार राय की भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के केंद्र से आप प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 7:10 हो चुके हैं, तो नमस्कार लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब पेश है विविधा।

0: नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। श्रोताओं, आज हम उस शक्ति की बात करने जा रहे हैं जो किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जी हाँ, वो पूंजी होती है युवा शक्ति की। आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
1: कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।
0: दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना और विश्व के विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। युवा किसी भी राष्ट्र के वर्तमान की सक्रिय शक्ति और भविष्य की आधारशिला माने जाते हैं। उनके पास नई सोच होती है, कुछ नया करने का उत्साह होता है और चुनौतियों को अवसर में बदलने का साहस भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी देश की प्रगति में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

दोस्तों, आज का युवा केवल नौकरी पाने वाला व्यक्ति नहीं है, वो एक उद्यमी है, वैज्ञानिक है, एक कलाकार है, खिलाड़ी है, तकनीक का जानकार है और सामाजिक परिवर्तन का वाहक भी है। डिजिटल तकनीक के इस दौर में युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, संचार और नवाचार के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। भारत को दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। हमारे देश की बड़ी युवा आबादी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यदि हमारे देश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उचित मंच मिले, तो यही युवा भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से और अधिक मजबूत बना सकते हैं। लेकिन केवल युवाओं की संख्या अधिक होना पर्याप्त नहीं है दोस्तों, आवश्यक ये है कि उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिले। शिक्षा के साथ कौशल, अनुशासन और नैतिकता, साथ ही जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हो। और यही नहीं, युवा अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें और समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका को पहचानें।

आज के समय में युवाओं के सामने अनेक चुनौतियां भी हैं। बेरोजगारी, मानसिक दबाव, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, गलत सूचना और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग उनके विकास को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में परिवार, विद्यालय, समाज और सरकार सभी की जिम्मेदारी है कि युवाओं के लिए सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण तैयार किया जाए। दोस्तों, भारत की युवा शक्ति का इतिहास भी गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक युवाओं ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया था, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। इनके जैसे युवाओं ने अपने साहस और बलिदान से पूरे देश को प्रेरित किया। उनके जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि युवा अवस्था केवल सपने देखने की नहीं, बल्कि अपने आदर्शों के लिए खड़े होने की भी अवस्था है। आज के युग में यह आवश्यक है कि युवा केवल अपने व्यक्तिगत भविष्य के बारे में न सोचकर समाज और राष्ट्र के भविष्य को भी ध्यान में रखें। पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, डिजिटल जागरूकता, रक्तदान, सामाजिक सेवा और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। एक सशक्त युवा वही है जो अपनी प्रतिभा को पहचानता है, लगातार सीखता है और असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे अनुभव प्राप्त करता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए रचनात्मक, कुशल और संवेदनशील युवाओं की बहुत ही आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमें केवल युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का अवसर नहीं देता, बल्कि ये सोचने का भी अवसर देता है कि हम युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर अवसर और बेहतर भविष्य कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस देश का युवा जागरूक, शिक्षित, कुशल और जिम्मेदार होता है, उस देश का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होता है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और रचनात्मकता को सही दिशा देने का संकल्प लें और हमारे देश के युवाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करें जहां हर युवा अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे सके। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रही थी नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है।

0: मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने पारित किया अधिकरण सुधार विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा। विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। और ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। इससे पहले विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस बीच प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के सभी मदरसे भी भाग लेंगे।
3: इस अभियान से उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे वो भी जुड़ेंगे। हमने मदरसा के तमाम छात्रों से भी अपील की है, अपने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया है, डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है, उत्तर प्रदेश के हर मदरसे इस अभियान से जुड़े, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस अभियान को हम ले जाएं और हर व्यक्ति देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हो। इस अभियान का जो मकसद है उसको हम धरातल पर ले जाएंगे।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया।
4: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी को

0: गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की नियुक्ति के लिए कल से साक्षात्कार शुरू हो गया। इस पद के लिए करीब 5,200 आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद 18 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण के लिए चुना गया है।
1: राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए राम मंदिर परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर में 9 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। बाकी बचे 9 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3 सदस्यीय चयन समिति इंटरव्यू के बाद चयनित व्यक्ति की जानकारी ट्रस्ट को सौंपेगी। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल इस एक्सपो का अनौपचारिक शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 684 करोड़ रुपए की लागत वाली 201 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच से खलीलाबाद तक बन रही रेलवे लाइन संत कबीर नगर के विकास का आधार बनेगी।
2: तो ये सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खलीलाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है, लैंड बैंक जैसे ही यहाँ का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सोनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से माधोपुर बंधे तक 2-लेन मार्ग का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मार्ग की कनेक्टिविटी से अब वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर आदि स्थानों पर जाने वालों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी।
3: अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमा होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग 4-लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं।
0: सावन माह की शिवरात्रि के पावन अवसर पर कल प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। बागपत के ऐतिहासिक श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर, वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम और हापुड़ के श्री गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर सहित प्रदेश के कई प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दर्शन पूजन कर जलाभिषेक किया।
4: जनपद हापुड़ में सावन मास की महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे वातावरण शिवमय बना रहा। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणपुर के कल्याणेश्वर महादेव, प्राचीन शिव मंदिर सबली, सरावा के झारखंडी महादेव के अलावा जनपद के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र, आग, धतूरा, चंदन आदि से भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल से जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने पारित किया अधिकरण सुधार विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा। विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के CEO की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। और ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय

0: इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 7:31 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आइए सुनते हैं अभिजीत राय चौधरी का सरोद वादन, राग है तोड़ी, विलंबित रचना झपताल और मध्य एवं द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है। आइए सुनते हैं।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का सरोद वादन, राग था तोड़ी। विलंबित रचना झप ताल और मध्य एवं द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को हैं और अब से बस

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन

0: AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा, इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
1: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया

0: के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बिछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोक सत्य की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली

0: को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:15 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यंग बरेली।

0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यंग बरेली में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम यंग बरेली में। जी परमानंद गौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप बताएं श्रोताओं को कि आप किस खेल से संबंध रखते हैं। जी
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
1: जी
2: मेरा नाम परमानंद गौर है
1: जी,
2: और मैं बरेली का रहने वाला हूँ
1: जी,
2: और मैं एक डिसेबल्ड खिलाड़ी भी हूँ। और स्पोर्ट्स की छोटी बहुत जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, और थोड़े बहुत अचीवमेंट भी मेरे पास हैं। तो मैम कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे पास जो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहता हूँ।
1: पहले तो हम ये जानना चाहेंगे परमानंद जी आपने कि आपने कौन सी उम्र से शुरुआत करी खेल की, और अब किस लेवल आप पहुंचे, और क्या आगे के लिए सफर जारी है वो बताएं श्रोताओं को।
2: ठीक है मैम, दरअसल सन 2008 में मेरा हाथ मैम एक एक्सीडेंट की वजह से कट गया था
1: जी।
2: हम लोग की पढ़ाई चल रही थी, तो फिर कहीं ना कहीं एक अंदर से जो था कि यार अब पूरा लाइफ खत्म हो गया है, अब हम लोग फ्यूचर में कभी कुछ कर नहीं सकते हैं। एक एम था फौज में जाने के लिए कि कुछ देश के लिए भी कुछ हम लोग कंट्रीब्यूट करें
1: जी।
2: उसके बाद मैम धीरे धीरे लोगों ने बताया मेरे को कि इस तरीके के स्पोर्ट्स भी होते हैं, पैरा स्पोर्ट्स, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। फिर फैमिली ने भी मैम बहुत मोटिवेट किया। पहले मैम ये था कि हम लोग जाते थे खेलने के लिए तो पेरेंट्स हमको बोलते थे कि नहीं आप पढ़ाई पे फोकस करिए, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। एक कहानी थी पहले, और
1: कहावत है ये इसमें फिर बदल जाएगी जी।
2: अब ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है
1: जी।
2: अब ये उल्टा हो गया, पढ़े खेलेंगे कूदेंगे तो भी बनेंगे नवाब
1: जी, बिल्कुल।
2: तो इस तरीके से मैम सन प्रैक्टिस करी हमने, बहुत ज्यादा मेहनत करी है ग्राउंड पे। उसके बाद नेशनल खेलने के लिए गए, स्टेट खेले, स्टेट में मेडल किया। नेशनल खेलने गए मैम पंचकुला में, वहां हमने मेडल किया। सन 2010 में मैम मैंने यूपी से, मैं अकेला एक ऐसा खिलाड़ी था जिन्होंने पैरा में
1: जी
2: पैरालंपिक्स में एशियन गेम्स क्वालिफाई किया था
1: जी, बहुत
2: कुछ। हाँ मैम धन्यवाद आपका। और कुछ रीजन मैम मेरे साथ में ऐसे रहे हैं जो मैं उस चीज को जा नहीं पाया था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी। फिर मैम फैमिली वालों ने सपोर्ट किया कि नहीं आप आताश मत होइए, दोबारा ट्राई करिए, अगर मेहनत कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी आगे भी मिलेंगी। कंटिन्यू मैम मेहनत किया। सन 2012 में मैम ओलंपिक से पहले ना हमारा फाइनल ट्रायल होना था एक पंचकुला में, वहां मैम ट्रायल के लिए गया मैं, और वहां पे मेरा 100 मीटर में मैंने सन 2012 का लंदन ओलंपिक क्वालिफाई किया था।
1: अच्छा,
2: तो कुछ सिस्टर की शादी वाली थी, दरअसल फैमिली से पापा फोर्थ क्लास कर्मचारी थे, तो उस टाइम पे मैम इतना कुछ था भी नहीं
1: जी जी
2: कि पढ़ाई के साथ में डाइट है ये सब चीजों को कंटिन्यू कर पाए।
1: फाइनेंशियल तो थोड़ा सा होता ही
2: जी,
1: हर आदमी की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं जी।
2: जी मैम, जी मैम, तो उस तरीके से मैम किया। फिर कंटिन्यू मैम यही चलता रहा कि अब फिर स्पोर्ट्स पॉलिसी, गवर्नमेंट की जब स्पोर्ट्स पॉलिसी हमें अच्छी मिलना स्टार्ट हो गई मैम
1: जी,
2: तो अब उस टाइम पर हमारे टाइम पर शायद उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन जितना अब फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट हम लोग को, मिशन एक्सलेंसी हो गया, खिलाड़ियों को रहने का, खाने का, ट्रेनिंग का, इक्विपमेंट का, कोच की फीस का, जिम की फीस का,
1: सारा कुछ प्रोवाइड हुई है।
2: हाँ जी, तो अब पहले से काफी कुछ बेहतर हो गया है
1: जी।
2: हाँ, तो अब शायद

0: मेरा आर्ट से नॉन नेशनल मैंने खेले हैं
1: जी,
0: यूपी को रिप्रेजेंट किया है।
1: ये बताइए आप परमानंद जी, आप जी, दो खेलों को रिप्रेजेंट करते हैं जी, 10 मीटर एयर पिस्टल आपने बताया और आप क्रिकेट घर में भी हैं, तो आप कैसे इन दो को आप मैनेज करते हैं वो बताएं श्रोताओं।
0: मैम मेरा मानना ये है कि किसी भी खेल की जो जननी है वो है रनिंग, एथलेटिक्स
1: जी।

0: वो है रनिंग, एथलेटिक्स।
1: जी बिल्कुल।
0: अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो किसी भी गेम में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा कि कमांड उस पे चीजों को बहुत देर में समझ में आए। मेरे को मैंने एक प्लस पॉइंट ये मिला था कि मैं प्रॉपर तरीके से एक एथलेटिक्स का खिलाड़ी रहा हूँ, 100-200 मीटर का, फिजिकली बहुत अच्छा था। जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो मैंने क्रिकेट से स्टार्ट किया था, तो कहीं ना कहीं एक क्रिकेटर भी मेरे अंदर था, तो वो चीजें निखारने का मौका मिला। और जब मैं अभी मैम रिसेंटली मेरे को एक इंजरी आया था अभी L4-L5 में बैक में, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप ज्यादा हैवी एक्टिविटी मत करिएगा। फिजिकली एक्टिविटी के बाद जिम में हम लोगों को स्ट्रेंथ के लिए कंडीशनिंग करनी पड़ती है, सब चीजें
1: पड़ता है।
0: उसके बाद भी मैं कहीं ना कहीं एक अंदर का था कि एक मेडल की एक भूख होती है मैम हर एक स्पोर्ट्स मैन को।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मैम शूटिंग स्टार्ट किया मैम, वहाँ पे स्टैंडिंग था कुछ भी इतना फिजिकली होता नहीं है करने के लिए, बस थोड़ा मेडिटेशन से होता है, कॉन्सेंट्रेट से होता है पूरी बॉडी पे। तो मैम 10 मीटर एयर पिस्टल में भी ट्राई किया मैम, तो यूपी का हम लोग खेलने गए थे स्टेट मैम देवबंद में, यूपी का स्टेट हुआ था मैम, तो वहाँ पे मैम फर्स्ट रैंक होल्डर भी हूँ। और बहुत अच्छा लगता है मैम कि कभी अपने आप को उस लेवल पे देखो तो।
1: जी जी, कि मतलब कभी सोचा नहीं था कि ये भी मैं कर सकता हूँ।
0: नहीं नहीं मैम, ये तो कभी नहीं सोचा था। डिसेबिलिटी आने के बाद तो मुझे लगा था इस करियर एकदम खत्म, लेकिन हार नहीं मानी।
1: बल्कि आप तो प्लस हो गए।
0: हाँ मैम, लेकिन आपको ये कि अपनी आज का टाइम ये है मैम कि अब लोगों से कोई बात होती भी है तो पहले ये कहते थे कि पापा को कि ये सोनू के पापा हैं, ये परमानंद के पापा हैं।
1: जी जी।
0: आज का टाइम मैम वो है कि लोग ये कहते हैं कि पापा को भी मेरे नाम से जानते हैं कि ये परमानंद के पापा हैं,
1: आपके नाम से आपके फादर को जानते हैं लोग। यही एक बहुत बड़ी, इसे कहना चाहिए, सपोर्ट होती है एक फादर के लिए और एक बेटे के लिए भी, कि लोग मतलब एक फादर के नाम से तो हम लोग जाने ही जाते हैं, लेकिन अगर हम हमारे फादर हमारे नाम से जाने जाते हैं तो वो बात कुछ और ही होती है। ये खुशी तो बिल्कुल सही बात है, इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। परमानंद जी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप ये बताएं, आप आगे के लिए किस तैयारी में आपके इस समय सफर जारी है?
0: मैम अभी तो मेरा शूटिंग कंटिन्यू है
1: जी,
0: और चल रहा है मैम अभी। मैं एक स्पोर्ट ट्रेनर के तौर पे भी अभी रिसेंटली एक स्कूल है मैम वहाँ पे एज अ स्पोर्ट्स कोच के तौर पे यहाँ पे वर्किंग में भी हूँ
1: जी,
0: और फ्यूचर में भी कुछ प्लान्स है मैम। अगर इस फील्ड में नहीं हो पाया तो मुझे लगता है कि मैं कोचिंग में जो सपने मेरे अभी भी अधूरे रह गए हैं
1: जी,
0: वो मैं कोचिंग के माध्यम से मैं अपने बच्चों को या स्टूडेंटों को वो सपने मैम साकार करने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज भी मेरे जो सपने मेरे अधूरे रह गए हैं वो मैं अपने किसी स्टूडेंट के माध्यम से वो सपने भी अपने पूरे कर लूंगा।
1: नहीं बिल्कुल, और ईश्वर उनकी मदद हमेशा करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, और आपके सपने पूरे हों इसी शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके।

श्रोताओं, फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम यंग बरेली में। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से 100.4 FM पर। जहां है आप, वहां है हम।

शहर के सभी वार्डों में 2 लाख झंडे बांटेगा निगम। देशभक्ति के रंग में रंगेगा शहर। वार्ड वार सफाई निरीक्षकों और पार्षदों को दी गई ध्वज वितरण की जिम्मेदारी। स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर शहर देशभक्ति के रंग में रंगने जा रहा है। मंगलवार से ही अलग अलग क्षेत्रों में देशभक्ति कार्यक्रम का दौर भी शुरू हो गया है। नगर निगम ने भी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर एक एक वार्ड में प्रत्येक घर पर झंडे फहराने के लिए ध्वज वितरण शुरू कर दिया है। इसके लिए सभी जोन के सफाई निरीक्षकों टोंडर बनाकर पार्षदों के जरिए संबंधित वार्ड में घरों की संख्या अनुसार झंडे का वितरण किया जा रहा है।

और श्रोताओं, स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में अंशुमान सक्सेना ने जीता कांस्य पदक। देहरादून में 2 से 8 अगस्त तक आयोजित 24वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में बरेली के राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज अंशुमान सक्सेना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। उन्हें 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया है। चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड राइफल एसोसिएशन ने किया था। आयकर विभाग में कार्यरत अंशुमान बरेली के एकमात्र निशानेबाज के रूप में प्रतियोगिता में शामिल हुए और पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया। इससे पहले वर्ष 2024 में भी अंशुमान ने शूटिंग प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक हासिल किए थे। लगातार प्रतियोगिता में पदक जीतकर उन्होंने निशानेबाजी में अपनी पहचान मजबूत की है। अंशुमान ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, प्रशिक्षकों और सहयोगियों और साथ ही शुभचिंतकों को दिया है। उनको कहा कि उनका जो लक्ष्य है, भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर देश के लिए पदक जीतना है।

एशियन चैंपियनशिप में बरेली के 3 तैराकों का हुआ चयन। शहर के 3 तैराकों ने लखनऊ में आयोजित यूपी मास्टर्स स्विमिंग टीम के चयन ट्रायल में शानदार प्रदर्शन कर दूसरी एशियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए स्थान पक्का किया है। प्रतियोगिता 4 से 10 अक्टूबर तक बेंगलुरु में आयोजित होगी। यूपी स्विमिंग एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ के स्विमिंग पूल में पुरुष और महिला वर्ग के अलग अलग आयु समूहों में ट्रायल एवं प्रतियोगिता आयोजित की गयी।

श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रभक्ति संग पर्यावरण संरक्षण का गूंजेगा संदेश। स्वतंत्रता सेनानी व सेवानिवृत्त कर्मी स्थापित कराएंगे वंदे मातरम वाटिका। इज्जत नगर में भूमि का चयन हुआ। सेनानी परिवारों की पसंद के रोपे जाएंगे पौधे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वन विभाग ने 15 अगस्त को इज्जत नगर में वंदे मातरम वाटिका स्थापित कराने के लिए इज्जत नगर में भूमि का चिन्हांकन कर लिया है। इसमें विभिन्न प्रजातियों के 150 पौधे रोपे जाएंगे। पौधारोपण और संरक्षण के लिए स्वतंत्रता सेनानी परिवारों और वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मियों को आमंत्रित किया गया है। 12 व 14 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा, विभाजन की विभीषिका पर होगा कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिले में हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह जी ने अध्यक्षता में कहा कि मंगलवार को कलेक्टर सभागार में अभियान की तैयारी को लेकर बैठक हुई। इसमें जनपद और तहसील स्तर पर तिरंगा यात्राओं समेत विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है।

बरेली, भोजीपुरा व मैलानी सहित 103 रेलवे स्टेशनों पर मनाया जाएगा स्टेशन महोत्सव। जी हां, स्थापना दिवस के अनुसार मनेगा समारोह, इतिहास में संस्कृति तक दिखेगी झलक, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लेजर शो होंगे आकर्षण, रेल कर्मियों का होगा सम्मान। धरोहर निदेशालय रेलवे बोर्ड द्वारा 100 वर्षों से अधिक पुराने रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन महोत्सव, स्टेशनों का जन्मदिवस मनाए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इन महोत्सवों के माध्यम से स्टेशनों के इतिहास, स्थानीय संस्कृति एवं स्थानीय जनमानस की भावनाओं को उकेरा जाएगा। भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक और विरासत स्टेशनों की पहचान अब उनकी जन्मदिन यानी स्थापना समय से भी होगी। रेल मंत्रालय ने देश भर के हेरिटेज स्टेशनों का जन्मदिन उनकी

तारीख के अनुसार मनाने का निर्णय लिया है। अगले 4 महीनों में विभिन्न रेलवे जोन और राज्य के 103 विरासत स्टेशनों पर स्टेशन महोत्सव आयोजित किए जाएंगे।

श्रोताओं, हम और आप जब रोड पर जाते हैं या हम लोग जो है मतलब राइडिंग करते हैं, बाइक से जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपना रूट निकलना तो पड़ता ही है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो शहर में बढ़ते यातायात दबाव व औद्योगिक विस्तार को देखते हुए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA पहली चैप्टर ने 0 पॉइंट पर एलिवेटेड रोड बनाने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंडलायुक्त के समक्ष रखे हैं। मंगलवार को चैप्टर चेयरमैन शेखर अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंडलायुक्त शंभू कुमार से शिष्टाचार भेंट कर औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे के विकास पर चर्चा की है। मंडला आयुक्त के संग समक्ष रखा एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल में मंडलायुक्त शंभू कुमार से की है मुलाकात। बहुत जल्दी ही आपको भारी वाहनों के दबाव को देखते हुए एलिवेटेड रोड या फ्लाईओवर जरूरी है।

और श्रोताओं, कार्यक्रम यंग बेली तो आप सुनी रहे हैं और आज यानी 12 अगस्त को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे, जो युवाओं की भूमिका को वैश्विक विकास में रेखांकित करने का एक सशक्त मंच है। इस अवसर पर जगह जगह कॉलेजों में अपने अपने हिसाब से युवा जो हैं, जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, वो मंच से अपनी बात कहते हैं और उनके सामने मौजूद चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा होती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एक बहुत पुरानी परंपरा है और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत वर्ष 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और 12 अगस्त 2000 साल से इसे हर साल थीम के साथ मनाया जा रहा है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यंग बरेली। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं और अब आप आनंद लेंगे लोकगीतों का। आज पहला लोकगीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सरिता कक्कड़ के स्वर में।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों को आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और लीजिए आप सुनिए शालिनी शर्मा के स्वर में ये लोकगीत, बगिया में झूला डालाई।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे लोकगीतों का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 100.4 FM पर प्रातः के 9 बजे हैं। और अब आपको जोड़ते हैं विद्य भारती प्रसारण सेवा

0: कार्यक्रमों से रिले करेंगे मुंबई केंद्र से।
1: कपूर एंड सन्स, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वक्त चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: में धूम, ये था फिल्म का नाम। याशिता शर्मा, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम

क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गीत दिल चाहता है फिल्म से हमने आपको सुनवाया। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त हो चला है।

एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी।

कदम बस चार कदम।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक लड़का आया है कलकत्ते से।

0: सुन लो, उसका अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रवींद्र जैन।
0: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: खोजता ही रहा हूं।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।
1: चिक्की लक्की चिक्की चिक्की लक्की चुम्ता लक्की चिक्की लक्की चिक्की चिक्की लक्की चिक्की चुम्ता

आज समर्पित है एक खूबसूरत अभिनेत्री।

इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गईं और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई, जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मुडिचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहाँ हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं, जहाँ श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

के 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।

देखे जवानी के रेले देखे आ दिनों के मेले देखे दिल पे।

फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।

इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली।

इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

जब मिस्टर इंडिया की बात हो तो एक गाने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सरोज खान की कोरियोग्राफी वाला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया।

0: 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।

चोपड़ा के साथ फिल्म चांदनी में नजर आने के बाद श्रीदेवी ने उनके साथ एक और फिल्म की सन 1991 में आई लम्हे।

श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा गवाह।

0: ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आई। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातूंडकर थे।
1: क्या

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गईं। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट स्पेशल फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी मेरा, समटाइम्स यू विल फील यू आर लेस केविन, समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील यू आर लेस देन मेरा। ट्राई टू हेल्प ईच अदर टू फील इक्वल, इट विल बी नाइस।
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई।

श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थी।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोख, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।

0: था अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 10 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज सबसे पहला कमेंट हम तक पहुंचा है आप

सभी प्यारे श्रोताओं का। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य का। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हैं पुखराज बड़ गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, फरसा राम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का का। गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही का। करुला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। सदाबहार रेडियो क्लब से और वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जिशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। नागपुर महाराष्ट्र से हैं कमल सहाने, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप। रामगढ़ कैंट झारखंड से हैं निप्पी सहाने। नाज रेडियो क्लब करेली से हैं निसार अहमद अंसारी, महजबी निजार अंसारी, बेटी नुजरत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, वसीम और पप्पू भाई अंसारी का। ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह का। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। बक्सिना दत्तागंज बदायूं से हैं विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, अमन, रिया, सेजल, सूर्य, सोना, रीना और नीरज का। दीदार रेडियो श्रोता संघ बलरामगेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जैबू निशा बेगम, सद्दाम सैफी, जाहिद सैफी, आबाद खान। गांव बॉन्डीवाला फजिलका पंजाब से हैं ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। आर्यनगर कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। साथ में हैं धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का। पद्मा टाकेश नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोड़ा गाछी। पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। दुर्गा कॉलोनी हासी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू का। कस्बा मीरगंज बिजली घर से हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमिंद्रपुरी गोस्वामी, कल्लू भाई मिस्त्री का। बीजना मुरादाबाद से हैं राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान। हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन और राम भाव तानले का। धोतर आष्टी, धोतर जोड़ा आष्टी, दशर सागुते, अनुष्का सागुते। चरा टोकरी परिया से हैं जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य बसा थे इनके दोस्त। चंदोसी रोड चमनपुरा से हैं मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम। मुद्रनगर खंडवा से हैं नदीम भाई, भैजोई से हैं राजू जी। गांव फरासी हिसार, जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है सरगम और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

तेजेश्वर साहू कुशाल साहू जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से हैं। तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी बहड़ी से हैं। इश्तियाक अहमद इदरीसी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त राजधानी रायपुर से हैं। नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और अहले खाना मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार आलोट जिला रतलाम एमपी से हैं। जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं। सुखविंदर सिंह जोड़ा और सी टी दीवाना गांव गढ़ी कोटाहा जिला पंचकूला हरियाणा से हैं। साजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी। पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूरा नाम देवांगन और कृष्णा देवांगन का। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं विनोद बंडलकर, वीणा बंडलकर, विविधा बंडलकर। बहड़ी से हैं अंजुम भाई और खालिदा बेगम। धनौरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू का। दादा बाबू रोड ग्रेडी झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का। उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं भिरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया, रियांश और प्रतीक वाकतरिया का। जिला मुरादाबाद ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून का। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश अग्नेजा, पूनम अग्नेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का। ग्राम वीरपुर पोस्ट बिल्सर तहसील अलीगंज एटा से हैं विपिन कुमार शाक्य, सपना शाक्य, रविन्द्र, राजेश, रमेश चंद्र, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ शाक्य, कुमारी सुजाता शाक्य, संगमित्रा, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांव लोहरडा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी देवी, रमानंद कश्यप। करावल नगर दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल। महोबा बुंदलखंड से हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान, मैंडी, सौरभ और शाइना शर्मा का। ग्राम कोठा मक्खन बरेली से हैं अफरोज अंसारी और फारूक अंसारी। जेल रोड दिल्ली से हैं लालबाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती और बेताब। रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से हैं वसीम अक्रम, बेबी जोई और गुड़िया खातून का। गांव नंगल खेड़ा भगवाड़ा पंजाब से हैं पार्कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा और मनीष शर्मा। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुनी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश वर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से हैं गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। रावर करनाल से हैं विनोद लखनपाल और गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे। लगान पंडरी छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। लाल कुर्ती रुपकी कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली युवान और आरके राजा का। गांव भोजपुर तका सहारनपुर से हैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। कोपर गांव से हैं सुरेश मालोदे, वशा मालोदे। शेवगांव से हैं श्रीराम गोधली और उषा गोधली। एमएलबी रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आर

खुराना और एसके पप्पी का। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान स्टार और नरगिस खातून का। श्रोताओं कोशिश किया कीजिए, जब आप एक बार कमेंट कर देते हैं तो दोबारा और श्रोताओं को मौका दें आप, और डबल डबल कमेंट करने से कोई भी फायदा नहीं है। पास मणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगी से हैं बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा, ग्राम चरौदा वार नवापारा अभ्यारण बड़ौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ज्योति ठाकुर, अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से हैं मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता का, कस्बा उगेती बदायूं से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता का, पंचकुला चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और तुलसी मस्कीन का, ग्राम गदगांव पोस्ट करणपुर तहसील बिसौली जिला बदायूं से हैं राजकुमार प्रजापति, दिव्यांश प्रजापति, वीरेश प्रजापति, किशन पाल मौर्य और वीरेश पाल, ग्राम कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से हैं प्रवीण हागोने, योगिता हागोने, मिस प्रियाली, पार्थ और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। ये कमेंट हमारे पास आया रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और परी महल कासगंज से हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपके पसंद में अपनी पसंद के गीतों को आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हैं आप सभी प्यारे श्रोता। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप का। ग्राम रसुड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्र डागी, मौलागढ़ नई बस्ती से हैं तरुणरूम अंसारी, तराना अंसारी, भाई अजरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी, इनके दोस्त। गांव जलालपुरा, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन, लवेश, मुनेश, देवी प्रजापति का। कोल सिटी बरका काना से हैं अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, लिप्पी सहानी, मोहम्मद अफजल मलिक। बाबा कुटी रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान का। गांव खोकरा वाली से हैं विनोद वारासा, विशाल वारासा, विकास वारासा और रोशनी वारासा, साथ ही हैं शगुन वारासा। सफेद सिटी हरियाणा से हैं नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत, लव खन्ना, कुश खन्ना और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी, इनके दोस्त। एटा रोड गंजुंडवारा से हैं वीपी गौतम, सरिता गौतम, शेख मोहम्मद कलीम और डॉक्टर डीएच बच्चन का। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। मुरादाबाद से हैं ललावरी से आप सभी लोग आदित्य कसाना, माया देवी, ऋतिक और अजीत कसाना। गंजवारा से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का। कस्बा गुन्नौर यूपी से हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान और फारिया और ताहिरा। ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम। मुगलपुरा बागपत से हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, अशोक, आशिक हुसैन अंसारी। फलक और ये कमेंट हमारे पास आया है आप सभी लोगों का। भोजीपुरा बरेली से हैं हसमुख भाई, हसन भाई, शम्स भाई, नदीम भाई और आमिर भाई का। शाहू नगर यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर का, साथ ही रोशनी और बेबी प्रियांशी। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौर, मंजरा राठौर, विशाल और निशा। हरियाणा झज्जर से हैं बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। बिरडी मध्य प्रदेश से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर। कंवर कॉलोनी बड़वाहा, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं रमेश श्रीमाली और मीना श्रीमाली। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य का। पंचकुला सेक्टर 9 से हैं आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे भाविक ढिंगरा का। पंचकुला सेक्टर 11 से हैं अतुल शर्मा। मनकरा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली से हैं बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक शगुन सारांश, आयाश, अदिति वर्मा और शिवांश, साथी हैं प्रथम सिंह का। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना गोडाने, हीरामन शेंडे, किशोर धनाडे, हिम्मत राव शुगारे, संजय कुमार गेडाम, किशोर गुप्ता और दीपक कुराडे का। नाभा जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त, कैरव ज्योति, रानी, गुरमंत कौर, मनु। भाटापार छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी अंशिका जोशी, अकीता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव। जगदलपुर बस्तर से हैं पूनम नायडू जी। ग्राम बिडोरा तहसील से हैं बड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सूर्यांश गुर्जर, छाया देवी गुर्जर और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी, इनके दोस्त। यवतमाल विदर्भ

से हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। अजनर जिला महोबा बुंदेलखंड से हैं नवीन तेजांश अनुराग साकेत का। ऊंचे गांव नादेड़ से हैं देवानंद शिंदे पाटिल। पीरजादा मिराजुद्दीन से हैं नजमुद्दीन कैसरुद्दीन और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। अडार नाथ घाट छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा चांदनी भूपेश दीपेश वर्मा। ओखला संगम बिहार दिल्ली से हैं रणधीर गुप्ता बबीता रानी गुप्ता सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। राजनगर गांधी चौक मधुबनी से हैं अरुण गुप्ता मौसम गुप्ता शिवम गुप्ता। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पवार बेनजीर कौसर मोहम्मद साकिब पवार अलमाज बानो पवार मोइन छोटू पवार शंकरलाल गंगराड़े वनिता गंगराड़े मोहम्मद हसनैन पवार का। कोटवा नारायणपुर बापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुविया नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय रोशनी राय और प्रांजल राय। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से हैं नसीब मोहम्मद सलमा बेगम रेहान मोहम्मद और फैजान मोहम्मद। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे संगीता घटे साक्षी घटे जयश्री महत्रे अंजलि करवा बाला साहेब करवा रामनिवास अग्रवाल धनंजल ट्यूबवेल और पीबी कुलथे का। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी आशी गोस्वामी शिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी। पटिंडा रोड मंडी डब्बाली से हैं राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग और तानिया नारंग। भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से हैं आरव मस्किन वाणी मस्किन रितिका मस्किन और विष्णु मस्किन का। उदयपुर राजस्थान से हैं बाबू भाई भारती देवी रमेश नाचानी विनीत नाचानी विथिल नाचानी और तिलक तंबोली का। एयरपोर्ट रोड बंदानगर इंदौर से हैं नारायण भाव खड़से ललिता आशा रानी खड़से संजना परी खड़से गणेश कार्तिक लड्डू देविका चौधरी स्वाति प्रयागराज चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। शास्त्री नगर बीड शहर से हैं किशन सपकाल आशा सपकाल सोनिया और विशाल सपकाल का। देवरी भट्टापारा से हैं केआर साहू आकाश कमलेश गन्नू लाल रजक और मुरली क्षत्रिय का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है गीत और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने।

0: सकता है। इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

श्रोताओं, जय जिनेन्द्र। श्रोता संघ परमणि महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। पीपरपारा, पालचुवा, मुंगेरी छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर का। नई मस्जिद करेली से हैं इंतजार भाई अंसारी, नथु, हिब्जा नूरी, नन्हे, सूरज मौर्य, शौकीन भाई अंसारी, शाकिर, जाहिद और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। आकोट से हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डावेराव। राजमाता नगर बुल्डाना महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार का। राजनगर मधुबनी बिहार से हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, क्रांति गुप्ता और गोदावरी देवी का। ग्राम सेवड़ी जिला छतरपुर से हैं बारेलाल प्रजापति, धनीराम, नरेश, कल्लू, रविन्द्र और वृंदावन प्रजापति का।

ग्राम क्रिली जिला बरेली से हैं समा अंसारी, नसरीन अंसारी, माहिनूर अंसारी, शमीम अंसारी, मोहम्मद आमिर अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर से हैं। मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभय मीत, भगवान दे, स्वाति सिंह, तानिया गौतम और इनके सभी मित्रगण। खरसावा झारखंड से हैं शुक्ला नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। अम्बागढ़ चौकी से हैं छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। पटियाई रोड घंटवारा से हैं एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी, बेबी अरीबा, हबीबा। शेरकोट बिजनौर से हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल, मंसूरी रेडियो रिसर्च क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा, शविस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी का। साउथ की मशहूर और राजकोट गुजरात से हैं रश्मि झरना और भरत कुमार। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक का। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं मेरा जहां गुलाम साबिर राही, ताज मोहम्मद अंसारी। ग्राम देगांव तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से हैं सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया थोरात और बंटी थोरात का। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से हैं मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जैस्मीन, शकीला, सना समा, हीना रजिया, सुल्ताना और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। पोस्ट गोठा कठुआ खड़ुआ से हैं रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा मिश्रा और सलोनी मिश्रा। साथी हैं शिवम और भिकारी सिंह गौड़ का। छत्री तालाब अमरावती से हैं साधना रानी और किशोर गुप्ता। डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंडूरकर, सदानंद और कुमार गौरव मंडूरकर का। सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश और अंकुश अरोड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गंजुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा और अनु खान का। चमनपुरा उदयपुर से हैं नजीब खान, सबीहा खानम, जब्बार मोहब्बत, फरीदा, अशरफ खान, रईसा और मंजू निम्मी का। संबलपुर काकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा पार्थ कश्यप, संजू आशु वर्मा। गांव जाखो से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह। ग्राम करेली मोहल्ला बरेली से हैं इशाक अहमद अंसारी, अफसर अहमद अंसारी, अंसार अहमद अंसारी, दिलदार अहमद अंसारी, मोहम्मद अर्श, मोहम्मद आरिश और दिलावर खान, हसीना बानू, अलीजा नायब और लड्डू का। आपने हमें ये कमेंट भेजा है रघुवीर नगर से। जिला बेगूसराय बिहार से हैं संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह। जिला मोतिहारी बिहार से हैं नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह। बेरडी से हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने और चंचल डोमने का। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं पोपटराव कुलथे, हनुमंत कुलथे, प्रथमेश कुलथे और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष का। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का। नई बस्ती गंजवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी का।

दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हैं बसंत कुमार सिन्हा और रेखा देवी सिन्हा। ये कमेंट हमारे पास आया है, चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत से हैं, जिला खरगोन से कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी चौहान, नवविद्युत सिंह चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, ध्रुवी एवं प्रद्युम्न सिंह चौहान का। ये कमेंट हमारे पास आया फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से हैं, सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सरिता चौरसिया, सुजाता, सुबोध, सलोनी, संजू, लल्ला, बाबू शिवा, शिवानी और योगेंद्र नायक का साथी है, इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। रतरंगी भट्टापारा छत्तीसगढ़ से हैं, हीरामणि वर्मा, पासमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है मन की आंखें और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आपकी पसंद में। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से हैं, मसूर हसन, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब का। गांव बड़वाला हनवंता, फजल का पंजाब से हैं, विनोद मायल, सीमा लक्षिता, यसिका, माँ विद्या देवी और सारा मायल, साथ ही इनके परिवार के सभी सदस्य और इनके दोस्त। देवगिरम गांव गुजरात से हैं, अजित भवसार, प्रमिला भवसार, भावेश, सनी भवसार। सिवहारा जिला बिजनौर से हैं, आसिफ चौधरी, अराफत चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी का। नई दिल्ली से हैं, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, जयराम खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। मजनू का डिल्ला से हैं, मकमल वालूजा, मधु वालूजा, सागर वालूजा और सतना एमपी से हैं, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का। सेक्टर 18 जगाधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से हैं, विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी पुलोमा और ईशानी का। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली मौर्य मंदिर से हैं, रतनमाला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस प्रियांशी, पुष्पा, गौरव, चंद्र प्रकाश और मन्नू भाई का। मॉडल टाउन करनाल से हैं, सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और किरण ठाकुर का। छिंदवाड़ा बेरडी मध्य प्रदेश से हैं, नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से। गांव बेरा जिला बेमित्रा छत्तीसगढ़ से हैं, प्रहलाद सिंह वर्मा, विनी अनी, आद्या और गुनू वर्मा का। ग्राम पंजौनी जिला जालौन से हैं, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया का। सागर लखना दौन मध्य प्रदेश से हैं, लालाजी चौबे, लालीजी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे का। साथी हैं भागवत चौबे, लाडला जी। फुलायनगर बीट महाराष्ट्र से हैं, बालाजी प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा का। राजकोट से हैं, जैमिन जैन, हैदर जैन और कृष्णा जैन। तंगौरी से हैं, मोहाली पंजाब से, गुरप्रीत तंगौरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर, सहिज प्रीत सिंह का। गड़िया मौजे उस्तू से हैं, प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन, करीना, पूजा, आरती और सुनीता देवी का। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तनवी बोध। दादरी गेट भिवानी से हैं, कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल। और ये कमेंट हमारे पास आया है, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का।

श्री भूमि राजे असम से हैं। आप सभी लोग हितेंद्र दास और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त पश्चिमपुरी दिल्ली से हैं। उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा, अनमोल जुनेजा और साहिबा गुप्ता का आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है लावा और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

और श्रोताओं, अब आपकी पसंद की ये आखिरी पेशकश, ये कमेंट हम तक पहुंचा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी का। नई दिल्ली से हैं प्रथम सलूजा, संगीता सलूजा और प्रदीप सलूजा का। राजनगर कांति निकेतन, से हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्रा भाई रुद्र, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। ऐशबाग लखनऊ से हैं रानी मुकेश गुप्ता और रश्मि नीलम गुप्ता का। लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवाकर, निर्मल नवाकर, विशाल नवाकर। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुहेरकर और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। कस्बा क्योलड़िया नवाबगंज जिला बरेली से हैं राजेंद्र, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू चंद्रपाल, उल्फा शर्मा, बबलू, वेदपाल, संजीव गंगवार का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है चुपके चुपके और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। प्रातः के 11 बजे हैं और अब आप सुनेंगे सबरंग। सबरंग हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये भजन बेला सुलाके के स्वर में।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और लीजिए, आप सुनिए हरिओम शरण के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सब रंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11:30 होने वाले हैं और अब आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

बात है, क्योंकि इससे हमें इसका इंटेक करने से खुद लगता है कि हाँ मेरी तबीयत कुछ ऊंच नीच है। इसमें तबीयत में और तबीयत के साथ साथ घर वाले भी कभी टोकते हैं कि अरे ये क्या किया, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। इन बातों के साथ हमें कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहिए, और अवेयर रहते रहते अपने साथ अपने साथ के भी लोग अगर इससे तारुफ रखते हैं तो उनको भी रोकना और समझाना चाहिए, है ना। लखीमपुर खीरी का संदेश आ गया है, संदेश आपके गीत हमारे में। वालेकुम सलाम, मेरा पूरा मेल पढ़ने की कोशिश करिएगा। साहिबा अंसारी समझकर मेरा मेल नहीं पढ़ते हैं। मेरा नाम शाजिया अंसारी है, महेवागंज से लखीमपुर से इन्होंने मेल किया है। रत्ना मैम आप कैसी हो? मेरा संदेश है कि मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखें। जी मैं अपना ख्याल रखूंगी ज़रूर। आप लोगों ने बड़े प्यार से आज हमें ये टिप दी है और ये कहा है, तो ज़रूर ख्याल रखूंगी और अपनों का ध्यान भी रखें, क्योंकि सेहत ख़राब हो सकती है मेरे दो और इसके साथ दोस्तों का नाम लेना चाहती हैं, वकील अहमद मंसूरी भाई, गुलफशा सिद्दीकी और आपी और साहिबा अंसारी, इन सबका नाम इन्होंने लखीमपुर खीरी से लिखा है और सबका नाम शामिल हमने कर लिया है। अब तो आप खुश हो गएंगे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। वकील अहमद जी आपका भी मेल शामिल करने जा रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? आपको आवाज़ अच्छी लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी की आवाज़ यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें हैं और लिखते हैं कि संदेश है कि कुछ लोग वाहन चलाते हैं और ऐसा खड़े होकर वाहन चलाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अर्ज है कि वो गर्मी में भी सजा देता है और वो सर्दी में भी सजा देता है। टंकी का पानी हर मौसम में दगा देता है। वकील अहमद मंजूरी कटरा से, हथौड़ी जिला सीतापुर से। जी हाँ, टंकी का पानी अगर हम टाइम पर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो टंकी का पानी कहीं ना कहीं अपना मिजाज तो दिखाएगा, तो हमें उसके लिए दोस्ती करनी पड़ेगी और टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा कि टैंक का पानी हम कब यूज़ कर रहे हैं। पूरी रात का पानी अगर सुबह सुबह यूज़ करेंगे तो हो सकता है ठंडा मिले।

और बिल्कुल चढ़ती दोपहर के बाद अगर यूज करेंगे तो थोड़ा गुनगुना भी मिल सकता है। तो ये सब बातें हमें उससे दोस्ती किस तरह से करनी हमें एहतियात बरतनी है। 11:32 हो गए, हमने मेल शामिल कर लिए हैं। और भाई कौशल जी का भी फोन लाइन पर, वो कनेक्ट हुए थे बाराबंकी से, लेकिन उन्होंने बात की और कहा पहली बार हमारा फोन मिला। कौशल जी आपका हमने स्वागत भी किया था लेकिन किसी वजह से आपकी आवाज नहीं कनेक्ट हो पाई। कोई बात नहीं, आपका संदेश, आपका मेल और आपकी आपका फोन हमने आपका नाम ले दिया है। अगली बार कोशिश करिएगा, हो सकता है थोड़ी देर में आपका फोन कनेक्ट हो जाए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: वेल, धड़कन लखनऊ की आपने ट्यून इन कर रखा 100.7 FM Rainbow, और ट्यून इन करने के बाद किसी ने अपने फोन से फोन मिला दिया। हेलो
4: हेलो
3: हेलो जी, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए, जोर से।
4: जी मैम, बोल रहा है मोहम्मद राशिद, जिला तहसील सिरातू, कड़ा ब्लॉक कौशल कुजीता, गांव दलपुर का सर।
3: अच्छा जी, राशिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। आप अक्सर फोन करते रहते हैं ना?
4: हाँ करते हैं, लेकिन जल्दी लगता नहीं है,
3: लेकिन आज तो लग गया।
4: आवाज लग गया, लग गया, आपने उठा लिया।
3: जी, तारीख याद रखिएगा आज की, ठीक है? अच्छा राशिद जी, करते क्या है आप?
4: कुछ नहीं, घर पर रहते हैं, रेडियो सुनते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं।
3: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, तो रेडियो से बहुत सी सूचनाएं आपको मिल पाती हैं, आप सभी को। तो ये बताइए कि आज फोन मिलाने का सबब क्या, क्या संदेश देना चाहते हैं सभी श्रोताओं को?
4: संदेश यही देना चाहते हैं मैम कि पानी बचा जाए, पानी बहुत मतलब फेंका जा रहा है, मतलब बहुत इस्तेमाल होता है, और पानी अब मतलब बारिश ज्यादा होती नहीं है।
3: हाँ जी,
4: पानी की मतलब ज्यादा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी।
3: जी जी, बहुत अच्छा संदेश है आपका कि वाटर लेवल बहुत नीचा जाता जा रहा है, तो आप बारिश के पानी को भी संचित करके रखें, ये आपका संदेश है, और रोज के पानी को भी आप वेस्ट बिल्कुल ना करें, है ना?
4: जी बिल्कुल मैम, आप असल में क्या ना, पानी निकालने के लिए सुविधा अच्छी हो गई है, जहाँ पर एक गिलास इस्तेमाल होता था वहाँ तीन गिलास करता है इस्तेमाल।
3: जी जी,
4: एक बाल्टी चलता था वहाँ पर अपनी, दो बाल्टी तीन बाल्टी करता है।
3: बिल्कुल, तो पानी के प्रति सभी हमारे श्रोता सजग हो जाइए, पानी बचाइए, और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो राशि जी, अपने प्यारे से संदेश के साथ हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राशि जी के साथ साथ आप लोग भी हमें डायल कर सकते हैं, और डायल करने के साथ साथ आप मेल भी कर सकते हैं। जैसे हमें देखिए अगला मेल कर दिया है, किसने किया है मेल, ये बिग बॉस के नाम से हमें मेल आया, लिखते हैं रत्ना मैम जी आप कैसे हो, रेणु प्रजापति जी का ये मेल आया है। लखीमपुर खीरी से रेणु प्रजापति जी हैं, मजगई गांव से इन्होंने लिखा है, और लखनऊ के धड़कन मुझे बहुत पसंद है, यानी कि एफएम रेनबो की बात करिए, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरे पसंद का सॉन्ग चला दो, और अच्छा इन्होंने सॉन्ग का नाम भी लिखा है, तो लाइव बात कैसे होगी आपसे? तो भाई आपको डायल करना है भाई, जैसे आपके सभी श्रोता, सभी आपके दोस्त लोग डायल कर रहे हैं और फोन से कनेक्ट हो रहे हैं, इसी तरह आप भी हमसे डायल करके कनेक्ट हो सकती हैं, और किस नंबर को आपको हमसे डायल करना है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो नंबर हम आपको बता देते हैं। वो नंबर है 0522, आप कोड लगाएंगे 0522, उसके अलावा 2238845 या फिर 2238852 ये नंबर आप डायल करके हमसे जुड़ सकती हैं। तो आपको हम आप जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आपसे बात करेंगे और लोगों तक आपकी बात पहुँचा देंगे, ठीक है।

हमने तो पंडित जी को बता दिया है कि पूरे हफ्ते का भाड़ा तय हो गया। कि ठंडे ठंडे पानी से सुबह स्नान करो ना तो दिमाग तेज हो जाता है। कोशिश की है कभी?

0: भाई इतने ज्यादा फोन कॉल आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है किसी का भी फोन कॉल या किसी का मैसेज मेल जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। तो अब हम कनेक्ट होने जा रहे हैं सुशील जी से शायद। हेलो
1: जी, जी हाँ जी मैम सुशील बोल रहा हूँ।
0: सुशील जी कहाँ से कनेक्ट हुए आप?
1: इंदिरा नगर लखनऊ से।
0: अच्छा जी इंदिरा नगर लखनऊ से बोल रहे हैं, तो बाहर का मौसम कैसा है भाई?
1: बढ़िया है मौसम।
0: मौसम मतलब बारिश हो रही है कि
1: नहीं? धूप निकली हुई है, बारिश वारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा जी धूप निकली हुई है तो चलिए धूप की भी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो सुशील जी करते क्या हो आप?
1: हम ये हमारे भैया हैं शक्ति भैया।
0: हाँ जी
1: पूजा भाभी उन्हीं के ऑफिस में काम करते हैं।
0: अच्छा जी आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपकी समय सारणी शाम 6 बजे फ्री हो जाते हैं या फिर आपको शाम देर तक रुकना पड़ता है?
1: नहीं हम ऑफिस खोलते हैं और वाइंड अप भी हम ही करते हैं।
0: अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, तो अपने काम के प्रति आप वफादार हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, सबसे बड़ा एक सुख है। आज का संदेश हमें दे दीजिए, प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में।
1: संदेश मैम यही है सब लोग खुश रहे, हमारे देशवासी खुश रहे, आप हैं हमारे भैया भाभी खुश रहे, घर वाले खुश रहे, सारी जनता खुश रहे।
0: ये बहुत प्यारा सा संदेश है। खुश रहने के लिए जो जो जतन करने पड़ते हैं वो सब करते रहिए, खुश रहिए और FM रेनबो सुनते रहिए। पूरी बात ये हो गई है ना सुशील जी?
1: जी, जी, जी, जी।
0: तो सुशील जी चलिए आज आपका फोन कनेक्ट हुआ, हमें भी खुशी, शायद आप भी खुश होंगे क्योंकि आप कह रहे हैं कि सभी को खुश रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। सुशील जी हमें फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रत्ना कहती है अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू भाई। एक मेल आ गया है और मेल किसका है? रॉयल अमित यादव जी का संदेश आपकी गीत हमारे में इन्होंने लिखा है, प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है मैम। और इसके बाद लिखा है कि अंजू मैम के साथ बर्थडे रेनबो पर कुछ स्पेशल प्रोग्राम आने वाला है तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और जी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है FM सुनना। और आई एम श्रिया यदुवंशी जी, गंगागंज रोड भानमऊ विलेज से बाराबंकी से इन्होंने लिखा है। और 20 अगस्त की तैयारियां तो चल रही हैं भाई, आपको जी भी जैसा पता है तो 20 अगस्त के प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं और हमसे बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए प्रोग्राम सजाकर हम सभी लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने मेल किया और उस दिन के लिए तैयारियों की बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अब हम किन का मेल शामिल करने जा रहे हैं? मोहम्मद रिजवान जी क्या लिखते हैं FM, क्या लिखा है इन्होंने? लखनऊ गोसाईगंज से इन्होंने लिखा है, शिलवर से। अस्सलाम वालेकुम सलाम, लिखते हैं हरियाली को जो सींचेगा वो जीवन को पाएगा, सूखे बंजर सीने पर भी सावन फिर लहराएगा, मत उजाड़ो स्नेह की छाओं को ऐ मुसाफिर, यही दरख्त कल अगली पीढ़ी को साया देगा। वाह वाह वाह बहुत अच्छा लिखा आपने मोहम्मद रिजवान जी गोसाईगंज से। और जिस तरह बारिश की हर एक बूंद सूखी धरती को हरा भरा और जीवन से परिपूर्ण कर देती है, उस तरह हमारे जीवन में सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों की बूंदे निराशा और अंधकारों को मिटाकर नई उम्मीदों और खुशियों का संचार कर सकती है। आइए प्रकृति के इस खूबसूरत उपहार का आनंद लें और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें। इतना बेहतरीन सा आपने मैसेज भेजा है और सकारात्मकता से जुड़े रहने के लिए बारिश का पानी, बारिश केवल मौसम नहीं बल्कि एक ताजगी और नई शुरुआत का प्रतीक है और यह भी सिखाती है कि हर कठिन समय में बाद एक बदलाव आता है जो अच्छे दिन जरूर आते हैं। प्रकृति का संरक्षण को लेकर के उन्होंने बहुत प्यारा सा मेल किया है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। और अब बारी आ जाती है एक प्यारे से गाने की, गाने के बाद फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तो गाना कुछ इस तरह

0: की बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे बहुत ही थोड़ा सा वक्त बचा है और जिनकी कौन कनेक्ट हो गई उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो देखिए ऐसा भी हो जाता है पता है आपको। हेलो अमित यादव जी हमारे साथ कनेक्ट है और इनका कहना था कि इन्होंने ये कहना चाहा था कि गंगानगर से इनका फोन कनेक्ट हुआ था, ये बोलना चाह रहे थे कि जो लोग वक्त पर आपके काम है उन्हीं से जान पहचान को आगे बढ़ाना चाहिए और फालतू लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये इनका आपका अपना कुछ ऐसा अनुभव रहा होगा, लेकिन किसको किससे दोस्ती करनी चाहिए, कौन किसका मित्र है कौन नहीं है, ये तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिसकी जैसी मित्रता है और किसको कंटिन्यू करना है किसकी कंटिन्यू नहीं हो पा रही, ये सब तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। राहुल कुमार जी का भी मेल आ गया है और इन्होंने अपना इनका मेल हमने शामिल किया, इनका नाम ऑन एयर कर दिया है। और ये राहुल प्रजापति गांव मजगई से इन्होंने, जिला लखीमपुर खीरी से इन्होंने मेल किया है और इनको प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, साथ में ये चैनल यानी कि FM रेनबो बहुत पसंद आता है और इन्होंने फरमाइश करनी चाहिए, तो फरमाइश के प्रोग्राम में आप फरमाइश करिएगा। फिलहाल ये एक संदेश आपका प्यारा सा हम शामिल करने के लिए आपको यहाँ पर करना है और बहुत लास्ट में लोग मेल करते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी मेल किया करिए। और आदरणीय रत्ना शुक्ला मैम जी को नमस्कार प्रणाम। नियमित श्रोता महेंद्र दीपन जी का मेल आ गया है, जिला नागौर राजस्थान से सुन रहा हूँ। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज आपकी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही है, उम्मीद है कि आप ठीक हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल, थोड़ा सा मौसम का असर है भाई, मौसम में बदलाव है तो आवाज़ में भी बदलाव आ गया, ख्याल जरूर रखूंगी। और लिखते हैं कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए 3 जरूरी नियम है जो इन्होंने साझा किए हैं, कि OTP आप गुप्त रखें, सबसे पासवर्ड OTP ना शेयर करें और अज्ञात लिंक से बचें और साइबर हेल्पलाइन नंबर का यूज करें, सचेत रहें सुरक्षित रहें। मैं इस संदेश को अपने मधुर अंदाज में पढ़ दिया, अच्छा जी मैंने आपका संदेश पढ़ दिया। महेंद्र दीपन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सचेत रहने वाले मेल हमको भेजा। उसके बाद वारिस अली जी का भी मेल आ गया है, लिखते हैं तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, एक दिन हाथों की लकीर भी बदलेगी, और जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो अंदर की सुनता है वही सवर जाता है, और अंतरात्मा की आवाज़ सुना करें। एडवोकेट वारिस अली खान संजय नगर यशबाग से इन्होंने मेल किया है और सबके मेल हमने शामिल करने की कोशिश की। और राहुल कुमार जी का, बिग बॉस का, वारिस अली जी का, महेंद्र दीपन जी का, रॉयल अमित जी का, टुक टुक जी का, मोहम्मद आसिफ जी का, इन सबका मेल हमने शामिल कर लिया। उसके साथ अब हम कहेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, बस सुनते रहना है, ट्यून इन रहना है FM रेनबो के साथ, जिस पर बहुत ही बेहतरीन सा सॉन्ग हमने प्ले कर दिया है। 11:55 हो चुके हैं, हम भी अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, बदलते मौसम में आप भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और 100.7 FM रेनबो से जरूर जुड़े रहिएगा। इसमें हर तरह के प्रोग्राम आते हैं, आपको सूचना एंटरटेनमेंट सब कुछ मिलता है। तो अब अगले कुछ घंटे प्रतिमा आपके साथ रहने वाली है, उनको सुनिए, उनके साथ जुड़िए और FM रेनबो पर बने रहिए। रत्ना शुक्ला कहती है मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम के शब्दों ने देशभक्ति की भावना जगाई और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं, धर्मों के लोगों को एकजुट किया। इस अवसर पर किरेन रिजिजू, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जी किशन रेड्डी और राजीव रंजन सिंह सहित केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। सर्वोच्च न्यायालय ने 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि वे कैंसर को जल्द पता लगाने और मरीजों की सही देखभाल सुनिश्चित करने के लिए इसी सरकार को सूचित करने योग्य बीमारी घोषित करने पर विचार करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कल ये निर्देश जारी किया। न्यायालय को बताया गया कि संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 17 ने पहले ही कैंसर को सरकार को सूचित करने योग्य बीमारी घोषित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कैंसर की जांच लागू करने के उपायों पर भी जानकारी मांगी है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज रायबरेली जिला प्रशासन द्वारा भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने राजकीय इंटर कॉलेज से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने स्वयं हाथ में तिरंगा लेकर रैली में प्रतिभाग किया। तिरंगा रैली में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, वैदिक

इंटर कॉलेज एवं आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इसके साथ ही कॉलेजों के एनसीसी कैडेट्स ने भी रैली में हिस्सा लिया। रैली में लगभग 1500 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग कर राष्ट्रप्रेम एवं देशभक्ति का संदेश दिया। उधर जौनपुर के सदर विधायक व राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा में युवाओं के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। चित्रकूट में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने और आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। पशु जन्म नियंत्रण यानी एबीसी सेंटर की स्थापना के लिए 2,79,00,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। एबीसी सेंटर में आवारा कुत्तों के वैज्ञानिक और मानवीय तरीकों से नसबंदी, एंटी रेबीज टीकाकरण और आवश्यक उपचार किया गया। ऑपरेशन के बाद देखभाल कर उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा। इस पहल से कुत्तों की बढ़ती संख्या, रेबीज के खतरे और मानव पशुधन संघर्ष को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल 100.7 FM पर। मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा जी। दोपहर के 12:04 और 57 सेकेंड कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ शत्रुपा। आज बुधवार का दिन और बुधवार का दिन होता है बहुत ही खास, तमाम सारे जायकों की हम बात करते हैं जी। तो आज का दिन, आज बुधवार के दिन हम क्या जायका लेकर आए हैं? स्वाद, यादें, लखनऊ का जायका, बारिश, पकौड़े, आज़ादी के लड्डू, राखी की मिठास, मौसम के बदलते मिजाज के साथ किस तरह से हमारे टेस्ट बदलते हैं, बहुत कुछ है भाई जो आज आपसे हम शेयर करेंगे। और इन सारी बातों के बीच में आपको कुछ ना कुछ मज़ेदार बातें भी बताएंगे और कुछ रेसिपीज भी आपसे शेयर करेंगे। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा, स्टे ट्यून्ड।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, रते जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, तौल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड।

0: टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: हाँ जी, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा। स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया 12:12, और आज भाई वेडनेसडे का दिन, शत्रुपा प्रोग्राम में बात कर रहे हैं जायकों की। स्वाद और यादें, कहते हैं ना कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ खाते ही नहीं है, महसूस भी करते हैं। जी हाँ, फील करते हैं। मम्मी के हाथ का खाना क्या अलग ही स्वाद होता है ना, बारिश के पकौड़े और त्योहारों पर बनने वाली वो मिठाइयाँ। जी मैं मिठाइयाँ घर की बात कर रही हूँ, बाहर की नहीं। बचपन की वो यादें, कितनी सारी बातें। खाने का जायका सिर्फ मसालों से नहीं बनता, उसमें मौसम भी होता है, त्योहार भी होते हैं, रिश्ते भी होते हैं, और सबसे बढ़कर होती है अपनेपन की खुशबू। तो आज शत्रुपा में हमारा खास सेगमेंट जायका है। चलिए स्वाद के बहाने कुछ खूबसूरत यादों की तरफ चलते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करेंगे और आपको आपकी उन यादों में जरूर हम खोने पर मजबूर करेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक. मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा रिवर. फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम शत्रुपा में. भाई आज वेनेसडे का दिन, बुधवार का दिन, और बुधवार को बातें करते हैं कुछ खानों की, जायकों की. और लखनऊ के खाने की बात हो, लखनऊ के जायके की बात हो, तो भाई लखनऊ का खाना तो वर्ल्ड फेमस है. लखनऊ की बात हो और खाने का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. इस शहर की तहजीब जितनी मशहूर है, यहाँ का जायका भी उतना ही ज्यादा खास है. सुबह की खस्ता कचौड़ी से शुरू होकर शाम की चाट तक, लखनऊ की गलियों में हर मोड़ पर कुछ न कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी खुशबू आपको अपनी तरफ खींच ही ले जाती है. मक्खन मलाई की नजाकत हो, मलाई की गिलौरी का स्वाद, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता भाई साहब, बल्कि एक अनुभव देता है. शायद इसीलिए लखनऊ में खाना भी अपने अंदाज में खाया जाता है. पहले खुशबू आती है, फिर स्वाद, और फिर वो स्वाद ना पूरी जिंदगी याद रह जाता है. आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन लखनऊ का जो खाना है ना, वो आपको अपनी तरफ बुलाता ही रहता है, खींचता ही रहता है. आप सुन रहे 100.7 FM रेनबो, मैं आपके साथ प्रतिमा, और शो चल रहा है शत्रुपा. रेनबो धड़कन लखनऊ की.
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम.

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: वंस अगेन वेलकम बैक, आप सुन रहे 100.7 FM रेनबो, मैं हूं आपके साथ प्रतिमा, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा। आज भाई बुधवार का दिन, और बुधवार के दिन हम बातें करते हैं जायके की। अब से कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि लखनऊ का जायका, लखनऊ के खाने का जिक्र होता है तो भाई लखनऊ का खाना ना वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की खस्ता कचौड़ी की बात करें, यहाँ के चाट की बात करें, यहाँ के मक्खन मलाई की बात करें, यहाँ की रुमाली रोटी की बात करें, या नॉनवेज की बात करें, जी हाँ सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वैसे कुछ दिनों में 15 अगस्त आने वाला है, और आज़ादी और लड्डू, जी हाँ 15 अगस्त की जो एक ये जो माहौल होता है, आज़ादी का दिन, तिरंगा, देशभक्ति के गीत तो हम गाते ही हैं, लेकिन स्कूल में जो बच्चे जो छोटे होते हैं उनके लिए एक बहाना होता है कि भाई हमें जाना है और लड्डू खाना है। बूंदी का लड्डू हो या बेसन का, गोल गोल ये छोटे से लड्डू जैसे खुशी को अपने अंदर समेटे होते हैं। बचपन में 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद हाथ में मिला एक छोटा सा लड्डू भी कितना बड़ा इनाम लगता था, है ना। आज उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन वो 15 अगस्त और लड्डू का ये रिश्ता शायद आज भी वैसा ही है। तो इस बार जब तिरंगा फहराएं, देशभक्ति का गीत सुनें और मिठाई का एक टुकड़ा खाएं, तो उस मिठास में आज़ादी की खुशी भी ज़रूर महसूस कीजिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा, और एक बहुत ही शानदार सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। इंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: लखनऊ है तो महज गुम्बदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: You are listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow.

जी आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा और शो चल रहा है शत्रुपा। स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है 12:37:52। आज भाई वेडनेसडे का दिन, बुधवार का दिन, और आज हम बात करते हैं जायके की। जी हाँ, टेस्ट की। हमने बहुत सारी बातें अभी की, हमने जाना कि किस तरह से लखनऊ का जायका कितना ज़्यादा फेमस है, और बारिश और पकौड़े का रिश्ता भी हमने जाना, आज़ादी और लड्डू के बारे में भी हमने जाना। भाई 15 अगस्त को किस तरह से छोटे पे जब हम इंतज़ार करते थे कि 15 अगस्त आएगा, और 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, हाँ ठीक है, पता था, छोटे पे भी शायद अंदाज़ा था इस चीज़ का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चों में जो क्रेज़ रहता था, जो उनकी इच्छा होती थी कि भाई जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, हाथों में तिरंगा लेकर और लड्डू खाने को मिलेंगे, वो यादें, वो समा, वो वक्त ही भाई कुछ और था। अच्छा, अगस्त का महीना है और 15 अगस्त की तो बात हो रही है, लेकिन उसके साथ ही हम रक्षाबंधन को कैसे भूल सकते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन के प्यार का अटूट बंधन। त्योहारों का मौसम धीरे धीरे दस्तक दे रहा है और 28 अगस्त को भाई रक्षाबंधन है। राखी का त्योहार आते ही घर में एक अलग ही रौनक हो जाती है। राखी की थाली सजती है, रोली अक्षत रखे जाते हैं, मिठाइयों का डिब्बा खुलता है, काजू कतली बर्फी रसगुल्ला लड्डू मिठाई कोई भी हो, राखी की असली मिठास तो उस पल में होती है जब बहन भाई मिठाई खिलाते हैं और राखी बांधते हैं। बहन के लिए कुछ मीठा ज़रूर लेकर आते हैं भाई, और कुछ ना कुछ तोहफे में उपहार भी देते हैं। दरअसल रिश्तों में भी एक जायका होता है, सही कहा ना, कभी मीठा कभी खट्टा कभी थोड़ी बहुत नोकझोंक। लेकिन ये जो खूबसूरत से रिश्ते होते हैं, इनकी जो यादें होती है ना, ये पूरी जिंदगी हमारे जहन में रह जाती है। तो बहुत सारी बातें हैं जो करेंगे आपसे, और इसके साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर।
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल।
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: यू आर लिस्निंग टू 100.7 FM रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।

0: You're listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow.
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
3: पुरानी जींस और गिटार
2: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
3: जगह
2: फिर रात को फुर्सत के वो पल
4: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
1: सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की

सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो। मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा। स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया 12:52 और 40 सेकंड का। भाई वेनेसडे का दिन है, शत्रुपा प्रोग्राम में हम हर बुधवार को लेकर आते हैं जायका सेगमेंट। बात करते हैं कुछ टेस्टी फूड की और कुछ रेसिपीज भी आपको बता देते हैं। वैसे अगस्त का मंथ है और अगस्त के मंथ में हम 15 अगस्त की बात तो बहुत सारी कर चुके हैं, राखी की भी बात कर चुके हैं, और अब कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंथ में, मतलब कहा जाए कि कुछ डेज के बाद, रक्षाबंधन के बाद आपका नवंबर में दिवाली भी आ जाएगा। और ये जो टाइम जाता है ना भाई, पता नहीं चलता। तो क्या है, दिवाली की बातें तो हम उस टाइम पर करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जायके की। और जिस तरह से मौसम बदलता है ना, स्वाद भी बदलते रहते हैं। गर्मियों में ठंडी शिकंजी अच्छी लगती है, आम का पन्ना अच्छा लगता है, और बरसात आते ही चाय पकौड़े याद आने लगते हैं। सर्दियों में गर्मा गर्म सूप अच्छा लगता है, मूंगफली, गजक और गाजर का हलवा, भाई कहने ही क्या है, किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा जी। यानी हमारी रसोई भी ना मौसम के साथ अपना रंग बदलती रहती है, और शायद इसी वजह से भारतीय खाना इतना ज़्यादा खास है। हर मौसम के पास अपनी खुशबू है, अपना स्वाद है, अपनी एक छोटी सी कहानी भी है। तो आज जायका के इस सेगमेंट में हम बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको बहुत सारा खाना याद दिला रही होगा, और आपको बहुत सारे अपने वो अच्छे मोमेंट्स भी याद आ रहे होंगे जो आपने किसी खास के साथ बिताए होंगे। आपसे मैं 100.7 एफएम रेनबो, मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा, और एक बहुत ही शानदार सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

जी, स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया 12:59 और 13 सेकेंड। जी शत्रुपा, प्रोग्राम में आज इतना ही, और जायके पर बहुत सारी बातें कर ली। अभी हम न्यूज़ ब्रेक के उस पार एक और प्रोग्राम लेकर आएंगे, आपका खास प्रोग्राम होठों पे तेरी बात, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कि अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पास यू तो वो सामान अवेलेबल रहता है, सपोज हमारा पेन ही है, हमारे पास हमेशा रहता है, लेकिन जिस दिन हम बैंक जाते हैं या किसी खास काम से जाते हैं जहाँ पे हमें उस पेन की ज़रूरत होती है, बस उस दिन वो हमें हमारे बैग में नहीं मिलता। जी, तो बस आज का सवाल यही है कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें बताना होगा आपको FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आपके पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत।

श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुरोध गीत में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज पहला पत्र आप सभी का हम तक पहुंचा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक विरक और मीका विरक। कस्बा शीशगढ़ से हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। रेलवे कॉलोनी भटिंडा पंजाब से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। अजीत नगर मरोड पंजाब से हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर का। जिला बदायूं कस्बा बिलसी से हैं रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फरासत अलवी, गुलशन अलवी, जानवी अलवी, हानिया अलवी, निजाकत अलवी, शाहीन अलवी, आहिल और आदिल अलवी का।

कुमार हेड़ा जिला सहारनपुर से हैं, सैयद मसरूर, गुलजार जहां, अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया और आफिया का। वीरम गांव गुजरात से हैं, अजीत भवसार, भावेश सनी, हेतल कृष्णा, जैमिन भवसार। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं, और इस गीत को गाया है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने।

0: हर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
1: श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है अनुरोध गीत में आप सभी लोगों का। कटरा चांद का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य का। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बिसलपुर जिला पीलीभीत से हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्य, खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, बिलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अक्रम सैफी और आबाद खान, दसमल चौक परतूर जालना से हैं सुरेश आपा दसमले, सौरभ दसमले, सुधाकर जी दसमले चौक से हैं जयश्री दसमले, शिवानी दसमले, अर्चना काटे, आकांक्षा काटे और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त, मस्तानपुरा से हैं आनंता भगत, अरुणा भगत, चित्तन कुमार और लोचना भगत। आप सभी लोगों ने पसंद किया है फिल्म फूल और कांटे का ये गीत, और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने।
2: मैंने

मेगाहर्ट्ज यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 एफएम पर। ग्राम रटे नगला अलीगंज एटा से हैं दीपक शाके, ज्योति शाके, अंकित पूजा और सक्षम शाके। पीपर पारा पालचुवा मुंगेर छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर। ग्राम बगबुड़वा पथरिया नरेंद्र से हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। परीमहल कासगंज से हैं आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नबील, एम असलम सैफी। कंजुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही। बेरेडी से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, थनक्ष आरू साहू। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन समर, राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा का। खम्बरिया बिलासपुर से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का। बॉर्डर टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप मुगलानी, जगमोहन प्रजापति। राजनांदगांव से है याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से है रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी का। सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से है हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है मैं हूं ना और इस गीत को गाया है सोनू निगम और आफताब साबरी ने।

बर्ड्स यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।

से हैं गणेश कुमार, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, युवराज शर्मा, इशिता वीर, संदीप चंचल शर्मा, सूरज चिंकी और अब्रार अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी, गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से हैं राजीव सेतिया, रजनी, आरती और तनिष्का। छत्तीसगढ़ भाटापा दतरेंगी से हैं त्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा। मलोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी का। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद का। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। करुला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और नावेद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी, रेहान शेख और इमरान शेख। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार का। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत घमणाकर, राही सरिता घमणाकर, सिद्धांत घमणाकर, प्रिंस एकांश। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं शैलेश वैशाली, श्वेता, सुमित घबराकर, ध्वनि घबराकर और परिका। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ और शाइना शर्मा का। प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता और इस गीत को गाया है अर्का याग्निक और कुमार सानू ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: मेगाहर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
1: श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचे अनुरोध गीत में आप सभी का। पीर बहुड़ा बरेली से हैं आजाद खान, दिलशाद मुस्तकीम और तबस्सुम का। बोहला तलैया उड़ला जागीर से हैं फजरुद्दीन भाई, अब्दार भाई, अफजल भाई, रामप्रसाद शर्मा। गैंगटा काशी धर्मपुर बरेली से हैं फहीम खान, सिद्दीक अली साबिया। दूनेनगर से हैं ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। वजीरगंज जिला बदायूं से हैं प्रेम कमल वाष्णे, सुशीला कमल वाष्णे, प्रभात अम्बरीश, सलोनी सचिन, नीरू देविका, कार्तिक वेदरिचा और ऐश्वर्या कमल वाष्णे का। गांव चौहलादा बागपत से हैं संजय ढिंगिया, नमन मुस्कान और कुणाल। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर का।

गड़गया वैली मस्जिद के पास से हैं मोहम्मद कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेद शमसी, रजिया शमसी और बेबी का। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से हैं नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का। बरी जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, मोहन लाल सोनू, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, प्रदीप पाल, नमन का। डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से है राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का। ग्राम बठेना पाटन से है बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली शिवम, चटौदा सारा गांव से है सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष वर्मा का। अमरपुर पेंड्रा से छत्तीसगढ़ से है दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव का। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव का। कुंज निवास धाकुन इज्जतनगर बरेली से है वी के जौहरी विनोद, अर्चना जौहरी, अर्पित जौहरी और शायना बी का। ये पत्र हमारे पास आया है छावनी अशरफ खां से है। आप सभी लोग जय श्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, वंश, छोटी गौरी, काकू, रीता, विनोद कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। बैड़ी से हैं अंजुम भाई और खालिदा बेगम। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर और इस गीत को गाया है कुमार सानू ने। शब्द रचना है नवाब आरजू की और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर।

श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचे हैं अनुरोध गीत में आप सभी का। ग्राम अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर का। ग्राम बुड़गहन से हैं छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशून प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता और शशिकांता। इस्लामपुरा सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश कौर और मोहम्मद शादाब खत्री का। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। लक्षनपुर से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रज्जक। मोपका भट्टापारा से हैं भेवेंद्र कुमार साहू, लकी हर्षित और सुमित्रा साहू। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास से हैं चनेठी बरेली से विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान का। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी। इनके दोस्त जमभेदपुर बड़ा बांबो गांव सुपाई साई से हैं देवेंद्र ताती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी का। मिलक भूजपुर आशा जिला मुरादाबाद से हैं बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन और शहजाद हुसैन। फरीदपुर से हैं आप सभी लोग अक्षिता, ईशु, पापसी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी, इनके दोस्त। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत, आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। पर जाइएगा कहीं नहीं, लगातार कार्यक्रम आपको सुनने को मिलेंगे। और इसीलिए जो है अब दोपहर के 2 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे रस रंग मुनव्वर जहां के साथ।

अनुरोध गीत रोचना मिश्रा के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बज चुके हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रस रंग।

तेरी हर एक अदा को मैं जान गई ना, अपने कमली वाले की अदा पर मैं वारी वारी गई। दोस्तों, ये अभी आपने खूबसूरत सी कव्वाली सुनी ज़हीर अहमद ख़ान और साथियों की आवाज़ों में। श्रोताओं, दोपहर के 2:10 और 32 सेकेंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। रसरंग का अगला जो रंग है वो है चंदन दास की गज़ल में। आपका प्यार मिलेगा तो सवर जाएंगे।

अपने होठों से मेरे गीत सजा कर देखो, मेरे नगमे हैं तुम्हारे लिए गा कर देखो। दोस्तों, अभी आपने एक खूबसूरत सी गज़ल सुनी चंदन दास की आवाज़ में। आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। 2:30 होने को है। आइए अब हम आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, जहां आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
3: कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
3: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में। लिखा था इसे साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने।

0: मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये जिद्दी फिल्म का गाना है, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: मैं क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिल बदल।

जिद्दी फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं बहू बेगम फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत है। सुनिए प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे लाल पत्थर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज में। नीरज की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। हमने उद्घोषणा की थी बहू बेगम फिल्म के गाने के लिए, लेकिन हम माफी चाहते हैं, वो गाना हम नहीं सुनवा सके, हमारे कंप्यूटर जी थोड़े से नाराज थे। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफर खत्म होता है। आज्ञा दीजिए ममता सिंह को। नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सारी सखियां सहेलियां और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
0: बिल्कुल आपका जो नमस्कार है सभी ने उसे
1: स्वीकार
0: लिया और हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे हैं और हेल्थ का ध्यान रखना सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम में देखिए ना घर घर में हम सुन रहे हैं किसी को नजला हो गया है किसी को खांसी हो गई है कहीं बुखार है तो ऐसे में अगर हम पहले से ही थोड़ा सा अपना ध्यान रखते चलते हैं ना तो ये जो बदलते मौसम में तबीयत जो खराब हो जाती है ये जरा संभल जाती है
1: और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं ना दीपा उन्हें मालूम होता है कि भाई अभी बहुत जगह पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई है तो पानी उबाल कर पीना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए। यानी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं बहुत सारी योजनाएं होती हैं तो हमें रोज अखबार पढ़ते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा और ऐसे ही देखो ना ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यंजन खाने का और बनाने का बड़ा मन करता है। अच्छा चलिए सखियाँ बनाने का भले मन नहीं करता होगा लेकिन खाने का तो करता होगा ना।
1: मेरा तो मन करता है।
0: बिल्कुल तो वैरायटी सबको चाहिए एक विविधता होनी चाहिए ना सिर्फ अपने जीवन में खाने में भी।
1: हाँ और है ना वही वही तरह के जब हम खाने खाते हैं ना तो बच्चे क्या बड़े बूढ़े सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अरे वही बना लिया। तो ओट्स जो होते हैं ना प्रोटीन से भरे होते हैं तो उसके व्यंजन बहुत सारे व्यंजन हमारी सखियों ने हमारे श्रोताओं ने लिख कर भी भेजे हैं।
0: बिल्कुल
1: किसी ने डोसे का लिखा है किसी ने उपमा लिखा है तो किसी ने खीर लिखा है तो आप भी लिख कर भेजिए कि आपके घर में ओट्स के व्यंजन बनते हैं और नहीं बनते तो क्या बनने चाहिए।
0: बिल्कुल और देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन मेहनत का फिर फल भी तो बहुत मीठा होता है।
1: बहुत मीठा होता है।
0: और जब सारे खुश हो जाएंगे और उस मेहनत का जब रंग निखर के आएगा तो फिर देखिए न सिर्फ हर दिन हमारा जीवन भी सहज

0: संवर जाएगा और यही शब्द है हमारा आज का।
1: मेहनत। तो आज का है शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें मेहनत है। यानी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, बिना मेहनत के हमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती।
0: बिल्कुल। और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं उन्हें लगता है साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जो अनुभवी महिलाएं हैं वो कहती है तुम जितनी देर में ड्रेस पहनोगी हम उतनी देर में साड़ी पहन लेंगे,
1: हम चट से पहन लेंगे।
0: तो साड़ियों का अपना एक सुंदर संसार है और एक महिला जितनी खूबसूरत साड़ी में लगती है किसी अन्य परिवेश में परिधान में शायद कम लगती है। ये आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा सखियां कि साड़ी पहनना आसान है या ड्रेस पहनना आसान है, और अगर आसान ड्रेस है तो खूबसूरत किस में ज्यादा दिखते हैं।
1: और श्रोता भाई भी बताएं कि महिलाएं किस ड्रेस में यानी किस परिधान में ज्यादा सुंदर लगती है।
0: जी
1: तो खंडुआ साड़ी ओडिशा के बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारी बहुत सारी श्रोताओं ने, हमारी बहुत सारी सखियों ने भी इस विषय में मैसेज लिखना शुरू कर दिया है। साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो सारे युवाओं को भी हम बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
0: बिल्कुल, उन सभी को उनकी ऊर्जा को सलाम, और उन्हें ये एक सीख भी देते हैं कि अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक पथ पे आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को संवारते चलें।
1: जी,
0: और अब हम क्या करें,
1: गीत सुनते हैं।
0: चलो।

0: अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
1: बिल्कुल,
0: तो युवा जो होते हैं ना, किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके भीतर असीमित ऊर्जा, कुछ नया करने की ललक और दुनिया को बदलने का साहस होता है। और इसी ऊर्जा और सामर्थ्य को सम्मानित करने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये दिन युवा दुनिया भर के युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी को रेखांकित करने का एक साझा मंच है।
1: बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे देश की हम बात करें तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दिन और भी खास और जीवंत हो उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। तो भारत का युवा जो है उसको हम केवल जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड ये नहीं हम बोल सकते, ये आंकड़ा नहीं है, वो लोग ये नहीं हम मान सकते, बल्कि देश के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का मुख्य कारक भी हमारे युवा हैं।
0: ये तो बात आपने बहुत सही कही दीपा। और आज का भारतीय युवा केवल अवसरों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और नए विचारों के जरिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक या तकनीक से लेकर सामाजिक क्रांति तक भारत का युवा हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक देश के युवाओं का ये संगम इस बात का प्रतीक है कि जब युवा सशक्त होता है तो वो न केवल अपने देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है।
0: बस युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही
0: कि ये जो महत्वपूर्ण वर्ष है ना, ये जिंदगी में बार बार नहीं आते।
1: बिल्कुल, और ये ऊर्जा भी बार बार नहीं मिलेगी।
0: हाँ,
1: है ना, ऊर्जा संगठित करके रखना होता है।
0: तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना, उनका जीवन उज्जवल हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और सबसे जरूर बात है मेहनत।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और ये वो सुनहरे वर्ष हैं जहां आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है, और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनकी मानहानि ना हो, या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गाँव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर हैं, तब भी माता पिता को ये लगे जहां भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है।
0: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी सोनाली। इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है। थीम है अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो, लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
0: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है। और अब क्या किया जाए,
1: आज थोड़ी हल्की सी फुहार यहाँ पर रिमझिम सी बरसात हो रही है, तो चलिए दोस्तों
0: उसे महसूस करते हैं गीत के माध्यम से।

0: सोनाली, कहाँ खोई हुई हो संदेशों में?
1: यहाँ आने के बाद में हम दोनों नहीं होते हैं दीपा, हमारे साथ में इतने सारी श्रोता, इतनी सारी सखियां जो घर में सुनते हैं और हम उनके संदेश पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो संदेशों के माध्यम से बहुत सारी हमारी सखियां इस वक्त हमारे साथ हैं,
1: जुड़ी हुई है। और आज एक खास दिन है।

0: तो चलो चलते हैं
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। ओडिशा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहाँ की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो उड़ीसा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंध गाँव में बुनी जाती है।
1: और दीपा इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इक्कत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग रंग कर के पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंद कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिजाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और

0: और मंदिर की आकृति यानी टेम्पल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो और तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है।
1: जी, और सूती खंडवा उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है। ये वाली साड़ी हल्की होती है, ब्रीदेबल, यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है
0: ये
1: या
0: चुभ रहा है।
1: चुभ रहा है, वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियां रोजमर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
0: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसके बॉडी या आंचल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता है। और एक है टसर खंडुआ, इसमें टसर सिल्क का उपयोग किया जाता है। इसमें साड़ी को एक प्राकृतिक हल्का सुनहरा और मैट टेक्सचर मिलता है।
1: अब देखो, ये इतनी तरह की साड़ी है, तो अगर आपको टसर जो फैब्रिक है वो पसंद है तो उसकी साड़ी ले सकते हैं। कहता ना कि क्या पहनना ज्यादा पसंद है, तो हमारी एक सहेली लिखती है कि मुझे साड़ी पहनना बेहद पसंद है और पहनती भी हूँ, पर अब ड्रेस पहनना शुरू कर दिया है। ड्रेस पहनना ज्यादा इजी लगता है, झट से पहन लो और चल दो। मुझे भी साड़ी में खूबसूरती ज्यादा दिखती है, और सलवार सूट हो या कोई भी ड्रेस हो, अगर सलीके से पहना गया रंग उम्र और समय के अनुसार तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। पर साड़ी की बात तो कुछ और निराली है, तो भाई साड़ी जीतती जा रही है, जीत तो साड़ी की हो रही
0: और
1: है।
0: एक सखी ने लिखा है, आज हरियाली अमावस्या है, आज भी महिलाएं खूबसूरत रंग बिरंगी हरी साड़ी चूड़ी में सज धज कर मंदिरों में, बाजारों में दिख रही है। साड़ियां, चूड़ियां और राखियों की खरीदारी चल रही है। मेहंदी लगवाने की भी भीड़ लगी हुई है। गर्मी है फिर भी सभी को अपनी बारी का इंतजार है।
1: वही हमारे एक श्रोता भाई ने लिखा है, जी ये डिपार्टमेंट तो केवल माताओं बहनों का है। भाई बात तो सही है, लेकिन खरीदनी तो जाने जाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आगे लिखते हैं कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे। आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
0: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है। धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं, पर देखा है ना आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं,
1: हाँ
0: कुर्ते
1: बिल्कुल।
0: बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं। तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह, धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है। जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: कोई हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संग संकारा सोमनी, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भू विज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
2: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्ही दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गयी कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन

0: में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओ, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
0: श्रोताओ, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
1: जी।
0: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओ, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
0: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोष, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
1: श्रोताओ, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
0: जी हाँ श्रोताओ, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
1: तो आइए श्रोताओ, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
0: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
0: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊँगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, है? मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
4: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
4: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
3: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु। जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर

0: दिन रात अपमान करते रहते हैं।
1: सुभाष, प्रोफेसर रूटन आ रहे हैं।
2: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
0: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर रूटन।
2: Is that right? You black monkey?
1: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
2: बात जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
0: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
2: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
0: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
2: तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? You scoundrel! You bloody swine! बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
0: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
2: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
0: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर रूटन, आइंदा याद रखिएगा।
3: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
4: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
5: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
4: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
5: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
4: और अपने सुभाष बाबू?
5: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
6: कितनी सजा हुई?
0: नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
4: क्या हुआ सुभाष बाबू?
0: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूँ कि कोई मुर्गी चोर?
3: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया।

0: एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
1: कौन? शिशिर?
2: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ। दरवाजा खोलिए।
1: आओ, अंदर आ जाओ। क्या खबर है?
2: सब तैयारी हो गई है। पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे। मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
1: ठीक है, चलो। लेकिन मेरे ये कपड़े?
2: उसका भी प्रबंध हो गया है। आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
1: ठीक है।
2: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
1: तो फिर ठीक है, आओ चले।
2: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
3: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: अल्लाह अल्लाह।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
4: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
4: खुदा हाफिज साहब।
5: लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल न जाने क्या हो।
6: ये अखबार कहां गए?
5: हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
7: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की।

यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए एक कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
5: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना।

0: कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। शाम के 4 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि किन्हीं तकनीकी कारणों से आज आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग बाधित हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ कॉल्स रिकॉर्ड नहीं हो पाई। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आपके इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज का विषय है आजकल लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के हमारे लिसनर के क्या विचार हैं। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
4: सुल्तान रजा बात करता हूं।
3: सुल्तान रजा, कुतुब खाना सब्जी मंडी।
4: जी,
3: कैसे हैं सुल्तान रजा?
4: जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है, हम बताइए।
3: सब अल्लाह का करम है। सुल्तान रजा, आज का हमारा विषय है आजकल लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: पहले तो एक आपके लिए शेर है।
3: जी बताइए।
4: दूर की दोस्ती भी बड़े कमाल की होती है, दूर की दोस्ती भी बड़े कमाल की होती है, मिलना कहाँ होता, सिर्फ ऑनलाइन बात होती है।
3: अच्छा।
4: हाँ, अब वो विषय जो है आपका, अच्छा लगा आपका।
3: आजकल लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं, इस पे बताइए।
4: मैम, यही है कि लोग टाइम से ना तो सो रहे हैं और ना ही टाइम से कुछ काम कर रहे हैं।
3: जी।
4: तो सारा जो है सिस्टम बिगाड़ रखा है लोगों ने। टाइम सोने का है तो वो जागते रहते हैं, और जो जगने का है वो सोते रहते हैं उसमें।
3: जी, इसी में टाइम शॉर्ट हो जाता है।
4: जी, इसमें टाइम चला जाता है, उसके बाद भागा दौड़ी रहती है। हमें कहीं से जाना है तो बाइक को लगता है बस पहले गियर ना लेके चौथा गियर है वो भी चला के और तेज निकल जाए लेके आगे और रफ्तार के साथ चले। फिर
3: जी जी बिल्कुल।
4: उसके बाद फाटक बंद होता है, उसके नीचे निकलते बैठते हैं और फिर नहीं छोड़ कर जाते हैं।
3: जी, और रेड लाइट भी कभी कभी क्रॉस कर देते हैं, और अगर ओवरटेक करते हैं
4: थोड़ा सा पहले निकलने घर से 10 मिनट, तो शायद जल्दबाजी ना करना पड़े।
3: जी बिल्कुल। और पहले निकलने के लिए जो आपने जड़ बताई है, इसका मूल यही है कि समय से सोएं और समय से सवेरे
4: उठे।
3: जी, अगर हम समय से उठते हैं तो हमें सफिशियंट टाइम मिल जाएगा, और जब टाइम मिलेगा तो सारे काम समय पर होते रहेंगे, है ना?
4: होते रहेंगे।
3: जी, बहुत अच्छी बात बताई सुल्तान रजा आज आपने। आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
4: चांद तारों में नजर आए थे।
3: बहुत प्यारा सॉन्ग आज आपने सुनना पसंद किया है। लीजिए, हम भेजते हैं आपके रेडियो सेट पर आप की पसंद का ये।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। बहुत समय से नंबर लगा रहा हूँ, कम से कम 10 साल हो गई मैम।
0: अरे, 10 साल से नंबर लगा रहे हैं?

0: साहब?
1: नहीं नहीं लग पा रहा, आज लगा है, आज 10 साल में।
0: मतलब 10 साल में आज लगा है नंबर?
1: जी जी, मेरा गांव ग्राम समूह है, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली।
0: जी, क्या करते हैं मोहम्मद अहमद?
1: जी खाली बैठते हैं, मैं घर रहते हैं, खाली कार्यक्रम सुनते हैं आपके घर।
0: खाली क्यों बैठते हैं, कोई काम नहीं करते हैं क्या आप?
1: नहीं नहीं कुछ नहीं करते हैं, घर रहते हैं।
0: क्यों?
1: नहीं करते हैं।
0: अच्छा,
1: घर मतलब का काम बहुत है, घर का डंगर बारे में है।
0: जी वही तो हम जानना चाह रहे थे, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो घर के होते हैं, जो कि घर में लोग निपटाते हैं, जैसे कि उनके पशुओं की देखभाल होती है, किसानी खेती से रिलेटिव काम होता है, दूध उत्पादक का काम होता है ना, तो ये भी काम होते हैं। इसे ये नहीं कहा जाता है कि खाली बैठे हैं, तो ये भी सारे
1: काम काज में लगे रहते हैं मैम।
0: जी जी,
1: मगर आपसे बहुत बात करने की खुशी हुई है हमें।
0: जी हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब हमारे लिसनर इतने सालों बाद, सालों से ट्राई करते हैं,
1: 10 साल से नंबर लगा रहे हैं, 10 साल हो गए हमें नंबर लगा दी, मगर आपका नंबर ही नहीं लग पा रहा।
0: फोन पे आज बात हो रही है ना?
1: जी,
0: अच्छा
1: जी।
0: आज मोहम्मद अहमद, आज का विषय हमारा है, आजकल लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जल्दबाजी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
1: नहीं नहीं नहीं, जल्दबाजी करना नहीं चाहिए।
0: जी,
1: जल्दबाजी में ही नुकसान होता है, कुछ नहीं होता है।
0: जी, क्या आपको कभी नुकसान हुआ है जल्दबाजी में?
1: जल्दबाजी में हमने कराया, हाँ नुकसान हुआ है, गाड़ी से जल्दी में जा रहा है, गाड़ी गिर गई,
0: हाँ
1: चोट लगी।
0: जी,
1: जल्दी में नुकसान ही हुआ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये गनीमत रही कि आपकी जान बच गई, चोट लगी लेकिन जान बच गई। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि जल्दबाजी में वो लोग निकलते हैं, जाते हैं, ओवरटेक करते हैं, या फिर सामने से कोई गाड़ी आती है, जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता, और
1: जल्दबाजी नहीं कर रहे।
0: जी, जान भी चली जाती है लोगों की।
1: हाँ, जान भी चली जाती है।
0: मोहम्मद अहमद,
1: बात करने की बहुत खुशी हुई है।
0: जी जी, आप बार बार कह रहे हैं ये बात, इस बात का इजहार है। बात यह है ना कि ज्यादातर श्रोता हमारे लाइन पर रहते हैं फोन कॉल्स के लिए, तो उसकी वजह से नंबर नहीं लग पाता है, लेकिन रोज कोशिश करना चाहिए। हालांकि ये प्रोग्राम हमारा 10 साल पुराना नहीं है, इससे पहले हेलो बरेली चलता था, वो भी फोन इन प्रोग्राम है।
1: हेलो बरेली से ही लगा रहा हूँ मैं।
0: चलिए, आज आपकी कॉल लगी, बहुत खुशी की बात है, और इसी खुशी में आप बताइए कौन सा गीत सुनवा दें हम आपको।
1: सुना दीजिए, साजन मेरा उस बार है।
0: जी जी, लीजिए हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं भानु प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ। जी
0: भानु प्रताप सिंह, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बिस्वाली बताइए उनसे। जी
0: क्या करते हैं भानु प्रताप?
1: पढ़ाई चल रही है और उसके साथ खेती का काम भी
0: बहुत
1: करता
0: बढ़िया, बहुत बढ़िया कि पढ़ाई के साथ साथ आप खेती किसानी भी संभाल रहे हैं। अच्छा, आज का
1: जी।
0: टॉपिक है भानु प्रताप, आजकल लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जल्दबाजी करना अच्छा है या नहीं है?
1: नहीं, जल्दबाजी करना तो किसी भी काम में हानिकारक ही रहता है, और अगर हम उस काम के लिए थोड़ा समय दें तो शायद उन कामों को बेहतर तरीके से कर पाए।
0: जी बिल्कुल, और बहुत सी जगहों पर जल्दबाजी बहुत ही बड़ा नुकसान दे सकती है ना? कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में आपने जल्दबाजी की हो और नुकसान हुआ हो आपको?
1: नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है।
0: अच्छा,
1: जी
0: कभी जल्दबाजी नहीं की है आपने,
1: नहीं,
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो आज के युवा हैं और पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग इतने अच्छे से धैर्य के साथ अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में जल्दबाजी नहीं की और सोच समझ के जो भी फैसला लिया या जो भी काम किया है वो अपने ढंग से और वक्त पे किया है ना?
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल।
0: भानु प्रताप, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: गीत आप सुनवा दीजिए, क्रांति फिल्म का।
0: कौन सा गीत
1: क्रांति फिल्म का कोई भी गाना।
0: लीजिए, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर ये।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन और कहाँ से?
1: मैं ग्राम बापोस्ट वर्सेना डिस्ट्रिक्ट।

0: रही है, कौन और कहां से?
1: मैं ग्रामा पोस्ट वर्तसेना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ मैम।
0: विमल ठाकुर, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप सुनाओ कैसे हो? आकाशवाणी परिवार में सभी प्रेजेंटर कैसे हैं?
0: सभी लोग बढ़िया हैं, आपकी दुआएं हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है, आजकल लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि आजकल हमने देखा है कि काफी लोग बहुत जल्दी रहते हैं। कभी आएंगे हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं, अन्य कोई भी आ रहा है तो एकदम आएंगे, न चाय बनाने देंगे न पानी पीने, एकदम की चल रहा हूँ। और उस जल्दबाजी से कई दुर्घटनाएं घट रही है कि जल्दी
0: जी
1: जल्दी के चक्कर में कहीं मोटरसाइकिल से टक्कर हो रही है, कहीं किसी ने कहीं धसा दी। तो मैं अपने अन्य साथियों से और अपने परिवार के और जो हमारे रिश्तेदार सभी से आग्रह करना चाहता हूँ इस रेडियो के माध्यम से कि
0: जी
1: जल्दबाजी ना करें और आए आराम से बैठे, चाय पानी करें, उसके बाद जब तुम्हारे पास है घंटा खान बैठेगा तो बैठो, उसके बाद ही अपने फ्री टाइम से आराम आराम से चलना चाहिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, और वैसे भी अगर बारिश के दिन हो तो उसमें तो और भी सावधानी करना बरतना चाहिए कि अगर कहीं सड़क पे जा रहे हैं और बिजली का तार टूटा हुआ गिरा हुआ है तो जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि उसके ऊपर से क्रॉस हो जाए, खुदा ना करे उसमें करंट आता हुआ, तो इससे इंसान की जान भी जा सकती है। तो थोड़ा संभले, सोचें और उस तार से बच के जाएं, और लोगों को भी अलर्ट करें कि यहाँ ये तार पड़ा हुआ है बिजली का, इससे बच के निकलें और तुरंत किसी ना किसी को सूचित करें, है ना?
1: बिल्कुल मैम, और साथ ही जब भी लाइट का हम काम कर रहे हैं जल्दबाजी में कहते हैं कि प्लास ले कुछ भी ला उठाकर, तो उसके लिए सही से देखना चाहिए कार्य करने वाले यंत्र को कि ये कार्य जो कार्य करने जा रहे हैं ये यंत्र एकदम सही है या नहीं, कहीं उस पर कटाफटा ना हो और तुरंत उसे लेके तार हटने की इस तरह से ना करें। सबसे पहले हर चीज को देख के परख के काम करना चाहिए, जल्दबाजी किसी में ना करें।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई विमल ठाकुर, हमारे सारे श्रोताओं को। आज आप गीत कौन सा सुनना पसंद करेंगे?
1: जब आपकी खूबसूरत आवाज आज हमारे गांव बक्सीना में आएगी और लगातार आती भी रहती है, आप लोगों के प्रसारण इतना अच्छी क्वालिटी रहती है कुछ पूछो मत, तो चलते चलते प्रोग्राम में सबसे पहले तो दो लाइनें पेश करूंगा। आईना देख के समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आज अपने आप को, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी यूं कांच की तरह तोड़कर तबाह कर ली मैंने, आज टूटे हुए टुकड़े को फिर से सजोने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, विमल बहुत प्यारी शायरी है और इसमें एक मैसेज भी लोगों तक जा रहा है कि जो लोग टूट के बिखर गए हैं वो फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर
1: बिल्कुल
0: सकते
1: मैम, अगर हम कहीं दिक्कत में किसी परेशानी की वजह से कहीं किसी गलत रास्ते में चले जा रहे हैं, तब भी अगर हम पीछे बैक आ रहे हैं, अपने रास्ते को क्लियर कर रहे हैं और अच्छे से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो अपने सुनने वाले से भी ये कहूंगा कि अच्छे से चलिएगा, कहीं तुमसे भूल चुक हो गई उसे छोड़ दो और आगे की ओर ध्यान दो, बहुत अच्छा रहेगा। मूवी का नाम रहेगा सड़क और इसमें एक बेहतरीन सड़क में क्या सोचता है ऐ दिल, ये प्यार का सलीका, ये सॉन्ग सुनवा दीजिएगा मैम।
0: ये प्यार तो सभी का बुरा हाल करता है।
1: जी जी जी बिल्कुल, और मेरी बात सरता के लिए गाना रेडी कर रहे हैं मेरे बच्चे शुभ लग्न में, साथ में मैम आप भी रहेंगे इस प्रोग्राम में।
0: थैंक यू सो मच।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और इस कार्यक्रम में हम लेते हैं जो पोस्ट फेसबुक पर डालते हैं उसमें ढेर सारे कमेंट आते हैं इसी टॉपिक पर, जो जिस टॉपिक पर बात की जाती है फोन कॉल्स पर। इसी तरह से काफी सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ चुके हैं। कटरा चांदखा पुराना शहर मौर्य मंदिर से ये सभी को आकाशवाणी के सदस्यों को सलाम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, और मुकेश मौर्य भेजते हैं ये अपने विचार। इन्होंने लिखे हैं, आजकल लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं, इस विषय पर लिखते हैं, 10 मिनट डिलीवरी कल्चर यानी कि झटपट सेवाओं की वजह से भी लोग धैर्य की क्षमता खोने लगे हैं। काम का भारी दबाव यानी कि वर्क प्लेस में लगातार डेडलाइंस और लगातार बिजी रहने को सफलता मानने की मानसिकता, यानी कि लोग ये सोचते हैं कि सफल होने के लिए हर समय व्यस्त रहना। आगे ये लिखते हैं कि मल्टीटास्किंग की आदत, एक साथ कई काम करने के चक्कर में इंसान किसी भी पल का आनंद शांत मन से नहीं ले पाता है। बिल्कुल सही कहा। आगे लिखते हैं, जब तक हम अपनी गति को खुद नियंत्रित नहीं करेंगे ये भागदौड़ ऐसी ही बनी रहेगी। तकनीकी और सोशल मीडिया हर चीज तुरंत पाने की आदत से लोगों का धैर्य कम हो गया है। आगे निकलने की होड़ और कुछ छूट जाने का डर इंसान को लगातार व्यस्त रखता है। काम का दबाव यानी कि काम का जो बोझ होता है और व्यक्तिगत जीवन के बीच में संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। अति तकनीक और उच्च महत्वाकांक्षाओं ने धीमी गति से जीने की कला को पीछे छोड़ दिया है। बहुत अच्छे इन्होंने विचार रखे हैं। वाकई आज के भागम भाग भरी जिंदगी में लोग एक साथ सारे काम और बहुत सारे काम करने की सोचते हैं, धैर्य जैसी कोई चीज नहीं रही है। यही वजह है कि आजकल लोग बहुत ही जल्दबाजी में और भागम भाग में रहते हैं। अगला कमेंट हमारे पास आया है ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से, भेजने वाले हैं शाहरुख नूर अंसारी। ये लिखते हैं।

मेरे ख्याल से आजकल इंसान की जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि हर शख्स किसी न किसी जल्दबाजी में नजर आता है। सुबह उठने से लेकर रात तक लोग वक्त के पीछे भागते रहते हैं, हर काम फौरन पूरा करने की फिक्र रहती है, लेकिन इस दौड़ में सुकून और इत्मीनान कहीं पीछे छूट जाता है। हकीकत तो ये है कि जिंदगी सिर्फ तेजी से आगे बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि हर लम्हे को महसूस करने का नाम भी है। कुछ काम अगर थोड़े इत्मीनान से किए जाएं, तो उनमें ज्यादा खूबसूरती और बेहतर नतीजा पैदा होता है। इसलिए जरूरी है कि हम हर काम जल्दबाजी के बजाय सब्र, सुकून और समझदारी के साथ करें। बहुत अच्छे इनके विचार थे शाहरुख नूर अंसारी के, और ऐसा हम चाहेंगे जिन लोगों ने फेसबुक के माध्यम से अपने विचार साझा किए हैं और जिन लोगों ने फोन कॉल्स के माध्यम से अपने विचार साझा किए थे, तो जितने भी हमारे लिसनर हैं वो सारे लोग इस बात को सुने, समझें और अपने जीवन को इस तरह से ढालें कि उनके जिंदगी का खोया हुआ सुकून वापस मिल जाए।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। इसमें फेसबुक के माध्यम से जो हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आए हैं, ये आया है कमेंट कटरा चांदखाब पुराना शहर बरेली से भेजने वाली है जमुना प्रसाद। इन्होंने भी लगभग वही सब कहा है कि आधुनिक जीवन शैली और तकनीक इसकी मुख्य वजह है। आज के समय में कई कारणों से लोग हर काम जल्दबाजी में करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हर चीज तुरंत पाने की आदत डाल दी है। आगे लिखते हैं, काम का दबाव और आगे निकलने की रेस लोगों को हमेशा व्यस्त रखती है। और लिखते हैं, सोशल मीडिया दूसरों को देखकर सब कुछ जल्दी हासिल करने की बेताबी बनी रहती है और अपेक्षाएं कम हो जाती हैं इसमें। और ये लिखते हैं, इंटरनेट वगैरह से भी ये इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि लोगों में सब्र खत्म होता नज़र आ रहा है। दोस्तों, जो हर बार हम शिकायत करते हैं वो इस बार भी करेंगे कि बहुत सारे लोग इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट तो डालते हैं लेकिन कुछ भी अपने विचार लिखकर नहीं भेजते। इसका हमें बहुत ही अफसोस होता है और दुख होता है कि वो अपने नाम और पते खाली लिखकर डालते हैं। प्लीज़ पहले जो पोस्ट होती है उसे पढ़ लिया करें और उसका कुछ तो जवाब लिखा करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत अमूल्य होते हैं, हमारे सारे श्रोता उसे सुनेंगे और उसे फॉलो भी करेंगे अपनी लाइफ में। अगला हमारे पास जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है, ये मिस्कीन परिवार है, दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं, आजकल लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि समय कम है और मंजिल बहुत दूर है। मोबाइल, काम, प्रतियोगिता और दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने इंसान को लगातार भागना सिखा दिया है, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं, एक सफर है। जल्दी में हम रास्ते तो पार कर लेते हैं मगर रास्ते की खूबसूरती, अपनों की बातें और अपने ही मन की आवाज सुनना भूल जाते हैं। मंजिल तक पहुंचना जरूरी है मगर इतनी जल्दी भी नहीं कि रास्ते में जिंदगी ही छूट जाए। बहुत प्यारी बातें इन्होंने लिखी है, विष्णु मिस्कीन, रितिका मिस्कीन, वाणी मिस्कीन और आरव मिस्कीन ने। वाकई जिंदगी जीने का नाम है, इसके हर पल को आप लोग एंजॉय करें और ना कि इसके हर पल को यूं ही ना गवाएं और यूं ही ना काटें जल्दबाजी में।

श्रोताओ, ये हमारे पास फेसबुक के माध्यम से अपने विचार भेजे हैं दर्पण कुमार सैनी ने। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, ग्राम एचोरा, पोस्ट क्रिमचा, तहसील मिलक, जिला बरेली से। ये लिखते हैं कि आजकल लोग इतनी जल्दबाजी में इसलिए रहते हैं क्योंकि आधुनिक जीवन बहुत तेज हो गया है। हर कोई समय की कमी, करियर में आगे बढ़ने की होड़, सोशल मीडिया की दुनिया और बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच फंसा है। लोग कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हैं, जिससे उनके मन में हमेशा से एक बेचैनी बनी रहती है। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बहुत जल्दी काम करने में काम तो खैर नहीं हो पाता है जल्दी, एक तो बिगड़ता है, दूसरा उसमें नुकसान होता है, और तीसरा हर समय इंसान के दिल में एक बेचैनी बनी रहती है। अगला पोस्ट हमारे पास कमेंट आया है पोस्ट पर प्रवीण चौहान का। ये लिखते हैं, जब लोगों में सब्र और धैर्य की कमी होती है तो वे हमेशा हर काम में जल्दबाजी करते हैं। अपने कार्यस्थल पर कहीं लेट ना हो जाए इसलिए सुबह सुबह बहुत जल्दी में रहते हैं। और हमारी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाँ, वजह तो कोई भी हो सकती है जल्दबाजी होने की, लेकिन जल्दबाजी करना नहीं चाहिए। आगे बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं, लेकिन अफसोस सिर्फ और सिर्फ नाम लिखे हैं और अपने विचार कोई भी नहीं लिखे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे से जब आप अपने नाम लिखेंगे तो उसके साथ अपने विचार जरूर भेजेंगे। अगले हमारे पास ये राधा नामदेव लिखते हैं, क्योंकि फोन चलाना होता है। ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि इमोजी बनाया हुआ है इन्होंने, और लिखते हैं क्योंकि फोन चलाना होता है और गागर में सागर भर दिया है। बहुत सारे लोग फोन के चक्कर में भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं। फोन पे किसी की कॉल आती है कि जल्दी से आ जाओ, तो बस वो ये समझते हैं फोन कॉल के साथ ही साथ उनके वहां पर या उनके घर पर या जहां पर भी बुलाया है वहां चले जाए। आगे ये अगला कमेंट हमारे पास आया है, अनोखे लाल मौर्य भेजने वाले हैं। आजकल लोग जल्दबाजी में इसलिए रहते हैं क्योंकि इंसान के पास टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी अपने काम को पूरा करना चाहता है। अनोखे लाल मौर्य, कटरा चांद खा, पुराना शहर बरेली से। काम वही होता है जब उसका वक्त होता है, लेकिन जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। बस एक बात ये अपनी गांठ में बांध कर रख लें हमारे सारे लिसनर। आगे ये ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी लिखते हैं, आजकल पता ही नहीं चल पा रहा है कि इंसान इतनी जल्दी क्यों है। इंसान को अगर किसी व्यक्ति से कहा जाता है कि हमारा कोई काम कर दो तो जवाब मिलता है, मैं अभी नहीं कर सकता, थोड़ी जल्दी में हूँ। कोई हमारे पास काम लेकर आता है, कहता है तो जल्दी कर दो, मैं जल्दी में हूँ। कोई भी कहीं जाकर किले नहीं बना लेता, मगर कहेगा यही कि मुझे जल्दी है। बिल्कुल सही बात कही कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मेरा काम कर दो, मैं जल्दी में हूँ, और कुछ लोग मना कर देते हैं काम को कि नहीं, मैं जल्दी में हूँ, मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊँगा। लेकिन किस जल्दी में है ये तो पता ही नहीं चल पाया, और जो जल्दी वाले काम थे वो उनके ख़त्म हुए या नहीं ये तो उनसे पूछ लिया करें। वाकई दोस्तों, जल्दी वाले जो काम होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए ज़िंदगी जीने का नाम है, इसे सुकून।

सुकून से चैन भरी जिंदगी जिए, हर पल को एंजॉय करें। आगे अगला हमारे पास राम बाबू मिश्र का है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं, कोई भी कार्य करो सोच समझ कर करो, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कुछ भी कर सकता है। फोन पर सही लोकेशन दो, जल्दबाजी करोगे तो बाकी आप सभी समझदार हैं। ग्राम व पोस्ट गोठा खंडुआ से राम बाबू मिश्र और कृष्णा देवी। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि जल्दबाजी करेंगे तो अंजाम खुद ही इंसान समझ सकता है।

श्रोताओं, इसी के साथ आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अपने रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ, जाने से पहले हम आपसे ये जरूर कहेंगे, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजना ना भूलें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। श्रोताओं, आइए हम आपको आज की सभा और कल की सभा में रेलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। श्रोताओं, आज शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी संसार। इसमें होगी वार्ता, परिवार में सामंजस्य से कैसे बनाएं। वार्ताकार होंगी श्रीमती भावना आर्या। शाम 6 का टाइम रहेगा युवा एक्सप्रेस का। जी हाँ दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम का कुछ खास है आज में। आप जानेंगे इंटरनेशनल यूथ डे और विक्रम साराभाई जयंती के बारे में। ग्राम जगत का पिटारा खुलेगा आज शाम 6:30 पर। इसमें होगी कृषि गोष्ठी, विषय होगा खेती किसानी और पशुपालन से लाभ। आज के प्रतिभागी होंगे श्री शिव कुमार, श्री सूरज पाल, श्री वीर बहादुर। प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन का समय रहेगा आज शाम 7:31 पर। आज का विषय होगा दूरबीन विधि से रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन, शंकाएं व समाधान। आज के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शकील अहमद। रात्रि 8 होगी संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोस्तों, कल सुबह 8:15 पर होगा कार्यक्रम नमस्ते बरेली। प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग का समय रहेगा 8:45 पर। कल सुबह 9 सुनिए कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 9:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा आपका स्वास्थ्य। कल के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रतन गंगवार। दोस्तों, आपकी पसंद होगी कल 10 से फेसबुक के माध्यम से। कल पूर्वाहन 11 होगा कार्यक्रम सब रंग। 11:15 पर सुनते हैं झुमका गिरा रे। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम होगा ये। कल 11:30 पर सुनिए आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को। कल दोपहर 1 आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम होगा अनुरोध गीत। कल दोपहर 2 रस रंग और 3:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग। आपकी बात आकाशवाणी के साथ होगी हर रोज की तरह शाम 4 से। और हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग होगी हर रोज की तरह दोपहर 2:30 से। कल शाम दैनिक कार्यक्रम भजन संध्या शाम 5:05 से। नारी संसार का समय रहेगा शाम 5:30 से। युवाओं का एनर्जी से भरपूर कार्यक्रम युवाणी शाम 6 से। 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम किसानवाणी। इसमें सुनिए कृषि गोष्ठी, विषय होगा सरकारी कृषि योजनाएं किसानों के लिए कितनी लाभकारी। प्रतिभागी होंगे टीका राम, श्री भानु प्रताप, श्री संजय। संचालन होगा हेडल पाल सिंह का। दोस्तों, ग्राम जगत का समय रहेगा कल शाम 7 से। अनुरोध गीत का समय रहेगा कल शाम 7:31 पर। आपके पत्रों पर आधारित होगा ये कार्यक्रम। संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कल रात्रि 8 से। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सभा और कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर।

नारी संसार सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने संसार यानी नारी संसार में। कैसी हैं सखियों? उम्मीद है बिल्कुल फिट होंगी, फाइन होंगी और मस्त होंगी, और साथ ही चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान भी होगी, क्योंकि जिंदगी में खुश रहना सिर्फ हमारे मूड के लिए ही नहीं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ये तो हम सब जानते हैं। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती है, कभी घर परिवार की फिक्र, कभी काम का प्रेशर, कभी रिश्तों की उलझन, और कभी कभी तो बिना किसी वजह के भी हमारा मन उदास सा रहता है। सखियों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको टेंशन का स्वागत नहीं करना है, उसे बोलिए आज टेंशन जी आपके लिए टाइम नहीं है मेरी लाइफ में, आज सिर्फ सुकून की एंट्री है। थोड़ा हंसिए, थोड़ा गुनगुनाइए, अपनों से बात कीजिए, खुद के लिए समय निकालिए यानी मी टाइम। जब भी मन पर तनाव हावी होने लगे एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से बोलिए मैं अपनी परेशानियों से बड़ी हूँ, खुद को समय दूंगी, फिक्रों को विराम दीजिए और टेंशन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए टाटा। और हाँ, एक कप चाय के साथ आराम से बैठिए, अपना पसंदीदा संगीत सुनिए, और जब मन करे अपने पसंदीदा गीत सुनने का तो ट्यून कीजिए 100.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी बरेली। जहाँ हैं आप वहाँ हैं हम। अपनी फरमाइश हमें लिख भेजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी पसंद, आपकी फरमाइश और आपकी मुस्कान हमारे लिए है बहुत ख़ास। और अब हम सुनवाने वाले हैं अपनी उन ख़ास सखियों की पसंद का गीत जिन्होंने हमारे पास फरमाइश भेजी है। ये हमारे पास फरमाइश आई है दतरीगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की तरफ से। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है नाज रेडियो क्लब करेली से नुजहत फातिमा अंसारी और निसार अहमद अंसारी की तरफ से। इसी गीत को सुनना चाहा है कटाचांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्या ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या, सिर्फ और सिर्फ 100.4 FM बरेली पर। शाम के 5:30 और 10 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है महिलाओं का अपना कार्यक्रम नारी संसार।

0: सखियों कहते हैं कि घर वही खूबसूरत होता है जहाँ रिश्तों में अपनापन हो, लोग एक दूसरे की बात को समझते हो, दिलों में एक दूसरे के लिए जगह हो। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कभी काम का प्रेशर, कभी बच्चों की जिम्मेदारियां, तो कभी छोटी छोटी बातों पर होने वाली नोकझोंक परिवार के रिश्तों में तनाव ले आती है। तो आखिर परिवार में सामंजस्य कैसे बैठाएं, कैसे अपनी बात भी कहें और सामने वाले की भावनाओं को भी समझें, और सबसे जरूरी बात कि घर का माहौल ऐसा कैसे बनाएं जहां हर सदस्य ये समझ सके कि उसकी बात को भी सुना जाता है और उसकी बात को भी कोई समझने वाला है। इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आइए सुनवाते हैं एक वार्ता जिसका विषय है परिवार में सामंजस्य कैसे बैठाएं, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं भावना आर्या।
1: बहनों, हर लड़की को मायके से ससुराल जाना होता है। एक बेटी के दो परिवार होते हैं, एक वह जहाँ उसका जन्म होता है जो कि उसका मायका होता है, दूसरा परिवार उसका ससुराल होता है जहाँ वह विवाह के बाद रहती है। मायके में उसके सगे संबंधी होते हैं, जैसे उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और उसकी सहेलियाँ। इन रिश्तों के साथ बेटियाँ अपने बचपन से युवावस्था तक पहुँचती हैं। इसी समय में वे पढ़ती लिखती हैं और खेलते खेलते सबके साथ मिलजुल कर कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। बहनों, यहीं से शुरू होता है उसका दूसरा परिवार। जब एक बेटी शादी करके ससुराल जाती है जहां उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, उसे इस घर को भी अपना घर मानना होता है, इस घर को भी स्वर्ग बनाना होता है। बहनों, इसके लिए हर बेटी को अपने सास ससुर को अपने माता पिता के रूप में देखना चाहिए, अपनी ननद को अपनी बहन की तरह ही समझना चाहिए और अपने जेठ देवर को अपने भाइयों की तरह ही समझना चाहिए। एक बेटी को बहू के रूप में सभी का सम्मान करना चाहिए। एक बहू को अपनी ससुराल में बड़ों को सम्मान तथा छोटों को प्यार देना चाहिए। जब

बहू ऐसा करती है तो उसको भी सम्मान और प्यार मिलता है। रिश्तों में प्यार और सम्मान का होना बहुत जरूरी है। रिश्ता हो, प्यार हो, सम्मान का भूखा होता है। जब हम किसी को सम्मान और प्यार देंगे तो वह भी बदले में प्यार और सम्मान अवश्य देगा। प्यार के साथ सबका दिल जीता जा सकता है। बेटी को अपने पति का सम्मान भी करना होता है। बेटी का कर्तव्य है कि ससुराल में अपने पति के साथ संबंध बहुत अच्छे से होने चाहिए। आपसी समझौते और प्यार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब एक बेटी के संबंध उसके पति के साथ अच्छे होते हैं तो परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है। पति और पत्नी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। जैसे गाड़ी के पहिए एक साथ चलते हैं, उसी तरह पति और पत्नी को भी मिलजुल कर जीवन रूपी गाड़ी को चलाना पड़ता है। जब पति और पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं तो उनके आने वाली संतान भी समझदार और गुणवान होती है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता से ही सीखते हैं। बच्चों की पहली पाठशाला परिवार ही होती है। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए पति और पत्नी को समझदारी के साथ चलना होता है। जो संस्कार आप उन्हें दोगे वह वही सीखेंगे। बहनों, अब आज के युग में धीरे धीरे हमारी संस्कृति में पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप होने लगा है, जो कि हमारे बिगड़ते रिश्तों की वजह है। हमारे रहने के तौर तरीके, पहनने के कपड़ों, शान शौकत में बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है। हमें ससुराल में मधुर संबंध बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपनों से बड़ों की बात माने, उनके सुझावों को समझें, ना कि उनकी बात का बुरा माने। आज की पीढ़ी के नाजायज खर्चे भी मोटाव की एक मुख्य वजह है। हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना की जरूरत हो। यह चमक धमक की दुनिया में दूर रहना चाहिए। देखने में आता है कि हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लगते हैं कि उसके पास इतने कपड़े हैं तो हमारे पास भी होने चाहिए, वो इतना खर्च करते हैं तो हमें उनसे ज्यादा खर्च करना चाहिए। बहनों, यही गलती हो जाती है। हमें हमेशा अपनी स्थिति को देखते हुए खर्चे करने चाहिए। हमें अपने पति और परिवार की आमदनी को ध्यान में रखकर खर्च करना चाहिए। अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो परिवार के बड़ों के साथ बात करनी चाहिए। समस्या कैसी भी हो, मिलजुल कर उसका समाधान अवश्य निकाला जा सकता है। बहनों, देखने में आता है कि ससुराल की छोटी से छोटी बातें आज कल की बहुएं अपने मायके में शेयर करने लगती हैं। इससे परिवार का माहौल खराब होने लगता है। एक अच्छी बहू का कर्तव्य है कोई भी बात को किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका मायका हो या पास पड़ोसी हो। शादी के बाद किसी भी लड़की की खुशी और उसके ससुराल में एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार और मधुर संबंधों की बुनियाद पर टिकी है। अगर ससुराल में सब अच्छा रहेगा तो जाहिर है यह आपके जीवन साथी के साथ आपके समय और संचार की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा। सास ससुर भी आपके माता पिता हैं। वह उस समस्या का समाधान अवश्य ही निकालेंगे। यदि कोई भी बात है तो अपने जीवन साथी को बताएं। इससे परिवार का माहौल सही रहता है। जब एक बहू इन सब बातों को ध्यान में रखती है तो उसके संबंध ससुराल वालों के साथ स्वयं ही मधुर हो जाते हैं। जो भी बहुएं अपने कर्तव्यों को निभाती हैं वह अपने ससुराल वालों की नजर में सम्मान बा इज्जत पाती हैं, तो उनके दिलों में अपना एक अलग स्थान पाती हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता में बहुओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है और घर की लक्ष्मी को अपने पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलना चाहिए। घर के छोटे या बड़े तक सबका ख्याल रखना चाहिए। सभी की पसंद नापसंद का ध्यान रखें। विशेष कर आपके घर के सदस्यों के पसंद का खाना बनाकर उनका दिल जीत सकती हैं। साथ ही जब खरीदारी करने जाएं तब भी उनकी पसंद की चीजें उनके लिए ले आएं। फिर देखिए वे आपको कितना प्यार करने लगेंगे। एक बहू को अपने ससुराल की तुलना मायके से कभी नहीं करनी चाहिए। अब ससुराल ही आपका घर है। जब एक बहू इन सब बातों को ध्यान में रखकर चलती है तो उसके संबंध ससुराल वालों के साथ ही मधुर हो जाते हैं। आपको अपने खास लोगों के साथ बातचीत हालचाल लेते रहना चाहिए। इससे माहौल खुशनुमा और जीवंत बना रहता है।

0: पारिवारिक रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पारिवारिक संबंध न केवल हमें मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी देते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार और व्यवस्था के कारण परिवार के सदस्यों के बीच की नज़दीकियाँ कम हो रही हैं। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि हम जानबूझकर प्रयास करें और रिश्तों को सहेजने के लिए समय निकालें। यह कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जिनसे आप अपने पारिवारिक रिश्तों को गहरा और मजबूत बना सकते हैं।
1: सखियो, अभी आप सुन रही थी जानकारी जिसका विषय था परिवार में सामंजस्य कैसे बैठाएं, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी भावना आर्या। और सखियो, आप और हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा परिवार खुशहाल होगा तो हमारा देश भी खुशहाल होगा, हमारे देश में भी खुशहाली आएगी और तरक्की आएगी। और एक अपने स्टूडियो में भी खुशहाली लाने के लिए आइए सुनते हैं ये खुशहाल सा गीत जिसे सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है विष्णु टेलर जी की तरफ से। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

जो तकनीक की दुनिया हर दिन कुछ नया लेकर हमारे सामने आ रही है। कभी मोबाइल हमारे लिए नई चीज था, फिर इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बना, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हमारे काम करने, सीखने और सोचने के तरीकों को तेजी से बदल रहा है। आज AI सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज या कंप्यूटर एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, घर के काम को मैनेज करना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, AI हर जगह हमारी मदद कर सकता है। लेकिन सही सवाल ये है कि क्या AI के दौर में सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझना काफी है, या हमें खुद भी कुछ नई स्किल्स सीखकर इस बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाना होगा।

0: वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ स्किल्स को अपडेट करना भी जरूरी है। तो इसीलिए इनसे मिलिए सेगमेंट में आज हम पहुंच गए अलीना खान के पास, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट है। अलीना जी आदाब।
1: आदाब
0: अलीना जी, जैसे कि आजकल हम सब देख रहे हैं कि AI हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, हर जगह AI की चर्चा है, तो आखिर है क्या ये AI और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये चुपके चुपके कहाँ अपनी जगह बना चुका है?
1: AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स और सॉफ्टवेयर को कुछ ऐसे काम करने में मदद करती है जिसमें आमतौर पर इंसानी इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। आज हम AI का इस्तेमाल वॉइस असिस्टेंट, सर्च इंजन, ऑनलाइन शॉपिंग के रिकमेंडेशन, एजुकेशन ऐप और कंटेंट क्रिएशन जैसी कई जगहों पर कर रहे हैं, यानी कई बार हमें पता भी नहीं चलता और AI हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है।
0: आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि लगता है कल जो नया था आज तो वो पुराना हो गया, तो ऐसे में नई स्किल्स सीखते रहना आज की जरूरत क्यों बन गया है?
1: टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, इसीलिए आज प्रत्येक ऐसी स्किल सीख लेना काफी नहीं है। हमें कंटिन्यूस लर्निंग की आदत बनानी है, नई स्किल सीखने से हमें बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बेहतर तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं। जरूरी नहीं कि हर नई टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बने, लेकिन इतना जरूर सीख लें कि उसका सही और सेफ इस्तेमाल कैसे करें।
0: इस वक्त हमारी सखियां सुन रही हैं, वो सखियां टेक्नोलॉजी से थोड़ा घबराती हैं और कहती हैं मुझे तो AI के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, तो आप उन्हें सबसे पहली सलाह क्या देना चाहेंगी?
1: मैं उनसे कहूँगी कि सबसे पहले AI से डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए। शुरुआत में बहुत छोटे कदम से स्टार्ट कीजिए। पहले समझिए कि AI कर क्या सकता है और आपकी जरूरत के हिसाब से किस तरह आपकी मदद कर सकता है। कोई सिंपल AI टूल इस्तेमाल करके शुरुआत की जा सकती है। साथ ही AI से मिली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना भी जरूरी है।
0: लीना जी, हमारी सखियां सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं है बल्कि वो होम मेकर्स हैं, वर्किंग वुमेन हैं, अपना छोटा बिजनेस करने वाली महिलाएं भी हैं, तो उनके लिए ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें सीखकर वो अपने काम और करियर को और बेहतर बना सकती हैं?
1: महिलाओं के लिए डिजिटल लिटरेसी, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बेसिक AI स्किल्स बहुत जरूरी हो सकती हैं। अगर कोई लेडी बिजनेस करती है तो AI की मदद से आइडियाज, बेसिक कंटेंट या कस्टमर कम्युनिकेशन में सहायता ले सकती है। वर्किंग वुमेन अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती हैं। होममेकर्स भी डिजिटल और AI स्किल्स सीखकर अपनी रुचि को नए लर्निंग या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज में बदल सकती हैं।
0: अलीना जी, बहुत सी हमारी सखियों का कहना ये होता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें टाइम नहीं मिलता। अगर कोई महिला सिर्फ 30 मिनट अपने लिए निकाल पाए तो AI और नई स्किल्स सीखने के लिए इन 30 मिनट को वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है?
1: 30 मिनट भी काफी है अगर हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है तो। पहले 10 मिनट हम नई चीजों को समझने में, अगले 10 मिनट प्रैक्टिकली ट्राई करने में और आखिरी के 10 मिनट सोचने में लगाए जा सकते हैं कि इसका इस्तेमाल अपने काम या रोजमर्रा जिंदगी में कैसे किया जा सकता है। एक साथ बहुत सारी चीजें सीखने के बजाय एक समय पर एक ही स्किल पर फोकस करना बेहतर होगा।
0: AI का इस्तेमाल आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो AI का इस्तेमाल करते समय प्राइवेसी और गलत इन्फॉर्मेशन को लेकर भी हमें सावधान रहना जरूरी होता है, तो हमारी सखियों को AI टूल्स इस्तेमाल करते हुए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?
1: सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी AI टूल में सोच समझ कर ही शेयर करें। पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल्स या दूसरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा AI से मिली हर इन्फॉर्मेशन को सही मानना भी ठीक नहीं है, खासकर हेल्थ या फाइनेंस या किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को ट्रस्टेड सोर्स से पहले वेरीफाई करें।
0: चलते चलते अलीना जी, आप हमारी सखियों को कौन सा एक छोटा सा मंत्र देना चाहती हैं? AI के इस दौर में ऐसी कौन सी एक स्किल है जिसे सीखने की शुरुआत हर महिला आज से ही कर सकती है?
1: मैं कहूंगी कि स्टार्टिंग में AI लिटरेसी यानी कि AI को समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की बेसिक स्किल कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बने।

0: बस इतना समझ लीजिए कि एआई क्या कर सकता है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और आप उसे कैसे काम और लर्निंग में रिस्पॉन्सिबली कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं, और सबसे जरूरी, सीखना कभी बंद मत कीजिए।
1: अलीना खान ने हमें बताया, एआई से डरने की नहीं, उसे समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कीप लर्निंग, कीप अपडेटिंग। आज की बातचीत ने हमें एक बहुत खूबसूरत बात समझाई कि नई टेक्नोलॉजी हमारे लिए सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि नई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे भी खोल सकती है। बस जरूरत है अपने अंदर सीखने की इच्छा बनाए रखने की। तो सखियो, आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए, हर दिन थोड़ा समय अपने लिए, अपनी लर्निंग के लिए और एक नई स्किल के लिए, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का होगा जो बदलाव से घबराते नहीं हैं, बल्कि वो कहते हैं टेक्नोलॉजी बदलेगी, हम भी खुद को अपडेट करेंगे और हम भी खुद को अपग्रेड करेंगे। अलीना जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारी सखियों को दी और
0: जी
1: आपसे ये मुलाकात बहुत यादगार रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते चलते हम आपसे पूछना चाहेंगे आपकी पसंद का एक गीत।
0: सही आ रहा, सही आ रहा।

आपसे पूछा था एक सवाल, आजाद हिंद फौज की महिला सैन्य टुकड़ी रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? हमारे पास सही जवाब भेजे हैं, सही जवाब है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, और हमारे पास जवाब आए हैं दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन वानी अरब, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, दतरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र और अनोखेलाल वर्मा, और गंगा सिंह रावत जी ने भी बिल्कुल सही जवाब भेजा है। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा जी ने, तंत्री की भट्टापारा से हीरामणि वर्मा ने, और महाराष्ट्र से दत्ता धोंकड़े जी ने, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कौर जी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा अपने पत्रों के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आप दीजिए अपने सखी नूर फातिमा को इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बज चुके हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी।

हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, आपकी रेडियो हम सफ़र आबिदा फातिमा, लेकर आ चुकी हूँ आपका और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युवाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी। और साथियों, आज तो हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट चक्रव्यूह भी होने वाला है और मैं उम्मीद करती हूँ इसमें आप जो आंसर हमें भेजते हैं और जो आंसर आपने हमें भेजे हैं वो बिल्कुल सही होंगे। फिलहाल ये चक्रव्यूह सेगमेंट तो रहेगा ही और साथ में हम आपसे बहुत सारी बातें भी करने वाले हैं, लेकिन आइए उससे पहले एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को।

0: मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप बने अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी। और साथियों, हम मना रहे हैं विक्रम साराभाई की जयंती। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के महान वैज्ञानिक और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। उनका पूरा नाम विक्रम अंबालाल साराभाई था। उन्होंने जिस क्षेत्र में काम किया है वो है भौतिक विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान। लेकिन अगर उनका मुख्य योगदान देखें साथियों, तो उन्होंने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की मजबूत नींव रखी। उन्होंने इनकोस्पार की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आगे चलकर इसरो के गठन का आधार बना। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। साराभाई को पद्म भूषण 1966 और मरने के बाद में पद्म विभूषण 1972 से सम्मानित किया गया। अगर उनका निधन की बात करें तो उनका निधन हुआ था 30 दिसंबर 1971 को केरल में, और आज 12 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है। तो इस दिन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान को भी याद किया जाता है। और साथियों, इसी के साथ हमें भी याद है कि हमने आपको ये जानकारी तो दे दी, साथ ही साथ आपको मनोरंजन भी करवाना है। तो आइए उसके लिए सुनते हैं प्यारा सा सॉन्ग।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: प्रोग्राम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी। और आइए

साथियों, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट चक्रव्यूह शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको चक्रव्यूह के पिछले अंक में जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे उनके उत्तर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ और कब हुआ, और इसका सही उत्तर है 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। अगला प्रश्न है, वस्त्र महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया, और इसका सही उत्तर है चेन्नई। कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, और उत्तर है अस्मिता डे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुई, और आंसर है वर्षा अशोक। हमारा अगला प्रश्न, भारत की किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सबसे ज्यादा मेडल जीते, और इसका सही उत्तर है भारतीय धावक गुलवीर सिंह, जो कि एकमात्र ऐसे भारतीय एथलीट रहे जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक, 1 रजत और 1 कांस्य अपने नाम किए। और हमारा चक्रव्यूह का अगला क्वेश्चन, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य को सर्वाधिक मृत अंगदानों हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, और इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। और हमारे पिछले चक्रव्यूह का अंतिम क्वेश्चन, डेनमार्क की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी, और इसका सही उत्तर है मेटे फ्रेडरिकसन। और साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपने जो हमें उत्तर भेजे थे और आपने जो उत्तर अपने आप अपने पास नोट भी किए थे वो उत्तर हमारे उत्तरों से मैच किए होंगे। फिलहाल अभी आप इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए और उसके बाद में आप बिल्कुल तैयार रहिएगा अपने पेन और कॉपी लेकर के, क्योंकि हम आपसे आज के चक्रव्यूह के क्वेश्चन पूछने वाले हैं।

सदियों सेगमेंट चल रहा है चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह के हमारे आज के क्वेश्चन इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक बार फिर से सुनिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारा अगला क्वेश्चन, दीने इलाही की स्थापना किसने की? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? फिर से सुनिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इंडिका के लेखक कौन थे? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? और हमारा अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? एक बार फिर से सुनिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? और हमारे चक्रव्यूह का आज का अंतिम क्वेश्चन, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपने इन हमारे जो भी हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं इनको अच्छे से नोट कर लिया होगा और आप हमें इसका बिल्कुल सही सही उत्तर लिख भेजेंगे। फिलहाल हम आपके मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखते हैं और इसीलिए हम आपको एक और गाना सुनवा रहे हैं, और क्योंकि आज प्यार की धुन सेगमेंट भी होता है तो आइए सुनिए ये प्यारा सा सॉन्ग।

और साथियों प्रोग्राम में वक्त है आज के सवाल के, और सवाल हमने आपसे पूछा है कि टूर दी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट कौन है, और इसका सही उत्तर है हर्षिता। और सही उत्तर देने वालों में नाम शामिल हैं धर्मेंद्र छिपाप, पुंजा जी, विष्णु, सुदर्शन शाह, मुकेश कश्यप, उत्तम सिंह जागेल, जॉन डी कैस्ट्रो, गंगा सिंह रावत, राजकुमार, हीरामणि वर्मा, रोबीना मलिक, दत्ता, मोहम्मद सईद अब्बासी, बनवारी लाल, सुरेश खुराना, रामबाबू मिश्रा, दिग्दर्शन गौड़, विनोद, राजेश वर्मा, कीर्तनपुरी गोस्वामी, अनोखी लाल और हमारे अन्य सभी साथी।

साथियों, हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है वाणिया विभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली। हमारा पिन कोड नंबर है 243001। और अब दीजिए अपने दोस्त आबिदा को इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब पिटारा खुलेगा कार्यक्रम ग्राम जगत का, जिसे लेकर भैया राकेश और हेडल पाल स्टूडियो में आ चुके हैं।

0: हमारी लाइन इतनी लंबी ही
1: अच्छा
0: कि हम धक्का खा खा बहुत पीछे पहुंच गए,
1: हाँ
0: और तो उनकी लाइन ही अलग,
1: अच्छा
0: तो इस वजह से आप ना देख पाए होगा, हम गए खैर सब लोग ही।
1: हाँ भीड़ तो भैया बहुत ही। लेकिन कल भैया हमारे जो श्रद्धालु हैं मंदिर में काफ़ी संख्या में पहुँचे और बहुत अत्यधिक आनंद आओ बा मंदिर में।
0: और बाबा को एक कारण जो हो कि जैसी आज बहुत भयंकर धूप रही,
1: हाँ
0: आज को देखे तो कल मौसम हो तो बढ़िया हो।
1: कल भैया हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होती
0: हाँ
1: रही, बादल छाए रहे हैं। और बात करें भैया कार्यक्रम में थोड़ी सी चर्चा करनी है
0: बिल्कुल भैया, देखो चर्चा को आज का विषय है।
1: भैया। आज चर्चा का विषय लखपति दीदी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर अलग अलग परिस्थितियां एक जैसी आकांक्षा।
0: बहुत अच्छा आप विषय लेके आए हो। अगर बात करिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर, तो हमारे जो युवा भैया हैं, आपने देखी होगी कि बेजा देखते हैं कि हमारे गांव में हमारे पड़ोसी के पास में जे सुख सुविधाएं हैं, जे सुख सुविधाएं हमारे पास में होती।
1: बिल्कुल सही बात
0: पड़ोसी
1: है।
0: के पास अगर मोटरसाइकिल देखता हूँ तो सोचता है हमारे पास में मोटरसाइकिल होती, लेकिन बेजाना सोचता है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ, आय के साधन, परिवार की जो बैकग्राउंड है, वो सब अलग अलग होती है।
1: बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारी जो आकांक्षाएं वो तो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सब आकांक्षाएं अगर हम बात करें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सबकी समान भी होते हैं। अब जैसे युवा साथी हैं उन सबको एक तलाश रहता है कि हमारो एक अपनो रोजगार हो, तो यानी शिक्षा की आवश्यकता सबके लिए,
0: बिल्कुल
1: रोजगार की आवश्यकता सबके लिए है, तो ये कुछ आकांक्षाएं ऐसी हैं जो सबकी एक जैसी हैं।
0: बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना सही, चाहे हमारे विभिन्न प्रकार को संघर्ष करने पड़े, हमें जी जान से शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे बच्चा मेहनत से पढ़ाई करेंगे
1: जी
0: तो उनकी परिस्थितियाँ भले ही उतार चढ़ाव आज होए, लेकिन जो उन्हें लक्ष्य चुनो है वो लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है राकेश भैया। देखो कार्यक्रम में हम और आप बातें करना जब शुरू है जाए तो पता नहीं लगत समय कितने बीते हो जाता है वो, लेकिन कार्यक्रम में जानकारी काफी सारी है, बेहू अपने भैया बहन तक पहुंचा देंगे।
0: अच्छा भैया, जानकारी तो आप पहुंचाओगे, लेकिन जब बताओ जो आप बात कर रहे हैं लखपति दीदी योजना के बारे में, जाओ के बारे में कुछ बताओ।
1: भैया देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जहाँ में कौशल विकास के अंतर्गत जो गांव में महिलाएं हैं उनकी जो आय है वो लगभग 1 लाख से बढ़ा करके उनकी अधिक से अधिक करनी है। इसके लिए जो स्वयं सहायता समूह हैं वो बहुत सारी चीज़ों को गठन करोगे वो है।
0: बिल्कुल भैया समझ गए हम आपका कहना चाह रहे हैं। जो गांव में समूह बनाए गए हैं तो समूह के माध्यम से जो हमारे समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वे अपने कोई रोजगार शुरू करने के लिए लोन प्राप्त कर सकती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अचार मुरब्बा पापड़ बनाने के प्रशिक्षण में बोल ले सकते हैं,
0: जी
1: अपनों कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं, पशुपालन शुरू कर सकते हैं, और बाकी ले भैया उनको ऋण की सुविधा भी प्रदान की गई हैगी।
0: बहुत अच्छी जानकारी आप लेके आए। इसके साथ साथ भैया लोग होत का है कि आज ग्राम जगत के कार्यक्रम में कृषि गोष्ठी लेके आते हैं, तो हेडलपाल भैया आज कोई कृषि गोष्ठी है?
1: बिल्कुल है भैया, आज कृषि गोष्ठी है, कार्यक्रम में विषय है खेती किसानी और पशुपालन से लाभ। प्रतिभागी हैं आज की गोष्ठी में शिव कुमार, सूरजपाल और बीर बहादुर, और संचालन कर रहे हैं भैया कृष्णपाल मौर्य।
2: किसान साथियों, आज हम आपको कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कृषि गोष्ठी, और आज के कृषि गोष्ठी में हमारे 3 कृषक भाई कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जिनसे उनको परिचय जानते हैं। वह अपना नाम और पता बताओ।
3: सूर्यपाल हमारा नाम है और बरखना हसनपुर से हम शामिल हुए हैं भैया।
2: और ब्लाक आपको कहाँ लगता है?
3: कोरिया
2: जिला बरेली को गांव
3: जिला
2: है।
3: बरेली गांव है।
2: और भैया आप कहाँ से कार्यक्रम में शामिल हुए हैं?
4: हम शिव कुमार बरखना से बोल रहे हैं, डाकखाना मतलब कोलड़िया है, तहसील नवाबगंज है, जिला बरेली है।
2: जी, और भैया आप?
5: हम वीर बहादुर हैं, घोर समझपुर से बोल रहे हैं, और ब्लाक घोसीपुरा जिला बरेली।
2: तो तीनों महानुभावों को बहुत बहुत कार्यक्रम में आपको स्वागत है। और आज जो कृषि गोष्ठी का विषय है वो है खेती और पशुपालन। जैसे कि आपने अपना नाम बताओ सूरजपाल जी,
5: जी साहब।
2: तो खेती बाड़ी तो आप कर रहे होंगे,
3: हाँ जी साहब।
2: तो खेती में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं?
3: खेती में कहते गन्ना कर रहे हैं, घर के धान कर रहे हैं। आपको कहते जब नराई टाइम है, अब नराई करके करके तो घर के खाद पानी लगावेंगे, फसल हो है। जब बढ़िया फसल हुई थी घर में कुछ फायदा हो उस समय सबको।
2: सही बात है। तो कौन सा धान लगा हुआ आपने?
3: सिरकी।
2: अच्छा, और खाने में कैसी है?
3: खाने में बढ़िया है, बिक्री में बढ़िया है,
2: पैदावार कैसी मिलती है अभी?
3: पैदावार बढ़िया उसका है, 3 से लेकर 4 तक कट जाती है, बहुत होने में बढ़िया है।
2: अच्छा, धान की जो आप फसल बता रहे हो कि खेत में लगी हुई है और सिल्की धान आपने लगा हुआ है बता रहे हो, खाने में भी बहुत अच्छी है,
3: खाने
2: बिक्री
3: में
2: में भी
3: बढ़िया।
2: बहुत अच्छी है,
3: हाँ,
2: क्या? तो 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से
3: कट जाती
2: कट
3: है।
2: जाती है। शिव कुमार जी आप खेती बाड़ी कर रहे हैं,
4: हाँ
2: और पशुपालन भी कर रहे हैं, तो जाके विषय में भी बात करेंगे, लेकिन कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक?

0: जगत में सब भैया बहनों को अपने भैया हेडलपाल सिंह,
1: और अपने भैया राकेश शर्मा की
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: सुनाओ राकेश भैया, कैसे हालचाल हैं आपके और खेती बाड़ी के?
1: हालचाल बहुत बढ़िया है भैया। देखो, आप तो देख रहे हो इस समय सावन का महीना चल रहा है, और एक प्रकार को विशेष आनंद हमारे ग्रामीण भैया सब उठा रहे हैं।
0: अच्छा एक बात बताओ,
1: हाँ
0: कल वहाँ गौरी शंकर गुलड़िया में शिव तेरस पे मंदिर पे भौजी से तो मुलाकात भाई,
1: अच्छा
0: आप नहाए गएगा?
1: भैया, गए तो है लेकिन मुलाकात पता ना, आप लेडीज की तरफ ज्यादा देखे तो इस वजह से हमारी तरफ ना देखो है।
0: ना भैया ऐसी कोई बात ना, आपको बालक हूँ संगो भाजी के।
1: दरअसल हो का आदमी

0: पढ़ाई लिखाई तो हमारी ना भई है।
1: क्यों ऐसी कहा बात रही जो पढ़ाई ना कर पाए कत?
0: पिताजी थे ही नहीं, 2.5 साल की अवस्था में छोड़ के खत्म हो गए थे,
1: इस वजह से पढ़ाई ना हो पाई। अच्छा, आप आज खेती बाड़ी कर रहे हो, पशुपालन भी कर रहे हो।
0: हाँ।
1: तो जी बताओ, जैसे आप कहीं बाजार में जाते हो तो समस्याएं सामने आती हैं आपके?
0: बिल्कुल आती हैं।
1: क्या समस्याएं आती हैं?
0: यही आती हैं, मान लो खाद पानी लेने जाओ तो कितने का होता है, कितने लिख देते हैं, कितने चढ़ा देते हैं खाद पर। जो आपने मांगा है 1 कट्टा, उन्होंने चढ़ा दिया 2 कट्टे, तो हमें 1 कट्टा ले लिया, हमने 1 कट्टा उन्होंने अपने ब्लैक बेच लिया दुकानदारों ने।
1: पढ़े लिखे होते
0: तो पर्ची मिलती,
1: पढ़ के देख लेते,
0: पर्ची देख लेते भाई हमें एक लिया तो एक ही मिला हमें, या दो तो नहीं लाई, काट दिए ना।
1: अच्छा, कहीं जात हो गए रिश्तेदारी में, मेहमानी में, तब भी कोई दिक्कत होती है?
0: दुकानदार मिल जाए कोई या रास्तागीर मिल जाए तो उसे पूछ लेते हैं।
1: तो जो समस्या आए पढ़ाई लिखाई ना होने से।
0: हाँ
1: भैया, आप घोर समस्तपुर से कार्यक्रम में, वीर बहादुर जी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो कुछ आप भी बताओगे आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक भैया?
2: भाई अपनी पढ़ाई लिखाई 7वीं तक हुई है।
1: अच्छा, भाषा अगले नहीं पढ़े?
2: भाषा अगले पढ़ नहीं पाए, पिताजी गुजर गए, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई बंद हो गई।
1: तो खेती बाड़ी हो रही है?
2: हाँ, खेती बाड़ी कर रहे हैं।
1: तो खेती में कौन कौन सी फसलें उगा रहे हो?
2: अभी इतने समय तो इतने टाइम तो मतलब धान लगा हुआ है, कुछ गन्ना है, कुछ खेत में लगा हुआ है।
1: अच्छा, कौन सा धान लगा हुआ है आपने?
2: अब ये सरबती लगी हुई है और मलंका धान लगा हुआ है।
1: मलंका और सरबती?
2: हाँ।
1: तो सरबती तो सब जानते हैं, अच्छी हाँ। खाने में भी है और हाँ। मतलब बिक्री में भी सही बिक जाती है। और जो एक धान आप और बता रहे हैं मलंका,
2: हाँ
1: ये धान कैसे हुआ है?
2: मलंका ये मोटा हुआ है थोड़ा होने में, और 4 से 3.5 तक कट जाता है।
1: अच्छा, लेकिन इतना धान काटने के लिए बहुत कुछ करने पड़ते हुए धान की फसल में?
2: हाँ भाई, मेहनत है, उसी हिसाब से अपनी मेहनत कर रहे हैं, नराई बराई है, खाद पानी है।
1: धान की जो फसल है वहाँ में खरपतवार हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वाकिल?
2: उसकी नलाई हो रही है धान की,
1: तो नलाई हाथ से करते हैं,
2: चलाते हैं हाथ से, मतलब हाथ से इकट्ठी करते रहते हैं, मोटे बनाते रहते हैं।
1: अच्छा, कुछ लोग हमने देखी चौराहे के कुछ समय बाद जो है वहाँ में दवाई डाल देते हैं, उससे भी घास ना जमती
2: हो जाती है उससे? हाँ, स्प्रे हो जाती है, करते हैं उससे आदमी।
1: अच्छा, उसकी तो आपने डाली दवाई?
2: दवाई डाली थी हमने कंधार में चौड़ने के बाद में, लेकिन उससे घास रुकी नहीं।
1: अच्छा, तो फिर नराई करनी पड़ रही है?
2: हाँ, नराई हो रही है।
1: अच्छा, पशुपालन करते हो आप?
2: हाँ, पशुपालन।
1: कौन कौन से पशु हैं?
2: भैंस है सर, अब
1: एक भैंस है।
2: हाँ।
1: दूध दे रही ना?
2: ना, दूध नहीं दे रही अभी।
1: अच्छा, तो देखो बरसात को महीना चल रहा होगा और ऐसे मौसम में जो हमारे पशु हैं उनके लिए कई संक्रामक बीमारियां हो जाती है, खुरपका है, मुंह पका है, तो क्या ध्यान रख रहे हो अपने पशुओं के लिए?
2: बाहर निकाले बांधोगे लंगर को तो अपने पैर जिंगन के मतलब पैरों ही देखोगे, तो उसके कान पकड़ देखोगे बुखार है क्या है क्या नहीं है। बुखार होगा तो कान गर्म होंगे,
1: ठीक,
2: और नहीं तो वैसे हमारे ठंडे होंगे।
1: अच्छा, टीका ना लगवा तो?
2: हाँ, लगवाते हैं टीका,
1: क्योंकि जो हमारे विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, वो सलाह देते हैं कि बरसात से पहले पहले अपने पशुओं को टीका लगवा लेना चाहिए। हाँ। तो टीका तो लगवा तो होंगे?
2: हाँ, टीका लग गया है
1: जी। शिव कुमार जी, आप भी पशुपालन कर रहे हैं खेती के संग संग?
0: हाँ हाँ।
1: कौन कौन से पशु हैं?
0: हमारे पास एक गाय है।
1: अच्छा, दूध दे रही ना?
0: ना, गब्बे ना है।
1: अच्छा,
0: 2-3 महीने बह जाए।
1: तो क्या खिला पिला रहे हो अपनी गाय को?
0: हम अपनी गाय को घास चारा खिला रहे हैं, चरी है वो खिला रहे हैं।
1: अच्छा, चरी खेत में वो रखी हुई?
0: हाँ।
1: और बाकी धान की नराई चल रही हुई? जैसे किसी
0: धान की नराई कुछ कर रही है, कुछ में दवा लगा रही है घास सूखने की।
1: तो जो दवाई लगाई आपने वो घास सूख गई?
0: हाँ, कुछ खेत में सूख गई है, कुछ मतलब स्प्रे लगाते समय बारिश हो गई तो वो खेत की घास नहीं सूखी पूरी।
1: तो आपने भी एक भैंस पाल ली है शिव कुमार जी ने, और आप बता रहे हो कि आप वीर बहादुर जी ने भी एक भैंस पाली है सिर्फ, और शिव कुमार जी आपने भी सिर्फ एक गाय पाली है। तो जी बताओ, पशु हम बहुत कम पाल रहे हैं?
3: कम नहीं बाबू जी, उसे में बहुत फायदा है, पशु पालने में बहुत फायदा है, कि उससे घर में खाद बनती है, बहुत सी हमें
1: दूध वगैरह मिलता है,
3: दूध मिलता है।
1: और अपने तो देखो गांव में रह रहे हैं, अगर घर पर कोई सब्जी ना है तो अपने दही निकालो, चटनी मिलाई और वहां से अपने खा लो,
3: उससे बहुत आराम है। मगर क्या करना, अपने मजबूरी है ना, ले पाए।
1: चलो, आपके सामने मजबूरी है। अब जैसे जे वीर बहादुर भैया हैं, शिव कुमार भैया, इन्होंने एक एक पशु पाला हुआ, तो ऐसे कारण का है कि पशु कम क्यों पाल रहे हैं, कुछ बताओ शिव कुमार जी आप।
0: ऐसा है कि पशु कम को बजाय जाए कि हर आदमी आलसी हो गया है, मतलब मेहनत नहीं करना चाहता है।
1: और पशुओं में है मेहनत,
0: उसमें है मेहनत, तुम खाओगे बाद में, उसे खिलाना है पहले। आदमी को चाहिए जाएगी पहले मुँह मिले, बात ये है। इसलिए हर आदमी जो है जिंगरे को कम पकड़ रहा है। मोल ले लेगा तुम्हारा, 100 रुपए किलो होगा वो भी ले लेगा दूध तुम्हारा।
1: लेकिन ये तो आप जानते हो कि मोल को होता है,
0: वो तो होता ही है।
1: अब आपके घर पर दूध ना है, कोई आओ है तो परे लाए गिलास घूम रहे हैं मोहल्ला में।
0: हाँ, मोहल्ला मोहल्ले का आते हैं।
1: हाँ। और अगर घर पर हो
0: तो फिर कोई बात ही ना है,
1: चाहे आपको अपने दूध पे आओ मेहमान को।
0: हाँ।
1: चाहे अपने चाय बना के पे और अपना खूब,
0: बल्कि जब दूध होता है तो दूध पिलाते हैं हम लोग, चाय ना पिलाते हैं, क्योंकि हम खुद ना पिए चाय।

0: हाँ बात बिल्कुल सही है। और देखो दूध
1: हाँ
0: तो बहुत ही बढ़िया चीज है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और ये तो आपने देखता है कि अगर घर पर सब्जी ना आए तो
1: अब
0: बात है
1: हमारी
0: अपने।
1: गिरजा को वो चकंदाबारी बीमारी हो गई थी, गोलबारी पहले जो हवा चली,
0: हाँ
1: तो हमने सबने चोकलेट बहुत लोगों ने छोड़ दिया जिगरे, लेकिन
0: अच्छा,
1: हमने अपनी गाय अपनी नहीं छोड़ी हमने,
0: और छोड़ना होना चाहिए।
1: उसको इलाज कराओ बाकायदा, और ठीक कराने के बाद फिर उसको दूध भी खाया, लभारा हुआ, लभारो में कुछ दिन पहले खत्म है वो।
0: तो जो आप बता रहे हो कि लवारो खत्म है वो, और एक बात आपने कही कि कुछ लोग छोड़ देते हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो आवारा पशु हैं वो घूम रहे हैं हमारे खेतन में, भी घूम रहे हैं गलियों में, घूम रहे
1: वो
0: हैं।
1: ऐसा है दूध खाते हैं और जब वो नई दही नहीं होती हैं जब भी उसे छोड़ देते हैं,
0: तो जी गलत बात है ना है।
1: गलत तो है मगर करोगे का मजबूरी है सामने। भूसा अगर मोल लेने जा रहे हैं आप तो मामूली बात है 700-800 रुपये बीघा मिलेगा, और वैसे तो क्विंटल है अब इतने टाइम।
0: लेकिन हम किसान लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अगोला अभी हमारे खेत में अगले समय में चले गो
1: हाँ
0: भूसा, जब गेहूं होते हैं तो भूसा हमारे खेत में हो जाता है।
1: पत्ती
0: अब जो
1: उत्ती
0: धान लगा हुआ हमने, धान प्याल वो पुआल जो है वो हमारे खेत में हो जाते हैं, हमें कहाँ
1: हाँ
0: दिक्कत है।
1: वो दिक्कत तो वो ही है इतनी कि कौन खा रहा है कौन डाला है।
0: तो भैया जाके कुछ ना कुछ तो मेहनत
1: लेकिन
0: करनी पड़ेगी, क्यों
1: हम तो लोग तो पाल
0: छूट
1: रहे हैं
0: पड़
1: जैसे
0: गई।
1: मान
0: हाँ
1: लो
0: वो तो करनी
1: हैं
0: पड़ेगी, और का।
1: भाई
0: हाँ
1: इतने
0: हाँ
1: काम के पशु हैं हमारे तो
0: कि
1: करनी
0: उनसे हमें
1: पड़ेगी।
0: दूध मिलता है, मठा मिलता है, घी मिलता है, जिनको खाकर हम अपनी सेहत को संभालते
1: अब
0: हैं।
1: गोबर खाद के लिए भटक रहे थे होता है कि
0: हम्म,
1: गोबर खाद कहीं मिल जाए,
0: बात बिल्कुल सही है। अब जब आप पशु ना
1: अब
0: पाल रहे तो
1: गोबर खाद
0: फिर
1: मिल ही नहीं
0: गोबर
1: रही
0: की खाद
1: है।
0: कहाँ से मिलेगी। वीर बहादुर जी, जैसे कि भैया कह रहे हैं कि गोबर की खाद ना मिल रही है, और पहले अपने देखते थे जो हमारे खूब अपने पशु पालते और ले जाते चुगान ताई, और चुगा के लाए के फिर अपने घर
1: हाँ
0: में
1: घर
0: बांध
1: पे
0: देते,
1: बांध लिए अपने।
0: लेकिन आज हम ऐसा ना कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो खेत में फसल ले रहे हैं, बादशाह भी उत्पादन तो हम ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन हमारी जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता है वो कमजोर हो जा रही है। तो क्या कर रहे हो जाके ले कि हमारी मिट्टी सही बनी रहे, बाकी सेहत सही बनी रहे।
1: इसके लिए आदमी के लिए डंगर पालना चाहिए, जिंगरा अपने पोए बांध मतलब पोए उसे
0: पशु
1: पाले,
0: पालना
1: पशु
0: चाहिए।
1: पालन जो करना चाहिए। लेकिन आदमी वहां पर कतई छोड़ पड़ा है, वो आदमी लग गया 500 रुपये की दिहाड़ी पे कि मैं पाँच जाऊंगा 500 रुपये कमा कर लेकर आऊंगा अपने बाली बच्चों को खिलाऊंगा, और वहीं से पशुपालन ना होने पर जमीन की जो ताकत थी वो कमजोर होती जा रही है।
0: जी और का फायदा है गन्ना की बनाई से।
1: गन्ना की बधाई, मुझे फायदे हैं कि गन्ना गिरेगा नहीं तो वजन कम नहीं होगा, गन्ने की बधाई पत्ती कटवा करवाओगे तो गन्ना गिरेगा नहीं, वजन कम नहीं होगा, उसमें सिरकटे नहीं खाएंगे,
0: जो
1: चूहा कम
0: नुकसान
1: खाएंगे।
0: नुकसान पहुंचाते हैं, तो जो
1: हाँ
0: सिरकटा और चूहा आप बता रहे हो कम खाएंगे, ऐसो क्यों का ऐसो करते हुए जाए।
1: खड़े पे कम खाते हैं गिरे पे ज्यादा खाते हैं,
0: और रोशनी भी हो जाती है, हवा को
1: रोशनी, हाँ
0: आवागमन भी
1: रोशनी रहती है तो जी तो रहता है ना।
0: बामे होते रहते हैं।
1: हाँ
0: सूरजपाल जी, जब गन्ना की बंधाई आप भी करते होगे अपने खेतन
1: जी
0: में,
1: साहब,
0: तो किस तरीका से गन्ना बांधो तो।
1: बनना तेरे 4-5 मूड़े लाए घर के अंदर, जूना बनाए, जूना बनाए 4-5 मूड़े लाए इकट्ठे करके बांध दे,
0: अच्छा।
1: बांधने में तई हवा चल रही है तो बहुत है मुड़ो रोका है वो, जो होता है मुड़ो रोका है वो, इसलिए गिनने नहीं देगा,
0: मतलब 3-4 झुंड इकट्ठे बांध दे,
1: बांधने पड़ेंगे इकट्ठे
0: और अगर एक झुंड बांध देंगे तो क्या होए,
1: तो वो सर नहीं रोका है, वो तो हवा में लुढ़क जाएगी गाय, वो
0: नीचे पानी भरो वो होए,
1: नीचे पानी भरो गाय लुढ़क जाए वो, इसलिए चारों वो भी लेकर है जूना कर दो
0: वो अपने गिरत ना आए,
1: गिरा गुना है वो
0: और गन्ना आप उसी तो खड़े रहते
1: सीधो
0: हैं।
1: खड़ो रहा है वो
0: जैसे कि
1: यार।
0: भैया कह रहे हैं शिव कुमार जी कि जो है सिरकटा है, चूहा है, वे वहां में कम लगते हैं, ऐसे अगर
1: में
0: गन्ना होते
1: हाँ
0: तो। अच्छा, जो गन्ना धान की खेती करते हैं जाके अलावा और कौन कौन सी फसलें आप उगाते हैं सूरजपाल जी।
1: आलू करते थे का धरखन ने, आलू वाले लाए
0: हाँ
1: तो आलू में लाए अपने गाड़ के बाकू चढ़ाए दे, चढ़ाया कबर लगाए दे खा दूध तई बात में तैयार होते रहे थे,
0: मतलब बढ़िया नहीं फसलें कर लेते
1: बढ़िया
0: वहाँ
1: नहीं पड़ रहा।
0: तो, आलू करते हो जाके अलावा और कोई सब्जी की फसल करते हो।
1: कहते साहब मेथी बह लई या बूरी गाड़ लई, घरों सब खेती करते हो जब मोरी है तो।
0: हाँ, बात बिल्कुल सही है भाई, खेती जब हम कर ही रहे हैं तो
1: तो
0: जिससे
1: हम
0: हमें
1: तो
0: ज्यादा फायदा मिला
1: और
0: है
1: बै करेंगे और सब।
0: वो हम करेंगे। तो कुछ अपने अनुभव ये बताओ, जैसे आप बता रहे हो कि बरयानी की सब्जी भी आप कर लेते हो खेती बाड़ी में, तो धान गन्ना गेहूं की खेती करते हो, उधर आप बरयानों भी कर
1: कर
0: लेते हो,
1: लेते हैं।
0: तो फायदा आपको किस चीज में ज्यादा महसूस होता है।
1: अब तेरे सारे इस समय गोभी पौध पड़ रही है, अरे
0: अच्छा।
1: गोभी है इसकी पौध पड़ रही है, अब इसकी आराम से करके क्रिया बना के उसकी पौध डाली, पौध डालने के बाद में जब वो तैयार हो जाएगी तई अपने कुचिया बना के वो गड़ जाएगी
0: अच्छा,
1: बढ़िया के गाड़ के, और उसमें खाद पानी लगा के फिर अपनी नराई उराई करते रहो,
0: मतलब गोभी पौध डाली है
1: पौध
0: आपने,
1: डाली
0: कौन सी गोभी की डाली, बंद गोभी, फूल गोभी।
1: इस बार अब फूल गोभी पड़ रही है।
0: अच्छा, फूल गोभी की डाली है।
1: फूल गोभी पड़
0: लेकिन
1: रही है।
0: ये बताओ सूरजपाल जी, बरसात हो रही है और ऐसे में जो हमारी पौध है जो आप बता रहे हो कि फूल गोभी की डाली है, कभी जड़ गलन हो जाता है आपने देखी हुई, सूख जाती है।
1: सफेद पनीर डाल के उसके पानी बरसो है तो पनीर
0: हाँ
1: ढाक दई, और
0: अच्छा।
1: जब खुल रहा है तो उगा दई, जो तो देखने पड़े हमें तुम्हारे कि पानी बरसवा रहा हो तो खट ढाक दो बाहर उगा दो।

0: मतलब देखभाल करने हैं, बेर बेर जाने हैं खेत पे जाके, और जहाँ बरसात भई तो अपनी ढाक दे,
1: फसल वैसे ही भा जाएगी।
0: बिल्कुल बात सही। और कहूँ पता लगी गाँव उतरों चले गए और पन्नी ढकी रह गई
1: तब बेकार जाएगी,
0: बहुत बेकार हो जाएगी,
1: बहुत बेकार हो जाएगी सर।
0: लगाते समय का ध्यान रखोगे, कितनी दूरी पे लगाओगे, क्या करोगे?
1: एक हाथ लगा दो बस, एक हाथ लगा के तो बामा चोइयो ये लगा के बस लड़ाई करना चालू कर दियो, वो अपने धीरे धीरे होती रहेगी
0: जी। शिव कुमार जी, जैसे कि सूरजपाल जी बरियाने की फसल भी कर लेते हैं, आप भी बरियाने करते हैं साथ में? कौन कौन सी फसलें करते हैं?
2: टमाटर भी करते हैं, गोभी भी करते हैं, प्याज आलू भी करते हैं।
0: अच्छा, तो आपने पौधे डाली गोभी की ना अभी?
2: हाँ डालेंगे अब।
0: अच्छा, आलू लगा तो?
2: हाँ आलू लगा
0: तो जाके तो स्प्रे करने पड़ते ही?
2: हाँ स्प्रे होती है।
0: अच्छा अच्छा,
2: हाँ।
0: फायदा आपको किस में ज्यादा महसूस होता है?
2: फायदा तो वैसे बरियाने में ज्यादा है, लेकिन हर आदमी बरियानों कर नहीं पाता है उस तरीका से।
0: बरियाने मेहनत बहुत करनी पड़ती है।
2: हाँ वही तो, क्योंकि जो साल भरे में गन्ना देता है पैसा, गेहूं धान 6 महीने में रुपया देता है, और जो बरियाने के जो कचियाने के मामला है, जो लगभग 3 से 4 महीना में चालू रहते हैं, पैसे आते रहते हैं।
0: वीर बहादुर जी, आप भी जो धान गन्ना गेहूं की फसल बता रहे हैं, जाके अलावा आप भी बरियानों करते हैं थोड़ा बहुत?
3: हाँ थोड़ा बहुत अपने खान पीन
0: अपने घर मतलब खेत में
3: कर लेते हैं।
0: तो अब जी बताओ कि जैसे शिव कुमार जी आप बता रहे हैं कि गोभी करते हैं, ठीक है, और भी कर लेते हैं, लेकिन हमने जो देखी है जब गोभी को समय होते हैं या किसान और वहां में जो फसलें करता है जैसे आलू बोए दो, तो कुछ देखिए कोई मूरी वाप को ले आ देते हैं ऊपर, कोई और फसल है, कोई सौंप लगा देते हैं इस तरीके से, तो मिश्रित खेती कर लेते हैं, डबल खेती कर लेते हैं।
2: मिक्सर तो बरहाने में मिक्सर करनी ही पड़ेगी, मिक्सर ना करोगे तो कुछ फायदा नहीं निकलेगा।
0: अच्छा,
2: हाँ
0: तो जहाँ से फायदा का हो तो मिक्सिंग खेती करने से?
2: मिक्सिंग खेती करने से तो है कि जैसे तुमने गंठी वाली प्याज गाड़ी, वो तुम्हारी लगभग 1 महीने में तैयार हो जाएगी, 1-1.5 महीने में।
0: हाँ।
2: वो तुमने खेड़ के बेचना शुरू कर दी, बाकी तुम्हारी दूसरों बरिहान लोगों वो है उससे अपने वो तैयार हो रहा है,
0: और बाकी बिक्री चल रही है,
2: बाकी बिक्री चल रही है उसी में से।
0: और दूसरा फायदा वीर बहादुर जी ये भी है कि जैसे आप किसी फसल को खाद दे रहे हो, दूसरी जो फसल लगाई है उसको भी मिल जाते हैं?
3: हाँ दोनों को मिलती है बराबर को।
0: क्यों सूरज पाल जी?
1: उन संग मिल रही है जी।
0: और आपको डबल मुनाफा हो रहा है?
3: डबल मुनाफा हो रहा है उसमें।
0: तो ये मानते हैं कि मिश्रित खेती करने से फायदा है?
1: लंबा फायदा है।
0: कुछ लोग सिवाली में गेहूं में सिपाही लगा देते हैं, आपने उस समय देखी होगी,
1: और
0: कुछ सौंप लगा देते हैं, धनिया बोते हैं तो बामे अपने मेडन पे मूली लगाए दी।
2: हाँ।
0: इस तरीके से फसलें अपने जो
1: तय कहते हैं मूली लगा दी।
0: हाँ।
1: बीच हम सलगम लगा दी।
0: कहते
1: मूली खेल रही, एक बजार सलगम खेल ले गए तो 2 बजार डबल हो जाती है।
0: और अगर डबल खेती नहीं भाई तो पता लगे 1 बजार करके बैठे तैयार हुए तो खेत में लेके
1: फसलें होती है, आराम चलता रहता है,
0: आराम से कोई अपने जो खर्चा पानी है घर को चलता रहता, कोई दिक्कत ना। बाजारे कहाँ की लगती हैं आपके आसपास क्षेत्र में?
1: हमारी बरखन है और खतुआ है, अभी एक दरेंद्र नगर की है, दरेंद्र नगर और बरखन ज्यादा चल रही है।
0: तो बरियाने की जो फसलें करते हो बिक्री में तो कोई दिक्कत है ना?
1: ना सो कोई दिक्कत ना है,
2: वो तो आपकी इच्छा है, चाहे मंडी भेजो चाहे अपने हाथ से बेचो बाजारों में।
0: व्यापारी लोग भी खेत पर आ जाते हैं कभी कभी?
2: हाँ आ जाते कभी कभी, फिर
1: बरियान हो तो उन्हें ले जाएंगे, उठाए
2: बढ़िया माल अगर है तो खेतों में से उठा ले जाएंगे।
0: तो खेत पे बेचने में फायदा है या मंडी ले जाए बेचो तो ज्यादा फायदा?
2: मंडी में जाए सही रहता है,
0: अपने मन माफिक जो भाव है।
2: हाँ।
0: वो मिल जाता है,
2: रोज की रोज हर रेट अलग अलग मिला है वो।
0: और जो बाकी खेत पे जो व्यापारी लेने आते तो अपने भाव से लेते हैं,
2: खेत पे तो अपना भाव लगा लूंगा,
0: तो मंडी ले जाकर या बाजार में आप बिक्री कर देते हैं। तो वीर बहादुर जी आप भी जो खेती बाड़ी है उसमें बरियाने की फसल बता रहे हैं, खान पीन लायक कर लेते हैं।
3: हाँ।
0: तो क्या क्या फसलें करते हैं आप अपने खेत में?
3: अब जैसे मान लो थोड़ा आलू वाड़ लिया अपने, थोड़ी नक्की पे मुई लगा दी, दो चार किराई में साग बो दिया अपने, मेथी या पालक है, ये अपने अपने करते रहते हैं खाने पीने के लिए,
0: मतलब घर के खान पीने के लिए।
3: हाँ।
0: करते हैं, बाकी बिक्री वगैरह के लिए?
3: बिक्री वगैरह नहीं करते हैं,
0: बाकी वही धान।
3: हाँ,
0: और गन्ना और गेहूँ।
3: हाँ।
0: आप लगाते हैं, तो आप गन्ना की खेती जो कर रहे हैं, गन्ना की खेती से बढ़िया पैदावार मिले क्योंकि बनाई आप करेंगे।
3: हाँ।
0: बनाई के बाद और भी काम करने पड़ते हैं, वहां में का ध्यान रखते हैं कि गन्ना की फसल से आपको अच्छी पैदावार मिले, उत्पादन मिले, वो सही मिले?
3: जब गन्ना पे लगाते हैं तो उसके जड़ पर मतलब खाद पानी पे लगाते, दवा वा डालते हैं, जैसे कि गन्ना हमारा जम के आए तो सूखना नहीं चाहिए उसे, केला पे केला के लिए दवा लगाते हैं अपने, केला मर जाए उसके लिए लगा खाद पानी MPA वगैरह अपने लगाते हैं, नहीं तो वो वहीं बंडा हुआ वहीं सूख जाता है गन्ना पे।
0: आप सूरजपाल भैया बताओ कि जो खेती बाड़ी आप कर रहे हो और जो पशुओं की बात अपने कर रहे हैं, तो पहले अपने जो देखते कि बैल पालते अपने घर पर, बैल
1: आधी आधी मन में आई आधी आधी इनको खबाओ लेके चलते,
0: और पहले अपने जो बोझा ढोते लेकिन आज मशीनीकरण को योग है, लेकिन मसूर कम कर रहे हैं। बीर बहादुर जी आजकल आप उगा तो ना
2: गन्ना डबल कर देता है
0: तो आपके इधर जो गन्ना

0: धान गेहूं ये फसलें ज्यादा उगाई जाती हैं।
1: हाँ
0: गन्ना जब तैयार होता है तो कहाँ पर जाता है, आपकी कौन
1: ये
0: सी
1: हमारे
0: फैक्ट्री
1: मिल
0: लगती
1: पर
0: है?
1: जा रहा है, सिमीखेड़ मिल।
0: सिमीखेड़ा पे। चलो बहुत अच्छी बात है। आप ये तो मानते हैं कि खेती के संग संग पशुपालन बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है।
1: जरूरी काम है खेती करके, पशु जरूरी पाला है, वहां से बहुत आराम मिलता है। उसकी घास लेकर रही है, वो पशु खा रहे हैं, और फिर 10 चक्कर लगाओ खेत के अपने, जब पौवे हैं पौवे के चक्कर में 10 चक्कर लगाओ जा खेत पे। अरे हमारे पौवे भूखू है तो अपने खेतों में गाय घूमन गए हैं,
0: अपने घास कूड़ा खेत में से जैसे
1: ला
0: धान की
1: रहे
0: नराई करी
1: हाँ
0: निकालो, तो बाघो अपने ले
1: ले
0: आए,
1: जा रहे
0: तो बाघो अपने ले आए और अपने पशुओं को खिलाए
1: अब
0: दो।
1: आ रहे हैं, अब अपने खेतों में घूमे आ जाएगा।
0: लेकिन एक बात शिव कुमार जी है, अगर खेती के संग संग पशु हम पाल रहे हैं तो फायदा तो बहुत ही बड़ा हुआ है।
2: ना हम तो पाल रहे हैं बराबर, शुरू से ही पाल रहे हैं, आज से ना शुरू से
0: पालनु चाहिए, क्योंकि देखो एक तो आपको दूध मिल लो, दही मिल लो, घी मिल लो, मट्ठा मिल लो, जाके संग संग
1: बहुत आराम
0: जो
1: है।
0: वीर बहादुर जी जो पड्डा पड़िया होते हैं, बछड़ा बछड़िया होते हैं,
1: हाँ
0: जब वे बड़े हो जाते हैं उनकी हम बिक्री कर देते हैं,
1: हाँ बिक्री हो
0: तो
1: रही है
0: वो भी
1: उनकी।
0: बिक जाते हैं,
1: हाँ
0: और जो कोई काम अपने चलाने हैं घर को
1: बहुत चल रहा
2: वो भी
1: होगा।
2: चला रहे हैं अपने, मान लो ज्यादा दूध दे रहा है डंगर अपने, आज छोटा परिवार है तो उससे मतलब किलो दो किलो बेच भी दो।
0: ये बात आपने बिल्कुल सही कही, अगर जैसे आप पशु पाल रहे हैं और आपके घर के उपयोग से अगर दूध बच रहा हुआ है।
2: हाँ तो किलो दो किलो अपने बेचते रहो, उससे अपने चोकर अपने खाने के साग सब्जी है वो भी अपने लेते रहो रोज की रोज।
0: अपने जैसे चोकर है, चुनी है, खर
2: हाँ
0: है, जो अपने ले आए।
2: भैंस के लिए अपने ले आते रहो और अपने अपने
1: बचत
2: भी काम में
1: लो,
2: भी खर्चा में आ जाती है, पैसे बचता है तो।
0: बिल्कुल बात सही है। अच्छा चूंकि बरसात का मौसम है और जैसे आपने बताया कि उनके जो पशुवाला है उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जैसे खुर पक जाते हैं कभी कभी ऐसे मौसम में, और
2: हाँ
0: मुंह भी पक जाता है, जो खुरपका मुंह पक कहते
2: हाँ
0: हैं,
2: खुरपका
0: संक्रामक
2: बोलते
0: बीमारियां
2: हैं उसे।
0: होती हैं, तो उनके लिए टीका लगवाया जाता है। लेकिन और का का देखभाल कर रहे हो जो हमारे पशु सही सलामत बनो रहे खान पान में उनके?
2: खान पान में क्या भूसा, अभी इतने टाइम भूसा है, पत्ती है, चरी है, चार अपने ये तीन मतलब खवा रहे हैं, अभी सानी कर रहे हैं घर की,
0: अच्छा नहलवाने भी हो तो है पशुओं
2: हर
0: के
2: रोज की
0: लिए।
2: रोज नहलवा रहे हैं उसे।
0: शिव कुमार जी तालाब पे ले जाते पशुओं के लिए और पानी पिलाते
2: प्याला थे अब
0: और अपने हुई हंधवाए रहे हैं, तो इसलिए अब जो है घर को पानी पिलाते हैं आप, स्वच्छ
2: हर
0: और ताजे
2: आदमी अपने घर
0: पानी,
2: का पानी पिलाता है।
0: और नहलवाए भी अपने नल के पानी
2: हाँ
0: से जो
2: अब
0: इंडिया
2: जो
0: मार्ग का
2: है
0: पंप लगे हुए
2: मिट्टी का तेल
0: हैं।
2: खत्म हो गया है, अब ये बत्ती चल गई है तो लोगों ने मोटर भी लगवा ली,
0: मोटर
2: किलो
0: लगवा
2: वाट
0: लेते
2: की,
0: हैं
2: 500 ग्राम
0: बस,
2: वाट की, तो अपने घर ही नहलवा लेते
1: मोटर
2: हैं, हर आदमी
1: नहलवाना
2: घर
0: है
2: ही नहलवा था।
0: और लाइट तो आई रही है खूब,
1: चलिए रही अब तो बस
0: मोटर चलाई
1: हलवा
0: हाँ
1: जाए
0: और अपने
1: हलवा
0: हनवाए
1: जाए।
0: हनवाए थे, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो आप तीनों किसान भैया कार्यक्रम में शामिल रहे हैं और खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, खेती के संग संग पशुपालन भी कर रहे हैं, और आपने कही कि जो खेत में या कोई जो फसल खड़ी होती है धान की गेहूं की या कोई और फसल खड़ी होती है, तो उस समय लोग बीमारी भी फसलों में लग जाते
2: लग
0: हैं।
2: जाते
0: अब जब
2: हाँ
0: लोग बीमारी कोई लगते हैं तो बाकी नियंत्रण के लिए दवा की स्प्रे भी करते हैं, तो दवा की स्प्रे करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखते हैं सूरजपाल जी आप बता रहे हैं?
1: रुमाल बांध के अपने करना है कि उसमें बना है पापा है मुंह पे दवाई,
0: और हाथ में दस्ताने पहले
1: हाथ में
0: दो।
1: दस्ताने बांध लें। अब
0: शिव
1: तो
0: कुमार जी हमने देखी कुछ लोग जो है जब दवाई की स्प्रे करते हैं तो उस समय जो है कुछ बीड़ी पी ले करते हैं, कुछ तंबाकू खा ले करते हैं।
2: हाँ, तुझे नहीं खाना चाहिए बीड़ी तंबाकू, नहीं खाना चाहिए स्प्रे वगैरह। स्प्रे अगर कोई सी दवाई की कर रहे हो तो बीड़ी तंबाकू नहीं खाना चाहिए,
0: गलत चीज है ये,
2: गलत चीज है,
0: क्योंकि दवाई जो होती जहरीली होती है।
2: जहरीली होती है वो तो, सुड़ी है जमीन के अंदरों को मारने पड़ती है उसे, और पोंगी में है वो भी सुड़ी मारती है, तो दवाई की से तो मरती है।
0: जी,
2: अब उसमें तुम तो बीड़ी पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, स्प्रे करने के बेरा तो वो नहीं करना चाहिए
0: और कभी कभी अनहोनी घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। वीर
2: कतई।
0: बहादुर जी जब स्प्रे करते हैं तो हमने देखी अपने खेतन में जो बालक बच्चे घर के होते हैं उन्हें संग ले जाता है कि चलो लला कम से
1: हाँ
0: कम टंकी उठवाने में हाथ लगा
1: उठवाएगी।
0: दे,
1: हाँ
0: और हमने जो देखी जब बालक संग में जाते हैं खेत में तो जो दवाई के डिब्बा होते हैं उनमें डोरा बांध लो और डोरा बना के अपने भाई गाड़ी बना के चला रहे हैं और हम स्प्रे कर रहे हैं, तो कभी कभी अनहोनी घटनाएं भी हो जाती
2: हाँ
0: हैं।
2: बच्चे मतलब मुंह से लगा लेते हैं शीशी, तो उसमें दवा का गूंद या पानी मिल में रह जा रहता है तो उससे बच्चा की हानि हो जाती है।
0: स्प्रे करते समय जो है अपने बच्चन के प्रति सावधानी रखनी चाहिए, और
2: हाँ
0: जो दवाई के डिब्बा हैं उनको वहीं पर जमीन में गड्ढा खोद के
2: गाड़
0: दवा
2: दो
0: देनी
2: गड्ढा
0: चाहिए,
2: खोद के गाड़ दो या फिर उन्हें आग लगा के जला दो
0: जला
2: भाई।
0: दो, क्योंकि अगर देखो जंगल में अगर हम ऐसे डाल देंगे तो कभी कभी हमारे पशु भी पहुंच जाते हैं और वो भी उसको चाट लेते हैं,
1: चाट लेंगे
0: तो
1: और
0: कहीं ना कहीं दिक्कत उनके लिए भी हो
2: होगी,
0: सकती है।
2: पूरी दिक्कत हो जाती है उन्हें।
0: जी तो आप तीनों किसान भाई सूरजपाल जी, वीर बहादुर जी और शिव कुमार जी इस
2: जी
0: बात से सहमत हैं कि खेती बाड़ी के संग संग पशुपालन करना बहुत जरूरी है,
1: करेंगे बहुत
0: कि
1: जरूरी है काम,
0: खेती के बिना जो है पशु अधूरे हैं और पशुओं
1: अधूरी
0: के
1: है
0: बिना जो है हमारी
1: खेती,
2: खेती
1: अधूरी
2: अधूरी है।
0: खेती अधूरी है,
2: हाँ
0: तो हम सब किसान भैया बहनों को खेती के संग संग पशु जरूर पालने हैं
1: पालेंगे।
0: और अपनी जो खेती बाड़ी है उसको अच्छे तरीके से करने हैं। सूर्यपाल जी, शिव कुमार जी और वीर बहादुर जी आप तीनों महानुभाव कृषक भाई हमारे कार्यक्रम में कृषि गोष्ठी में शामिल हुए और आपने अपने अपने विचार रखे, अपने अपने खेती बाड़ी पशुपालन के अनुभव बताए, हम समझते हैं कि हमारे भैया बहन कार्यक्रम को सुनकर लाभान्वित होंगे। आपका

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राकेश भैया, अभी हमारे भैया बहन कृषि गोष्ठी सुन रहे, विषय हो खेती किसानी और पशुपालन से लाभ, और प्रतिभागी एक गोष्ठी में शिव कुमार, सूरजपाल और बीर बहादुर, और संचालन कर रहे भैया कृष्णपाल मौर्य।
2: तो हरिपाल भैया हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास में कमेंट भेजते हैं, लोकगीत की फरमाइश भेजते हैं। तो जरा बिन नाम शामिल करो जो भैया ने आज कमेंट भेजी है।
1: बिल्कुल राकेश भैया, कुछ सोशल मीडिया कमेंट्स भी आए हुए हैं और कुछ चिट्ठी पत्री भी हमको मिली हैं।
2: जी
1: तो जो चिट्ठी हमको मिली है, ग्राम ललहुआ लखीमपुर खीरी से भेजन बारे हमारे साथी हैं विजयपाल यादव, शुभम यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव और परिवार के सभी सदस्य आप हैं। और छी बदायूं से गोपाल श्रीवास्तव, शिवम सागर, ऋषभ पारासरी, अतुल यादव, रोहित, अरमान, अमित और साथ में हसन और मुनीष।
2: और जो अगली चिट्ठी बहुत सजीवी आई है बदायूं से, जो कौन है?
1: जी है भैया, ग्राम दूरीनगर जिला बदायूं से हमारे नियमित श्रोता मुन्ना सिंह कठेरिया, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, विभू, आदर्श, आदित्य, कुमकुम, निव्या, सरता और अंतमा।
2: और भैया हमारे पास जो कमेंट आई है भी हम शामिल कर रहे हैं। आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगले साथी हैं नाज रेडियो क्लब करेली से, निसार अहमद अंसारी, महजावी निसार अंसारी, बेटी नुजहत फातमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा, पप्पू भाई अंसारी, इनके परिवार के सभी सदस्य। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से 11, पुराना शहर बरेली से आप हैं अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति, उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सबकी फरमाइश के आधार पर हम आपको सुनवाते हैं प्यारे सु लोकगीत।
1: ओम प्रकाश शर्मा के स्वर में।

0: राकेश भैया,
1: हाँ
0: वास्तव में
1: भैया,
0: बहुत ही मधुर लोकगीत सुनवाओ आपने, और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो भैया बहन कार्यक्रम सुन रहे हैं वो गदगद हुए गए होंगे लोकगीत को सुनकर
1: भैया
0: के।
1: कोशिश तो देखो जाए करते हैं कि हम ऐसे लोकगीत कार्यक्रम में शामिल करें जो हमारे भैया के लिए पसंद आवे। और भैया इसके आगे और का है कार्यक्रम में?
0: कार्यक्रम में भैया अभी कुछ सोशल मीडिया संदेश रहे हैं, और एक गीत और सुनवा देते हैं अपने भैया बहन को।
1: बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन बात से पहले एक भेंट वार्ता है और वह कार्यक्रम में घर के शामिल कर लियो, उसके बाद में फिर लोकगीत सुन बाबू।
0: अच्छा, तो फिर क्षेत्र संकलित आज आप बातचीत करके लाए ही हैं, बच्चों को उचित पोषण कितना जरूरी, और बातचीत करी है राजकुमारी जी ने आपके साथ में, तो आप बातचीत सुन लें।
1: जी बिल्कुल
2: साथियों, आज हमारे पास हैं एक आंगनवाड़ी बहन जी, इनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं पोषण के संबंध में। बहन जी, आपको क्या नाम है?
3: जी, मेरा नाम राजकुमारी है।
2: राजकुमारी बहन जी, घर के जो गांव में बैठे हुए हैं, जो गांव को क्या नाम है?
3: इस गांव का नाम है मकरंदपुर धाराजीत।
2: कौन से विकास खंड में आते?
3: आलमपुर जाफराबाद में।
2: और जिला का है?
3: बरेली।
2: बहन जी, आप आंगनवाड़ी के रूप में इस गांव में कितने समय से काम कर रही हो?
3: जी, मुझे 18 साल हो गए।
2: अगर बात करें जो बच्चा है, बच्चन को सही पोषण मिले, जा चीज को विशेष ध्यान रखो जाते है, अगर हम अपने बच्चन के लिए सही पोषण ना दे पाए तो बाको का प्रभाव पड़ता है बच्चन पे?
3: अगर बच्चे को सही पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चे का शरीर का विकास रुक जाएगा,
2: ठीक,
3: पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा।
2: अच्छा,
3: और उसे बीमारियां जल्दी घेर लेंगी।
2: बहुत सही बात आपने कही कि अगर जब सही पोषण ना मिलेगा तो उसके स्वास्थ्य की जो गतिविधियां हैं जिस प्रकार से होनो चाहिए वह हिसाब से बाको विकास ना हो पाएगो, और जब विकास ना होगा तो सीधी सी बात है, पढ़ाई की बात करी जाए या खेल कूद की बात करी जाए, वहां में बाको मन ना लगेगो। अच्छा, अगर बात करें हम गर्भवती महिलाओं की, तो गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए सही पोषण मिले जाके लिए काका चीज को सेवन करना चाहिए?
3: जी, गर्भवती महिला को हरी साग सब्जी खानी चाहिए, दाल दूध फल और पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए उसे।
2: बहुत ठीक।
3: और समय समय पर जांच भी करवानी चाहिए, आयरन और कैल्शियम की गोली भी खानी चाहिए।
2: बहुत सही जानकारी आपने दी कि हरी सब्जियां हैं, दूध फल दाल, इनको सेवन अगर हमारी जो गर्भवती बहने हैं वो करेंगी तो उनको स्वास्थ्य ठीक ठाक बनो रही है। अगर बात करें हम संतुलित आहार की, कही जाती है कि बच्चन के लिए, गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है, तो जो संतुलित आहार का है?
3: संतुलित आहार है जैसे मोटे अनाज है, रोटी है, चावल है, दाल है, हरी साग सब्जी है, फल है, दूध है, अगर इनका रोज सेवन करे तो उनका शरीर मजबूत बनेगा।
2: बहुत सही बात आपने बताई कि हमारे शरीर को जो जरूरी तत्व हैं वे अगर पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारे लिए संतुलित आहार मिल रहा है। कहीं कहीं जा देखने को मिलती है कि हमारे घर के जो छोटे बच्चा है वे खाना ठीक से खाते हैं, घर में कोई चीज बना के रखो, दाल बना के रखो तो वे दाल में आनाकानी करते हैं, कोई सब्जी बना के रखो तो उसमें आनाकानी करते हैं। क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चन को संतुलित आहार मिले?
3: जैसे बच्चों के लिए खाने में चतुरंगी चीज होनी चाहिए, जैसे खिचड़ी बनाई उसमें हरे पत्तीदार सब्जी डाल दो।
2: अगर बच्चा कुपोषित हो रहा है तो क्या चीज देखने को मिलती है?
3: अगर बच्चा कुपोषित हो रहा है तो

0: बच्चा कमजोर हो जाता है।
1: अच्छा,
0: और चिड़चिड़ा भी हो जाता है, बार बार बीमार भी पड़ता है, पढ़ाई में भी पीछे रह जाता है।
1: अगर इस प्रकार की स्थितियां बच्चा में देखने को मिल रही हैं, तो इसको मतलब है कि बच्चा कुपोषित है, बाकी लय सही पोषण की आवश्यकता है। आप आंगनबाड़ी हैं, अगर हम बात करें आंगनबाड़ी केंद्र की क्या भूमिका है, तो आपके केंद्र पे बच्चा या गर्भवती से संबंधित क्या सलाह दी जाती है?
0: जी, गर्भवती को उनकी जांच कराएं, आयरन की गोली खाएं, हरे पत्तेदार साग सब्जी खाएं और टीकाकरण करवाएं और जी पोषण की सलाह दी जाती है।
1: अच्छा, आंगनबाड़ी के द्वारा कई प्रकार की चीजन को वितरण करो जाते हैं बच्चन के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए। तो अगर हम बात करें गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा काका चीज दी जाती है?
0: जी, आंगनबाड़ी द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए दाल, दलिया और तेल दिया जाता है।
1: अच्छा, तो जो गर्भवती महिला को दाल, दलिया और तेल दो जाते हैं, तो प्रति महीना में केतु केतु दो जाते हैं?
0: प्रति महीना में गर्भवती के लिए 1.5 किलो दलिया दिया जाता है, 1 किलो दाल और 455 ग्राम की एक तेल की पैकेट दिया जाता है।
1: अगर बात करें छोटे बच्चा है, तो छोटे बच्चन के लिए काका चीज दी जाती है?
0: जैसे 6 माह से 3 साल के बच्चों के लिए 1 किलो दाल, 1 किलो दलिया और रिफंड दी जाती है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं उनके लिए 1/2 किलो दाल और 1/2 किलो दलिया दिया जाता है। 6 महीना तक के बच्चा को, मतलब वो गर्भवती धात्री में माँ आ जाती है तो बच्चा तो कुछ खा नहीं सकता कि माँ को दिया जाता है।
1: बहन जी, अगर बात करें साफ सफाई के बारे में, कहीं कहीं जा देखने को मिलती है गांव में साफ सफाई के बारे में लोग ध्यान ना देते हैं, अगर बात करें आंगनवाड़ी की क्या भूमिका रहती है इस संबंध में?
0: जी, साफ सफाई के लिए हम लोग बताते हैं उनके लिए कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और खाना खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए।
1: ठीक।
0: और साफ पानी पीना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, घर में और घर के बाहर भी साफ सफाई रखें।
1: बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं कि आपके द्वारा जो आपके पास महिलाएं आती हैं तो उन्हें आप साफ सफाई से संबंधित उन्हें जानकारी देती हैं कि अपने घर में जिस प्रकार से आप सफाई करती हैं उस प्रकार से आप अपने आसपास घर की छत है या कहीं पे कूड़ों कबाड़ों आपने एकत्र कर रखो है तो वहाँ भी आप साफ सफाई रखें। आप कह रही हैं कि आंगनबाड़ी के द्वारा टीकाकरण में भी सहयोग करो जाते हैं, कहीं कहीं जहाँ समस्या देखने को मिलती है कि छोटे बच्चन के लिए टीका महिलाएं ना लगवाना चाहती हैं, तो आप उनके लिए क्या सलाह दोगी?
0: जैसे उन्हें हम बताते हैं कि आपके बच्चे का टीका लगना बहुत जरूरी है, ये बीमारियों से बचाता है, तो वो लोग समझदार हैं लेकिन लगवा लेते हैं। लाएं, 1 घंटे के अंदर दूध पिलावें और बच्चे को साफ सफाई और उन्हें पौष्टिक आहार दें।
1: शहद दे दो, इस प्रकार की बातें का सही है?
0: नहीं, ये गलत है, बच्चों के आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है इन चीजों से।
1: इस प्रकार की चीजें ना
0: देनी चाहिए, सिर्फ माँ का ही दूध पर्याप्त है।
1: राजकुमारी बहन जी, आपने पोषण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आकाशवाणी टीम के साथ साझा करी। हमारी आपकी बातचीत के लिए जो भी भैया बहन सुन रहे होंगे वे आपके द्वारा दी गई जानकारी को जरूर लाभ उठावेंगे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भैया बहन सुन रहे क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता, बच्चों को उचित पोषण कितना जरूरी, इस विषय में विस्तार से आपको जानकारी दे रही श्रीमती राजकुमारी और आपसे बातचीत कर रहे हमारे प्रतिनिधि भैया राकेश शर्मा।
3: और देखो हैदरपाल भैया, कुछ हमारे साथी और हैं जिनकी कमेंट हमारे पास में आई है, उनकी उन्हें हम शामिल कर रहे हैं। आप हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव। और इसके साथ अगले साथी हैं, आप हैं सनी बाजार कस्बा उघैती बदायूं से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, देव गुप्ता, कैरव गुप्ता, गौरी गुप्ता।
2: आप हैं ग्रामबा पोस्ट गोठा खंडुआ से, साथी हमारे रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप माधुरी, प्रदीप सरता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी और शिवम मिश्रा। तो आइए आप सभी के अनुरोध पर आवाज सुनते हैं फिल्म ज्वार भाटा का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में।

0: इसी प्यारे से गीत के साथ आज के ग्राम जगत कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने भैया हेडलपाल सिंह
1: और अपने भैया राकेश शर्मा को दो अनुमति। भैया बहनों
0: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं आइए आपको खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना दे दें। निधि पत्नी अनुराग रस्तोगी, निवासी मकान नंबर 498/384

एनआर कोचिंग वाली गली, थाना सुभाष नगर, जिला बरेली से 25 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 44 वर्ष है। कद 4 फीट 10 इंच, चेहरा लंबा है। ये शलवार सूट पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना मिले तो कृपया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली को सूचित करने का कष्ट करें। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित एक और सूचना सुनिए। ऋषि कुमार पुत्र सूरजपाल, निवासी 665 नवादा शेखान निकट रहमत स्कूल, गुलाबबाड़ी रोड, पुराना शहर, जिला बरेली से 9 दिसंबर 2025 से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। कद 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है, एक हैरा मजबूत जिस्म। ये चेकदार कमीज और नीली जीन्स, पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना मिले तो कृपया प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी बरेली को सूचित करने का कष्ट करें। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई। दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

0: कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है, मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है, ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम तीन नाम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को बायो एनर्जी राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर को

0: मिला पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया पुरस्कृत। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के व्यवस्था संचालन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभव का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम 3 नाम की सूची तैयार करेगी, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: कल से शुरू हुई प्रक्रिया के दौरान 18 आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय चयन समिति ने कल पहले दिन करीब 10 आवेदकों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें रिटायर IAS अधिकारी दिनेश चंद्र, रिटायर IPS अधिकारी राजेश पांडे भी शामिल रहे। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभवों का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम 3 नाम की सूची तैयार करेगी। ये नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी की राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो के दूसरे दिन आज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाही ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते प्रदेश में 17 मिलियन टन कृषि अपशिष्ट की क्षमता है, जो ऊर्जा परिवर्तन और नए निवेश का सबसे बड़ा आधार बनेगी।
2: देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगले दिनों में, जैसा आज ही आपके अपने प्रेजेंटेशन में आया कि कंप्रेस्ड बायोगैस में भी हम देश में सर्वाधिक उत्पादन कर रहे हैं, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की तस्वीर।
0: कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री AK शर्मा भी शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 8 सितंबर से लगातार 3 दिन करने का निर्णय लिया है। जस्टिस AVN भट्टी और जस्टिस NV अंजरिया की पीठ ने कहा कि अभ्यर्थी लंबे समय से दुविधा की स्थिति में है, उनके भविष्य को लंबे समय तक अधर में नहीं रखा जा सकता। कल मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि वह इस मामले से जुड़ी सूची तैयार करें, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि किन किन पक्षों को इस मामले पर सुना जाना है। लोकसभा ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक विचार विमर्श के लिए विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग में गोरखपुर जिले का बांसगांव विकासखंड नंबर 1 चुना गया है। यह जानकारी नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में दी गई है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोरखपुर को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी मिली है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का जोर समावेशी विकास के जरिए नागरिकों के जीवन में सुगमता और गुणवत्ता की वृद्धि और समग्र रूप में जीवन स्तर के सुधार पर होता है। इसके अंतर्गत 5 थीम, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत ढांचा और सामाजिक विकास के कुल 39 संकेतकों पर संबंधित आकांक्षी ब्लॉकों का मूल्यांकन किया जाता है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी

0: घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत प्रदेश के कई जिलों में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम मुख्यालय से गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल ने साइकिल रैली का आयोजन किया। वहीं बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल, अमरोहा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मन में राष्ट्रीयता और एकता की भावना को मजबूत करना।
1: तिरंगा यात्रा आज जो पूरे प्रदेश में देश में निकाली जा रही है, ये हमारे उन तमाम जो जिनकी बलिदानी हुई है स्वतंत्रता सेनानियों की याद में उनको

0: छात्राएं और स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मन में राष्ट्रीयता और एकता की भावना को मजबूत करना।
1: तिरंगा यात्रा आज जो पूरे प्रदेश में देश में निकाली जा रही है, ये हमारे उन तमाम जो जिनकी बलिदानी हुई है स्वतंत्रता सेनानियों की याद में उनको नमन का दिन है। और ये तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है बल्कि एकता, समृद्धि और विकास 140 करोड़ लोगों का संबल है।
0: हापुड़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को 2.5 लाख झंडे बनाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव अनवरपुर के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हेमलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अभियान के लिए आभार जताया है।
2: हमारे SSG अधिकारियों ने हमें 10,000 झंडे का टारगेट दिया था बनाने के लिए, हमने वो लक्ष्य पूरा किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ कार्य करने को मिला महिलाओं के लिए। और पहले गांव में महिलाएं बाहर नहीं जाती थीं, हम SSG से जुड़े तो हमें बाहर जाने का अवसर मिला और हम बहुत खुश हैं इस चीज।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। राज्यपाल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।
3: नशा किसी भी युवक की शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। यह व्यक्ति से उसका विवेक, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, परिवार का विश्वास और जीवन का उद्देश्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र की युवा शक्ति को सुरक्षित रखने का जन आंदोलन है।
0: 16वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए उत्तर प्रदेश की महिला हॉकी टीम का चयन कर लिया गया है। टीम का कप्तान वंदना पटेल को बनाया गया है। प्रदेश में कल से एक बार फिर मॉनसून सक्रिय होगा, जिससे 18 अगस्त तक राज्य में व्यापक बारिश की संभावना है। उधर पहाड़ों पर लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण फरुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। जिलाधिकारी अंकुर लाठर ने बताया कि प्रशासन ने सभी इंतजाम किए हैं।
4: दिलीप की मड़ैया में कटान की शिकायत थी तो वहाँ कटान हुआ था, 25 जो मकान है वो भी बह गए थे, तो उन सभी को राहत धनराशि भी दी जा रही है 1,20,000 और उन लोगों को पट्टा भी दिया जा रहा है। और शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है क्योंकि गांव में बच्चे हैं, स्कूल से बिल्कुल संपर्क मार्ग टूट गया है, तो कल से वहीं पे टीचर्स जाके बच्चों को पढ़ाएंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को बायो एनर्जी राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर को मिला पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया पुरस्कृत। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
1: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
2: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
3: महिलाओं के बांझपन और जठराने की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
2: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
3: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
2: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
4: हेल्पलाइन कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं मुकेश कुमार पांडे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बरेली के न्यूरो सर्जन डॉक्टर शकील अहमद साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: शुक्रिया
4: डॉक्टर साहब। आज हम बात करना चाहेंगे दूरबीन विधि से जो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन आप लोग करते हैं उनके विषय में। चूंकि ऑपरेशन अपने आप में इतना बड़ा शब्द है और इतना डरावना लगता है आज भी समाज के लोगों को कि एक तरह से सरसरी दौड़ जाती है शरीर में, और आप लोग कहते हैं कि साहब ऑपरेशन अब बहुत आसान हो गया है और बहुत सुरक्षित हो गया है। तो इससे पहले कि हमारे किसी श्रोता की कॉल हम तक आए, हम ये जानना चाहेंगे जो रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन आप लोग करते हैं
5: जी,
4: तो कौन सी वो परिस्थितियां होती हैं, कौन सी बीमारियां या कौन सी समस्याएं होती हैं जबकि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है।
5: रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हर एज ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट हैं
4: जी,
5: जैसे बच्चा है, एडल्ट है, या फिर ओल्ड एज पीपल हैं।
4: अच्छा,
5: इवन फीमेल में अलग प्रॉब्लम्स हैं।
4: अच्छा,
5: मेल्स में अलग प्रॉब्लम है। बच्चों में अगर हम देखें तो बहुत रेयर डिजीजेज होती हैं।
4: हाँ हाँ।
5: जैसे हमारी गर्दन का हिस्सा और सर के हिस्से के बीच की जो कनेक्शन लिंक होता है यहाँ पर जो दो हड्डियाँ होती
4: जी,
5: हैं
4: जी।
5: ये कभी कभी जन्मजात खराब होती हैं।
4: जन्मजात खराब होती है,
5: हाँ, वो सही से नहीं बनी।
4: अच्छा,
5: ठीक है।
4: हाँ हाँ।
5: तो इन वेजिल इन अगर आप साइंस में कहें तो वेजिलर इन्वेजिनेशन या फिर इन चीजों को कहते हैं, ठीक है। तो C1 C2 हमारा नॉर्मली सर्वाइकल को कहते हैं, उसके वजह से उसमें प्रॉब्लम होती है। या फिर कभी कभी सुना होगा ना रीढ़ की हड्डी से पानी आ रहा है।
4: हाँ।
5: कमर में गांठ है
4: जी, जी, जी।
5: रीढ़ की हड्डी, बच्चा पैदा हुआ और उसमें कमर में गांठ थी।
4: कई बार फोड़ा सा भी
5: जी, उसी फोड़े को कह रहा हूँ, गांठ या फोड़ा या जो भी, अगर पानी आ रहा है वहां से या कुछ कह रही है, माता जी कह रही है कि हमारे बच्चा जो अभी पैदा हुआ उसमें एक नीचे रीढ़ की हड्डी में गांठ है
4: जी, जी।
5: ये समस्याएं सब बच्चों में होती हैं।
4: हाँ।
5: दूसरा है जैसे कोई यंग है, मेल है, और उसकी जो है ना उसने कभी वजन उठा लिया सडनली।
4: हाँ।
5: बहुत ज्यादा
4: जी,
5: तो उसको डिस्क बाहर निकल आई,
4: कहते हैं चिक चली गई है
5: कहते
4: जी,
5: हैं
4: जी।
5: हाँ, तो वो एक समस्या है। फीमेल्स में अक्सर ये होता है जो लेडीज जो घर में काम कर रही हैं या फिर ज्यादा वजन उठा लिया उन्होंने कभी, उनके साथ भी ऐसी होता है। और ओल्ड एज पीपल में जैसे कहते हैं ना कि हड्डी बढ़ गई है
4: जी, जी।
5: ये एक बहुत कॉमन समस्या है, कहते हैं ना सर्वाइकल हो गया।
4: बिल्कुल,
5: ये सब समस्याएं होती हैं
4: जी, जी। एक एक करके हम आपसे जानेंगे डॉक्टर साहब। आपने बच्चों की बात की तो बच्चों के साथ जो समस्याएं होती हैं वो तो आपने बता दी, उन समस्याओं का इलाज क्या सिर्फ ऑपरेशन ही होता है?
5: हाँ, कुछ समस्याओं को जैसे अगर बहुत छोटी सी एक गैप है जिसके वजह से हल्की सी छोटी सी गांठ है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है कि हाँ वो अपने आप से कभी कभी बढ़ जाती है, बहुत छोटी सी है।
4: अच्छा अच्छा,
5: ठीक है। हल्के से किसी की रीढ़ की हड्डी में नीचे की तरफ बाल हैं और यह हड्डी पूरी तरीके से बनी नहीं है, स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, वो अक्सर पकड़ में भी नहीं आता, लेकिन कोई कहते हैं डिम्पलिंग हो रही है नीचे, एक हल्का सा गड्ढा है
4: जी,
5: गांठ नहीं आ रही, लेकिन बच्चे में कोई पैर में कोई ताकत सबसे ये पेशाब सही करता है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वक्त के साथ कुछ चीजें भर जाती हैं
4: जी, जी।
5: लेकिन कोई ऐसी गांठ है जो फूट गई।
4: अच्छा,
5: पानी रिसने लगा
4: जी,
5: तो वो तो इमरजेंसी है।
4: अच्छा, इमरजेंसी है
5: जी, इमरजेंसी है, क्योंकि हमारा दिमाग का पानी और रीढ़ की हड्डी का पानी एक ही होता है, वहां से इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, इसलिए वो इमरजेंसी है, वो ऑपरेट करना ही पड़ेगी।
4: डॉक्टर साहब किस तरह के लक्षण होते हैं अगर बच्चे को सपोज गांठ है और वो उसे समस्या आगे पैदा कर सकती
5: तो
4: है?
5: जो तो जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं नॉर्मली, तो उनमें तो यही होता है कि पैर वगैरह सब सही चल रहे हैं।
4: हाँ हाँ।
5: लेकिन माँ कह रही है कि पानी रिस रहा है।
4: अच्छा,
5: या गांठ दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है।
4: ओके,
5: ठीक है। या फिर वो दिमाग से कनेक्टेड होती है तो बच्चों में दिमाग में भी पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है।
4: अच्छा अच्छा,
5: ये समस्याएं होती हैं
4: जी। अगर इसका इलाज न कराया जाए तो क्या भविष्य में जाके बच्चे के
5: हाँ तो पैर
4: प्रभाव पड़ेगा,
5: पैर में परेशानी आना, पेशाब का रुक जाना, ये सब चीजें होती हैं,
4: ये हो सकती है
5: जी।
4: इसीलिए आपने इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया,
5: इमरजेंसी अगर वो फूट गई है पानी।
4: हाँ
5: जी,
4: कई बार ये शक होता है डॉक्टर साहब की रीढ़ की हड्डी पे अगर कोई फोड़ा आए और जैसा आपने कहा पानी निकल रहा है तो लोगों के मन में ये संदेह जाता है कहीं ये कैंसर तो नहीं, क्या ये भी संभव?
5: नहीं, नॉर्मली न्यूबॉर्न बच्चों में नहीं होता।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:31 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय है दोस्तों, दूरबीन विधि से रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन, शंकाएं व समाधान। आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शकील अहमद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल, दीदीपुरम बरेली।

0: उसको मेनिंगोसील, मेनिंगोमेलोसील, ये सब चीज़ें कहते हैं कि एक नस की गांठ बाहर है,
1: अच्छा
0: कैंसर जैसी चीज़ नहीं होती वो।
1: जी, अगर दूरबीन विधि से हम ऑपरेशन की बात आपसे जानना
0: ये तो
1: चाहें।
0: इन बच्चों में नहीं करते हैं, हम बड़े
1: अच्छा,
0: बड़े लोगों में करते हैं जिनमें स्पेशली डिस्क है
1: हाँ,
0: उनमें करते हैं, या फिर दूरबीन विधि से हमें कभी लगा कि हमें स्क्रू वगैरह डालने हैं,
1: जी
0: पेंच डालने, हड्डियाँ बहुत ख़राब हैं, टेढ़ी हो गई हैं, या फिर किसी को चोट लग गई और
1: जी
0: हड्डी चटक गई, तो भी हम दूरबीन विधि से कर सकते हैं ऑपरेशन।
1: लेकिन छोटे बच्चों में दूरबीन विधि से या किसी
0: नहीं
1: तरह
0: नहीं
1: के
0: बच्चों,
1: ऑपरेशन की
0: वो तो
1: जरूरत
0: उसमें
1: नहीं।
0: गांठ की, मतलब ऑपरेशन में तो गांठ निकालनी है,
1: अच्छा
0: वो एक अलग
1: अच्छा
0: समस्या है।
1: जी। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों में जो समस्या देखने में आ रही है कि पैर में दर्द की समस्या होती है और कई बार वो दर्द चलता फिरता है और आम भाषा में उसे रेंगना कह देते हैं,
0: जी, उसे कहते हैं शियाटिका भी कहते हैं लोगों लोग
1: शियाटिका।
0: कुछ कहते
1: जी
0: हैं, तो बिल्कुल एक ऐसे जैसे बल्ब जैसे की तरह है,
1: जी
0: जी
1: जी
0: बल्ब जल रहा है, अब कोई कह रहा है बल्ब खराब है, अब मैं कह रहा हूँ बल्ब नहीं खराब है,
1: जी
0: बल्ब सही है,
1: हाँ
0: स्विच खराब है,
1: जी जी
0: तब
1: जी
0: भी तो बल्ब नहीं जलेगा,
1: स्पष्ट कीजिए डॉक्टर साहब,
0: तो
1: बल्ब और
0: इसको
1: स्विच का
0: तो ये
1: कनेक्शन।
0: मतलब बिल्कुल कनेक्शन ऐसा है जैसे कह रहा कोई मेरे पैर में दर्द है,
1: जी
0: तो आप पैर का क्यों नहीं ऑपरेशन कर रहे हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: मैं कह रहा हूँ रीढ़ की हड्डी से नस आ रही है, वो नस दबी हुई है, इसलिए पैर में परेशानी हो रही है,
1: ओहो,
0: तो बल्ब समझ लीजिए आप पैर है आपका,
1: और स्विच जो है वो
0: स्विच है वो
1: रीढ़ की
0: नस,
1: हड्डी
0: रीढ़
1: है।
0: की हड्डी है,
1: जी
0: तो अगर कोई कहे कि बल्ब खराब है, मैं कह रहा हूँ बल्ब सही है आपका,
1: जी
0: लेकिन स्विच खराब है,
1: जी
0: तो स्विच का ऑपरेशन, स्विच को बदलना पड़ेगा ना,
1: जी जी
0: तभी
1: जी
0: तो बल्ब जलेगा, ये
1: यानी
0: नहीं हुआ।
1: दर्द भले ही पैर में हो लेकिन
0: हाँ,
1: उसका
0: तो कभी
1: कनेक्शन
0: कभी
1: रीढ़ की हड्डी
0: कनेक्ट,
1: से है।
0: कभी ना कभी कनेक्शन रीढ़ की हड्डी से हो सकता है,
1: जी
0: नसें नॉर्मली हमारी रीढ़ की हड्डी से आती हैं सारी,
1: जी
0: ठीक है, तो सारी नसें वहाँ से आती हैं, तो सारा करंट भी वहीं से आ रहा है,
1: जी
0: अगर वहाँ पर कोई परेशानी है, कोई नस दब रही है, तब भी पैर में ताकत ना आना,
1: और
0: ये सब चीज़ हो, दर्द
1: दर्द भी रह
0: होना,
1: सकता है।
0: रेंगना, जो कहते हैं आम भाषा में, गाँव की भाषा में कहते हैं सियाटिका हो गया,
1: जी,
0: या रेंग रहा है नस दवा,
1: हाँ
0: या बैठने परेशानी हो रही है,
1: जी।
0: ये सब परेशानियाँ होती हैं।
1: क्या पैर छोटा भी हो सकता है, सूख भी सकता है, ऐसी भी कंडीशन बन
0: अगर
1: जाती
0: बहुत
1: है,
0: लंबे समय तक रहेगी तब।
1: तब ये कंडीशन भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, L4 L5 ये बड़े प्रचलित शब्द
0: हाँ,
1: हैं।
0: क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो मतलब साइंस ने अपने अपने डिफाइन कर रखी हैं
1: जी
0: हड्डियाँ, जैसे
1: जी
0: हमारी गर्दन में 7 हड्डी होती हैं,
1: हाँ
0: हमारी ऊपर की जो बैक है, अपर बैक कहते हैं इसे,
1: हाँ
0: तो वो उसमें 12 हड्डियाँ होती हैं, थोरेसिक रीजन कहते हैं,
1: जी
0: फिर लंबर स्पाइन में 5 हड्डियाँ होती हैं, जो हमारा पेट वाला हिस्सा होता है
1: हाँ
0: उसके पीछे हड्डियाँ, वो
1: अच्छा,
0: 5 होती हैं, ठीक है,
1: इसीलिए उन्हें L कहा जाता है।
0: हाँ उसे लंबर कहा जाता है, और लंबर की 5 हड्डियाँ होती हैं, L1 L2 L3 4 एंड 5।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो ये जो समस्या आती है रीढ़ की हड्डी की विशेष तौर से, ये आप बता रहे हैं कि स्विच वहाँ पे होता है,
0: हाँ, मतलब समझाने, आम भाषा में
1: जी
0: समझाने की
1: बिल्कुल
0: बात
1: सही
0: है
1: बात है,
0: जी, आम
1: लेकिन
0: लोगों को
1: थोड़ा और
0: समस्या,
1: स्पष्ट कीजिए डॉक्टर साहब कि ये
0: हाँ
1: 5 हड्डियां आपने जो बताई हैं, इनमें ऐसा क्या हो जाता है जो कि दर्द पैर में पहुंच
0: असल
1: जाता
0: में
1: है।
0: जैसे आप अभी चेयर पे बैठे हो,
1: जी
0: तो आप समझिए आपका वजन कहाँ पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है,
1: नेचुरली कमर पे।
0: कमर पे पड़ रहा है, क्योंकि
1: जी
0: पैर तो आपके जमीन पर टिके हुए हैं,
1: जी जी
0: आपका ये वाला सब फ्री है, तो ऊपर का जितना भी लोड है वो आपके कमर
1: कमर
0: पे आ
1: पे।
0: रहा है,
1: जी
0: तो कमर का सबसे वीक एरिया होता है L4 L5।
1: ओहो अच्छा
0: हाँ, तो जो आपकी बॉडी पूरी इकट्ठी हो रही है वहाँ पर टर्निंग पॉइंट है,
1: जी
0: जहाँ पर सारा लोड आ रहा है, तो
1: अच्छा
0: अक्सर बहुत ज़्यादा सिटिंग पोजीशन, तो अक्सर यही पेन होता है लोगों को, या फिर बहुत हमने वज़न उठा लिया एकदम, तो
1: जी
0: L5 या L4 एक, और उसके जो डिस्क होती है उसके आसपास पैरा सेंट्रल एरिया कहते हैं, बीचों बीच नहीं,
1: जी
0: उसको बीच से थोड़ा सा हटा हुआ एरिया, वो वीक होता है,
1: अच्छा
0: मतलब अगर पूरे एरिया को 360 डिग्री को अगर कंपेयर करें तो
1: हाँ
0: वो एरिया सबसे वीक होता है, इसीलिए वहां
1: जी
0: से डिस्क तुरंत निकल जाती है।
1: अच्छा, ज्यादा मूवमेंट में रहने की वजह से वीक होता है डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर हम शरीर को
0: नहीं
1: घुमाते हैं दाएं
0: नहीं
1: बाएं घूमें,
0: मूवमेंट की
1: हाँ,
0: वजह से नहीं, जब हम
1: या एक पोजीशन में रहने की वजह
0: ज्यादा
1: से
0: लोड हमारे ऊपर पड़े,
1: लोड ज्यादा पड़ रहा
0: एक्सियल
1: है।
0: लोडिंग ज्यादा पड़े, या वजन उठा लें, या हमारी बॉडी ऑलरेडी कुछ कैल्शियम कम हो, कुछ भी कम हो, या फिर हमने वजन बहुत ज्यादा उठा लिया, अपनी
1: अच्छा
0: ताकत से ज्यादा उठा लिया, बहुत देर तक सिटिंग होती है किसी के पीछे, उन लोगों में होता है, या फिर फीमेल्स हैं जिनमें कैल्शियम कम है,
1: जी
0: वीक है बोन, ऐसी चीजों में,
1: अच्छा,
0: मांसपेशियां कमजोर है उनमें ज्यादा होता है,
1: डिस्क स्लिप भी
0: स्लिप
1: कहा
0: डिस्क
1: जाता है
0: उसी
1: इसे,
0: को
1: स्लिप
0: कहते हैं,
1: डिस्क,
0: स्लिप डिस्क, अपनी जगह से स्लिप हो जाना,
1: ये डिस्क होती है कोई वहां पे
0: डिस्क
1: सर।
0: होती है
1: अच्छा,
0: जी,
1: डिस्क की लोकेशन L4 L5 के आसपास होती है, कहाँ पे
0: नहीं नहीं
1: होती है वो?
0: सारी हर हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है, वो
1: जी
0: सब मजबूत होती है, अगर कंपैरिजन करें सबको,
1: अच्छा
0: L4 L5 की उन उन हड्डियों के बीच में जो डिस्क है उससे थोड़ी सी कमजोर होती है, इसे समझाने की बात है। ये
1: अच्छा वो स्लिप कैसे होती है सर?
0: स्लिप का मतलब हुआ जो उसके अंदर मांस वाला एरिया होता है, उसके
1: जी
0: सब फाइबर होते हैं चारों तरफ, जो
1: हाँ
0: फाइबर टूट जाते हैं तो जो मांस वाला एरिया वो बाहर निकल आता है,
1: ओहो
0: और वो
1: अच्छा
0: नसों का दबाता है
1: जी।
0: जी,
1: ऑपरेशन की बात आती है सर, अब हम ऑपरेशन के

0: विषय में आपसे विस्तार से जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी L4 L5 आप बता रहे हैं और जिससे पैर का दर्द जुड़ा होता है,
1: जी
0: जिसे आप शियाटिका कह रहे हैं, तो उसमें ऑपरेशन को लेकर लोगों में बड़े भ्रम हैं। सच्चाई क्या है? क्या वाकई में ऑपरेशन जरूरी होता है इसका? अगर जरूरी होता है तो कब, कौन सी परिस्थितियों में?
1: अगर पैर में बहुत कमजोरी है, अगर हमने दवाइयाँ दी और 21 दिन 1 महीने में ठीक नहीं हो रहा,
0: हाँ
1: या फिर जो एरिया होता है वो बहुत कम रह गया, जैसे दरवाज़ा है, आपको सिंपल भाषा में समझ लीजिए,
0: जी
1: जैसे ये दरवाज़ा है,
0: जी
1: गेट है
0: हाँ,
1: आपके, इस दरवाजे से कैसे निकलेंगे आप?
0: नेचुरली निकलने लायक जगह हो वहाँ
1: तब आप दरवाजा खुलेगा तभी निकल
0: तभी
1: पाओगे।
0: निकल पाएंगे। जी
1: अब दरवाजा आपका 100% खुल रहा है
0: जी
1: तो आप निकल गए,
0: बिल्कुल,
1: 50% निकलेगा तब भी आप थोड़ा सा
0: दाएं बाएं करके
1: दाएं बाएं करके
0: निकलेंगे।
1: निकलेंगे,
0: जी
1: लेकिन कमजोरी परेशानी है।
0: जी जी
1: अब मैं कहूँ 90% बंद है
0: तो निकलना असंभव है,
1: तो कैसे निकलेंगे आप?
0: तो संभव नहीं है निकलना
1: तो फिर क्या करेंगे आप? तो दरवाजे की रिपेयरिंग होगी,
0: बिल्कुल।
1: खींचा जाएगा उसे, हैमरिंग
0: जी
1: होगी,
0: जी जी
1: तभी वो लूज होगा।
0: अच्छा
1: वही चक्कर नसों का होता है, नस एक दरवाजे में के अंदर फंसी हुई है, आप उस
0: जी
1: दरवाजे को रिपेयर करेंगे तो खुल जाएगी नस, सिंपल है
0: जी इसलिए ऑपरेशन की जरूरत होती
1: जी।
0: है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब दूरबीन विधि तो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन समस्याएं तो पहले भी रही होंगी लोगों को तो।
1: हाँ, दूरबीन विधि के नॉर्मली हम बहुत सारी अदर सर्जरीज में अभी तक करने लगे,
0: जी
1: स्पाइन में करते हैं,
0: हाँ
1: लेकिन रिसेंट एडवांसेस में बहुत ज़्यादा हम अपग्रेड हो गए हैं अब साइंस में।
0: अच्छा
1: जैसे हम, आपने सुना होगा, दूरबीन विधि से द्वारा पित्ते का ऑपरेशन
0: जी
1: सभी करते हैं,
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: कॉमन है, ठीक है, या दूरबीन विधि द्वारा पथरी का ऑपरेशन,
0: जी
1: रीनल पथरी, रीनल स्टोन है
0: गुर्दे
1: और
0: के
1: गुर्दे की
0: अंदर
1: पथरी
0: जी
1: है,
0: जी
1: ठीक है, उसमें करते हैं। अब स्पाइन का भी करते हैं,
0: जी
1: स्पाइन के भी अब जो है ना फोर्थ जनरेशन कहते हैं, एडवांस एंडोस्कोपी आ गई, तो
0: अच्छा
1: उसमें क्या करते हैं कि दो हल्के हल्के 4 mm, 4 mm समझते हो आप, 1 cm का आधे से भी
0: जी
1: कम,
0: जी जी
1: उतना छोटा इंसीजन, उस इंसीजन से एक हमने ट्यूब बराबर एक स्कोप डालते हैं और दूरबीन से देख लेते हैं, बहुत बड़े पर्दे पे दिखती है,
0: बॉडी के अंदर डाल देते हैं।
1: बॉन्डर स्पाइन में डाल दिया आपने,
0: अच्छा
1: पेशेंट को लिटा के उस पर स्पाइन में बेहोशी की हालत में एक कैमरा डाल दिया, कैमरे से हमने देख लिया कहाँ परेशानी है, उस परेशानी को हम डायरेक्टली डील कर देते हैं।
0: अच्छा
1: पहले क्या करते थे कि हम पहले पूरा, अब रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, पूरा चीरा देते थे,
0: जी
1: फिर देखते थे कहाँ समस्या है
0: फिर उसे
1: वो
0: ठीक
1: हमें,
0: करते थे
1: हाँ फिर हम उसे ठीक कर देते, बड़े
0: जी।
1: चीरे देने पड़ते थे। अब उसी चीज़ को एक साइंस ने कैमरे के द्वारा चूज कर लिया कि
0: जी
1: कैमरा आपने देख लिया और कैमरे से ढूंढी वो समस्या क्या है, आपने पहले जो इमेजिंग करा रखी है, जो
0: जी
1: पहले आपके एक्सरे या जो भी MRI हो चुकी है, उससे हम कोरिलेट करते हैं, नापते हैं और देखते हैं, तो उस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, ये भी कहते हैं आप लोग कि रीढ़ की हड्डी के अंदर की जो डिस्क है या जो मास है वो बढ़ जाता है, तो क्या उसे काट के निकालना होता
1: मास
0: है,
1: बढ़ना,
0: कैसे?
1: वही मैंने बताया ना, डिस्क स्लिप हो गई, उसी
0: अच्छा
1: को कह रहे हैं लोग मास बढ़ना,
0: अच्छा तो उसे काट के निकालते हैं या फिर उसे अपनी जगह फिट करते हैं,
1: फिट
0: कैसे?
1: नहीं
0: हाँ
1: करते हैं, निकाल देते हैं क्योंकि वो लूज हो जाती
0: अच्छा,
1: है
0: उसको
1: जी।
0: निकाल देते हैं और वो फिर 4 mm के चीरे से या छेद से कैसे संभव हो पाता है डॉक्टर
1: तो
0: साहब?
1: पीस बाई पीस निकालते हैं
0: अच्छा छोटे
1: जी,
0: छोटे पीस करके
1: पीस के
0: निकाल
1: निकाल रहे
0: देते
1: हैं
0: हैं।
1: जी।
0: ये ऑपरेशन कितना सुरक्षित है दूरबीन विधि से, जो रीढ़ के ऑपरेशन की बात आप
1: अब
0: कर रहे हैं?
1: बिल्कुल ऐसे है, समझ लीजिए आप, मैं मतलब लोग आम भाषा में समझते नहीं है कि ऑपरेशन है तो डरते
0: जी
1: हैं, यूजुअल है, डरना सबको है, लेकिन अगर आप नहीं कराएंगे तो समस्या ज़्यादा है।
0: बिल्कुल
1: तो आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आप जो काम कराने जा रहे हैं उसके बेनिफिट कितने हैं और ना कराने से लॉस कितना है।
0: जी
1: तो सिंपल भाषा यही है कि आपको, अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दबी हुई है, आपका पैर कमज़ोर हो जाएगा, ये समस्या ज़्यादा बड़ी है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: अगर कोई कहे कि मैं छोटे से चीरे, 4 mm के चीरे से आपकी वो डिस्क निकाल दूंगा और आप चलने लगोगे, ठीक है, तो बिल्कुल इजी वे है, वो कराना
0: अच्छा
1: चाहिए,
0: अच्छा सुरक्षित है, मतलब हम ये
1: सुरक्षित
0: कह
1: है।
0: सकते हैं। अच्छा ये ऑपरेशन होने के बाद जो पैर के दर्द की समस्या की जो जगह आपने बताई है L4 L5, उसके बाद जो व्यक्ति का जीवन है वो क्या सामान्य हो जाता
1: नॉर्मल
0: है?
1: चलते हैं,
0: दौड़ सकते हैं, अपना काम कर
1: दौड़
0: सकते
1: सकते हैं,
0: हैं,
1: अपना काम कर सकते हैं,
0: वजन
1: आप
0: उठा सकते
1: अपना
0: हैं?
1: वजन देखिए, फिर वही बात आई, अगर आप चाहोगे ना कि मैं बहुत पावरफुल बन जाऊंगा सर्जरी कराने के बाद,
0: जी
1: तो ऐसा नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: भगवान जैसा कोई नहीं बन सकता इस दुनिया
0: बिल्कुल
1: में,
0: बिल्कुल
1: कुछ तो कमी रह जाएगी,
0: जी
1: तो आपकी जो समस्या है उससे आप बेहतर हो जाओगे।
0: जी
1: लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं ऑपरेशन करके कल मैं जिम में जाकर लड़ने लगूंगा, मेरे
0: ये
1: अंदर बहुत ताकत आ
0: संभव
1: जाएगी, ये
0: है
1: कैसे हो
0: जी जी
1: सकता है,
0: जी
1: क्योंकि आप तो पहले भी नहीं लड़ते थे ना,
0: जी
1: तो आप कैसे लड़ने लगोगे? एक एक रेसलर है, वो अपने एक ट्रेनिंग है, उसे ट्रेनिंग मिली है, उसको कुछ समस्या आ गई तो अपना नॉर्मल, जो आप अब भी काम कर रहे थे
0: जी
1: ऑपरेशन से पहले, आप वो सारे काम दोबारा कर सकते हो,
0: जी
1: ये है कहने का मतलब।

0: लेकिन कोई का ये नहीं कह सकता कि मैं घर पर अभी इतना बैठ रहता था, ऑपरेशन करने के बाद अब मैं WWE लड़ लूंगा,
1: नहीं वो तो
0: ऐसे तो नहीं
1: डॉक्टर साहब,
0: पॉसिबल।
1: ये तो एक अब बात वाली बात होगी डॉक्टर साहब।
0: हाँ
1: जी,
0: समझाने वाली
1: बिल्कुल
0: बात हो गई।
1: बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये और बताइएगा, वो कौन से लक्षण व्यक्ति में आने लगते हैं, क्योंकि पैर का दर्द कई बार होता है, जो सियाटिका या हम रेगना
0: जी
1: की बात कर रहे हैं, तो
0: हाँ
1: अपने आप ठीक भी हो जाता है, वो
0: हाँ
1: कौन से लक्षण होते हैं जबकि ऑपरेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है।
0: हाँ जैसे मैंने बताया ना कि आपका परेशानी जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है डे बाई डे,
1: जी
0: और बहुत सीवियर है। जब आपके MRI कराई तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है,
1: जी
0: ठीक है, और उसमें इतना नर्व कंप्रेशन है कि वो स्वेलिंग की, हम जो दवाई देते हैं स्वेलिंग कम होने की, उसके बाद भी नहीं जा रही वो,
1: तब
0: तो
1: ऑपरेशन
0: ऑपरेशन
1: को।
0: कराना ज़रूरी ही है।
1: जी,
0: जी
1: अच्छा कौन कौन सी जांचें हैं जिनसे आप ये तय करते हैं कि ऑपरेशन वाकई में
0: नॉर्मली
1: होना चाहिए?
0: देखिए कभी भी CT स्कैन वगैरह कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो हम बोन देख पाते हैं, क्योंकि रेडिएशन जो है वो बोन के बारे में बताता है।
1: अच्छा
0: जैसे हम कोई भी एक्सरे करते हैं
1: जी,
0: स्पाइन का, तो
1: हाँ
0: हमें हड्डी जिसके जितनी है
1: वो दिख
0: स्पाइन की वो
1: जाती
0: सब
1: है।
0: दिख जाती हैं,
1: हाँ
0: और उस पास की स्ट्रक्चर दिख जाती हैं,
1: जी
0: लेकिन एग्जैक्टली डिस्क कितनी है,
1: जी
0: वो कितना दबा रही है, नसें कितनी कमज़ोर है, नसें कितनी दब रही हैं,
1: हाँ
0: कितनी अपनी जगह से हटी हुई हैं,
1: जी
0: वो सब हमें MRI पे पता चलती है।
1: अच्छा, MRI की जांच से आप ये तय कर पाते हैं कि परिस्थितियां क्या हैं, ऑपरेशन की कब आवश्यकता
0: जी
1: है। अच्छा ये भी है डॉक्टर साहब, चूंकि युवावस्था में भी ये समस्या होने लगी है, तो
0: बहुत कॉमन है
1: बुजुर्गों में भी होती है।
0: बुजुर्गों में, ज्यादा कॉमन इसलिए होती है क्योंकि कमजोर होती हैं हड्डियां।
1: अच्छा इसलिए हो जाती है।
0: हाँ डे बाय डे तो उम्र बढ़ेगी ना सबकी,
1: जी,
0: तो कमजोर भी होगी चीजें।
1: कहते हैं कि बैठने की आदतें या काम करने की जो हमारी आदतें हैं वो भी बहुत कुछ जिम्मेदार हैं इस तरह की
0: हाँ अगर आप
1: समस्याओं के लिए।
0: लॉन्ग
1: हाँ
0: स्टैंडिंग सिटिंग पोजीशन है आपकी, तो
1: हाँ
0: आपको परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगी,
1: अच्छा
0: तो हमेशा आप सपोर्ट के साथ बैठिए,
1: जी
0: जैसे आप चेयर पे बैठिए,
1: जी अच्छा
0: स्टूल का कम से कम यूज़ करिए। करेंगे एक ही ग्रुप को,
1: जी
0: ऐसा नहीं हम रेसलर को कंपेयर कर रहे हैं, एक ही ग्रुप को अगर कंपेयर करेंगे तो मेल की तुलना में फीमेल में वोन ज़्यादा वीक होती हैं,
1: अच्छा
0: कैल्शियम की कमी हुई है,
1: जी
0: हार्मोनल इम्बेलेंसेज होते हैं
1: ओहो
0: फीमेल्स में,
1: जी
0: इसलिए होता है।
1: जी तो महिलाओं में भी ऑपरेशन उतना ही सफल है जितना पुरुषों में सफल
0: हाँ
1: है।
0: ऑब्वियसली
1: जी
0: उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि बुजुर्गों में अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो वहाँ क्या परिस्थितियाँ होती हैं?
0: दो तरीके हैं लाइफ जीने के,
1: जी
0: एक तरीका ये है कि आप पेनफुल लाइफ जीए,
1: जी
0: आपको दर्द हो रहा है आप
1: जी
0: पेन के साथ जीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
1: जी सामान उठाना है,
0: जी
1: एकदम से झुकने के बाद उठ नहीं पाते हैं सीधे।
0: हाँ, तो नॉर्मली जो होते हैं फीमेल्स में, जैसे आपने बोला ना आप कैंसर सर्वाइवर हो, किस टाइप का कैंसर था आपको पहले कुछ जान सकते हैं?
1: स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरे को कैंसर रह चुका है।
0: आपकी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी कुछ चली है? कीमो रेडिएशन कुछ लिया है आपने, कुछ सिकाई वगैरह दवाई वगैरह कुछ चली है आपकी?
1: हॉट वाटर बैग की शिकाई करी
0: नहीं, आपको
1: या
0: कोई
1: मतलब
0: कीमो रेडिएशन कुछ चली है?
1: हाँ, वो तो पूरा प्रोसेस हुआ
0: पूरा
1: है,
0: प्रोसेस हुआ है।
1: मतलब कैंसर आप ये समझ लीजिए 2012 में था मेरे को।
0: आप
1: हाँ
0: बिल्कुल कोई भी लक्षण नहीं है उसके, हेल्दी?
1: अब नहीं है, अब एक्चुअली अब उसका कोई भी नहीं है लक्षण।
0: अच्छा आप हेल्दी हैं। तो मेनली जो है मैकेनिकल बैक पेन होते हैं, मैकेनिकल बैक पेन का मतलब जो आप वर्क कर रहे हो ना उसके वजह से जो मांसपेशियां अकड़ गई उसके वजह से दर्द होता है, लेकिन एज आप जैसा कह रहे हो उसके वजह से एक स्क्रीनिंग आपको कराना ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ कि अगर आपको बार बार हो रहा है तो बेटर ये है चाहे एक्सरे करा लीजिए या फिर एक डॉक्टर को जो भी आपके नियर बाई उनको दिखा लीजिए, दिखाना मेरे हिसाब से आपको बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, डिफरेंट टाइप की हैं, तो बेटर है कि आप इवेल्यूएट करा लीजिए कि कोई ऐसी इन चीज नहीं। नॉर्मली मैकेनिकल बैक पेन ही होते हैं फीमेल्स में, जो यूजली घर पे काम करते रहते हैं, कोई जगह कुछ उठा लिया या फिर नीचे झुक गए, बकेट उठा ली भरी हुई, ये सब चीज़ समस्याएं लगी रहती हैं। अगर वो ठीक हो जाती हैं इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है बार बार हो रही है, बढ़ रही है, पैरों में झंझनाहट बहुत ज़्यादा है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, तो बेटर है कि आप उसको इवेल्यूएट करा लें, जो भी आपके डॉक्टर एडवाइस करें। ठीक है,
1: जी,
0: ओके।
1: धन्यवाद कॉल करने के लिए डॉक्टर साहब। अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, जैसा आपने भी स्वीकार किया हमारे श्रोता की समस्या भी थी,
0: जी
1: और उन्हीं परिस्थितियों के बीच में कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी कही जाती है।
0: हाँ
1: हमारे समाज में डायबिटीज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, डायबिटीज़ की समस्या है, वहीं हृदय की बीमारियाँ भी होती हैं, वहीं थायराइड के बहुत मरीज़ हैं।
0: जी
1: तो इस तरह के जो लोग हैं, अगर इन्हें कोई जो L4 L5 की समस्या हो या फिर रीढ़ की हड्डी की कोई समस्या हो, तो क्या इन लोगों के ऑपरेशन भी आप दूरबीन
0: हाँ
1: विधि से सफलतापूर्वक
0: जी
1: कर लेते हैं?
0: करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
1: जी
0: डायबिटीज़ के पेशेंट को

0: तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दूरबीन विधि से ही करिए,
1: अच्छा
0: क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं।
1: जी,
0: तो वो जरूरी है कि आप उसको दूरबीन विधि से, अगर संभव है तो आप दूरबीन विधि से करिए।
1: अच्छा
0: छोटे चीरे होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, पेशेंट सेकेंड डे थर्ड डे घर जा सकता है,
1: जी
0: ईजी हो सकता है, ये है सबसे।
1: अच्छा, रीढ़ की हड्डी का मामला है, रीढ़ की हड्डी का अगर ऑपरेशन होगा भले ही दूरबीन विधि से हो डॉक्टर साहब, तो क्या सलाह रहती है आपकी, कितना समय अस्पताल में देना पड़ता है मरीज को?
0: नॉर्मली 1 से 2 दिन
1: एक
0: छुट्टी
1: से
0: कर देते
1: दो
0: हैं।
1: दिन
0: छुट्टी कर देते हैं सेकंड डे।
1: अच्छा, छुट्टी के बाद आदमी अपने काम पे या अपने रूटीन पे कब कितने दिन में वापस हो जाता
0: आप
1: है?
0: नेक्स्ट डे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
1: ये तो डॉक्टर साहब जादू वाली बात है कि
0: हाँ, तो
1: ऑपरेशन
0: जैसे
1: में।
0: आप, जैसे रूटीन सर्जरीज हो गई हैं,
1: हाँ
0: रूटीन सर्जरी जैसे लैब कोली करते हैं,
1: जी
0: कुछ लोग कहते थे पहले करते थे कि 10 दिन वेट करते थे,
1: जी
0: आपको लैब कोली करने के बाद आप सेकेंड डे थर्ड डे वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसी
1: अच्छा
0: स्पाइन की सर्जरी अगर छोटी मोटी डिस्क है या फिर आपको बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है और
1: हाँ
0: आपने सिर्फ डिस्केक्टमी करी है, डिस्क निकाली है, तो
1: जी
0: आप नॉर्मली सेकेंड डे वॉक कर सकते हो, सेकेंड डे ही आप स्टेप्स चढ़ सकते हो, उतर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं होती है।
1: जी
0: अगर आपकी हड्डियों में ज़्यादा परेशानी है तो हार्डली आपको 7-8 डेज आपको लगते हैं, नॉर्मली आप रूटीन वर्क सारे कर सकते हो।
1: जी
0: इवन रोगी की हड्डियाँ टूट जाती हैं गिरने के बाद,
1: हाँ,
0: तो हम सेकेंड डे चला देते हैं पेशेंट को ऑपरेशन करने के बाद,
1: सेकंड डे चला देते हैं
0: 12 घंटे 24 घंटे के अंदर वॉक
1: जी।
0: करा सकते हैं। ये हड्डियाँ बिल्कुल वैसी थी पहले भी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी और अदर सर्जरीज भी हैं, जब हम नी ट्रांसप्लांट करते हैं, लोग करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी ना, जो
1: जी
0: हमारे कलीग्स हैं,
1: हाँ,
0: और हिप ट्रांसप्लांट करते हैं, दे आर ऑल्सो सेइंग दैट कि हम सेकेंड डे थर्ड डे नी ट्रांसप्लांट में भी खड़ा कर देते हैं पेशेंट को,
1: अच्छा
0: पूरा घुटना बदल दिया, आपको सेकेंड डे चला सकते हैं। तो ऐसे ही स्पाइन का भी है, अगर
1: अच्छा
0: स्पाइन में आपने इम्प्लांट भी डाले तो आप थर्ड सेकेंड डे पेशेंट को खड़ा कर देते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, टीबी स्पेन हो जाती है, हड्डियां गल जाती हैं, आपने स्क्रू डाले, ठीक है,
1: हाँ
0: आप सेकंड डे खड़ा कर दीजिए पेशेंट को, चल देता है,
1: अच्छा,
0: सब कुछ सही रहता है
1: ये
0: तब।
1: चिकित्सा विज्ञान की आधुनिक उपलब्धि ही कहेंगे हम, कि
0: जी
1: एक ऑपरेशन होने के बाद और आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि सेकंड डे थर्ड डे जो है वो चला देते हैं मरीज को,
0: हाँ, अगर
1: किसी
0: थर्ड
1: तरह
0: डे
1: की कोई बेल्ट
0: थर्ड
1: पट्टी नहीं बांधते कमर में डॉक्टर साहब?
0: नहीं, वो सपोर्ट के लिए रहती, क्योंकि
1: अच्छा
0: असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बैक, उसको सर्जरी की प्रॉब्लम है,
1: हाँ
0: जब हम ऑपरेट करते हैं तो वो मसल्स स्पाज में होती हैं, टाइट होती हैं,
1: बिल्कुल
0: पेन होता है पेशेंट को,
1: जी,
0: तो उसकी सपोर्ट के लिए बेल्ट है या कुछ भी एडवाइस है वो दे देते हैं।
1: दवाइयाँ कितने दिन तक खानी होती हैं एक
0: दवाइयाँ तो
1: सर्जरी
0: आपके
1: के
0: जो भी
1: बाद?
0: इन्फेक्शन के लिए, प्रोटीन इन्फेक्शन के लिए 7 से 10 दिन
1: जी
0: आपको इन्फेक्शन के लिए, डायबिटीज का पेशेंट है तो ज़्यादा देर तक, जब तक तो स्टिच नहीं निकलते हैं, नॉर्मली 8 to 10 डेज में हम स्टिच भी निकाल देते हैं। जी
1: अच्छा सर, आजकल मोटापा भी बहुत बड़ी समस्या है और मोटापे की वजह से लोगों का वजन बढ़ जाता है, ये बात तो आपसे करेंगे, लेकिन एक श्रोता और लाइन पर इनकी बात सुन लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताइए, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, नेटवर्किंग एरर उसकी वजह से हमारी आवाज इन तक नहीं पहुंच पा रही,
0: भार ज्यादा बढ़ेगा तो बीम ज्यादा
1: नेचुरली परेशानी बढ़ेगी सर
0: सिंपल है।
1: जी, दबाव बढ़ेगा
0: हाँ, इसको लोग बहुत पता नहीं, बड़ा मुश्किलों से समझाते हैं, आप समझ लीजिए एक बीम है और बीम के ऊपर पूरी छत रुकी हुई है,
1: जी,
0: आप इसको आप लोड और बढ़ा दीजिए,
1: बढ़ाते ही जा रहे हैं
0: बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो बीम कमजोर होगा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही हमारा स्पाइन का है प्रॉब्लम, स्पाइन की समस्या है कि जैसे जैसे इस पर लोड बढ़ेगा वैसे वैसे समस्याएं बढ़ेंगी।
1: जी। अब डॉक्टर साहब ये और बताइएगा, क्या खास सुझाव है आपका उन लोगों के लिए जिनको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होती है, किस तरह से अपनी दिनचर्या रखें, क्या क्या खास बातें ध्यान रखें ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख पाए, क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: स्वस्थ रखने का तो ये है कि आप वजन नहीं उठाइए ज़्यादातर, सपोर्ट के साथ उठाइए,
1: जी
0: जब भी अगर आप जिम में काम कर रहे हैं तो आप हमेशा बेल्ट पहनिए, लेडीज़ में कैल्शियम कम होता है तो वो अपने सप्लीमेंट ले जाते हैं, आपने हाइपोथायराइड की बात करी तो थायराइड के पेशेंट जब थायरॉक्सिन लेते हैं तब
1: जी
0: भी बॉडी में कैल्शियम कम होता है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं, आप
1: हाँ
0: जब भी बैठे तो सपोर्ट के साथ बैठे, सडनली
1: अच्छा
0: कोई चीज़ को, बड़ी चीज़ को मत उठा लीजिए, भरा हुआ सिलेंडर उठा लिया, बहुत बड़ी बकेट उठा ली किसी ने बारी,
1: जी
0: जो
1: जी
0: रूटीन फीमेल्स में मिलता है, या फिर बहुत ज़्यादा किसी ने वजन उठा लिया एक साथ, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, जब भी समय थोड़ा सा अगर आपको परेशानी नहीं है तो आप हेल्प लेके उठाइए,
1: अच्छा
0: ठीक है। और जो पेशेंट दिखा रहे हैं डॉक्टर को और डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमारे यहाँ मिथ है सोसाइटी में कि, और ऑपरेशन जैसे आपने भी पहले कहा था कि आप ऑपरेशन कराएंगे तो चलेंगे नहीं,
1: जी
0: तो अगर ठीक है, अगर कोई कहे कि ऑपरेशन कराएंगे नहीं तो चलेंगे नहीं,
1: जी
0: बिना ऑपरेशन कराए भी तो नहीं चल पा रहे हो आप,
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो
0: तो
1: ये
0: फिर
1: है
0: उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा?
1: जी,
0: अगर कोई सोसाइटी में कह रहा है ऑपरेशन कराओगे तो नहीं चलोगे, तो
1: जी
0: सोसाइटी में तो ये भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अगर नहीं कराओगे और नहीं चल पाए
1: जी
0: तब भी तो कोई जिम्मेदारी लेगा।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, खान पान के विषय में भी ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का खान पान होना चाहिए।

0: खान-पान में, स्पाइन की समस्या में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मली बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है स्मोकिंग।
1: जी अच्छा
0: स्मोकिंग हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनाती है, और फ्री रेडिकल स्पाइन के लिए बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं,
1: जी
0: स्पेशली सर्वाइकल एरिया को, लंबर एरिया को, डिस्क को। डिस्क में वाटर कंटेंट होता है,
1: जी
0: और जैसे भी हम फ्री रेडिकल्स
1: के ऑपरेशन के विषय में जो बातें बताई हैं निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है। आज रीढ़ की हड्डी का जो ऑपरेशन दूरबीन विधि से होता है वो कितना सुगम, कितना सरल है और जीवन को कितना आसान बनाता है, ये आपने समझ लिया होगा। डॉक्टर शकील अहमद साहब, आप न्यूरोसर्जन हैं, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, विशेष तौर से दूरबीन विधि से रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के विषय में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
4: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
5: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
3: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
6: महिलाओं के बांझपन और जठरानी की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
3: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
6: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
3: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
7: श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय था दूरबीन विधि से रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन, शंकाएं व समाधान। आज के विशेषज्ञ थे शकील अहमद। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर।

अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ

भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सुलता देव, डीएम के सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, एआईए डीएम के सदस्य एम थम्बीदुराई, डॉक्टर एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि ये कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, एआईए डीएम के सदस्य एम थम्बीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, आईयूएमएल के हारिस बीरन, यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी और डीएमके सदस्य एल के सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी

की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थीं। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए, देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एफसीआरए विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। डीएमके नेता टीआर बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 वापस

0: की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके के इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है, विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं, 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है, नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृहमंत्री इस पर जवाब दें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, गृहमंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन की ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप से आप अपने स्मार्टफोन पर और DTH पर हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो गए हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं रेणु पांडे के स्वर में भजन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सरस्वती कुमार दीपक की इस रचना के

अभी आप सुन रहे थे रामप्रिया की रचना। कार्यक्रम के आखिर में अब लीजिए सुनिए सीतेश आलोक का लिखा ये भजन।

इस भजन के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज की कलाकार थी रेणु पांडे, इनके स्वर में इस कार्यक्रम में आपने सुने भजन। संगत करने वाले कलाकार थे ढोलक पर अंबुज गुप्ता, हारमोनियम पर इनका साथ दिया सुरेंद्र कुमार सरोज ने, कीबोर्ड पर थे विजय कुमार सैनी और गिटार पर थे सरबजीत सिंह मारवा। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाज।

सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड में सफल हैं तो घबराएं नहीं। एनआईओएस स्ट्रीम 2 में उसी पाठ्यक्रम में माह अक्टूबर नवंबर 2026 की परीक्षा में शामिल हों और दिसंबर 2026 तक परिणाम प्राप्त करें। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 17 अगस्त 2026। अभी लॉगिन करें sdmis.nios.ac.in पर या कॉल करें क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज 0532-254-8154 पर।

किशोर कुमार की आवाज में मेरे जीवन साथी फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ चलते हैं और कार्यक्रम के आखिर में बाजार फिल्म से ये गजल आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और तलत अजीज की युगल आवाजों में।

इस गजल के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति

0: महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी, लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
3: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
4: अरे
5: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
1: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार

0: खोले गए हैं।
1: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बच जाने वाली है।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज फुट ओवर ब्रिज जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
2: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को जयपुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना

0: समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए, वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारीशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

गुमनाम फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी शारदा की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

गीत की तर्ज थी मशहूर सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म थी पाकीज़ा। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। फिल्म माय लव, मुकेश की आवाज, अरुण बख्शी के बोल।

कच्चे धागे इस फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

राजेंद्र कृष्ण की का लिखा गिना हुआ था मदन मोहन का संगीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया के इस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम आपके लिए अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: से गाना सुन लो, उसका अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

0: बजता ही रहूं।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अदाकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था। हवा, हवा।

विक्रम आज समर्पित है एक खूबसूरत अभिनेत्री।

बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गई और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडिचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।

फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।

0: जाए, दोनों आँखें मारो तो छुरपट जाए, छुरपट जाए, दोनों आँखें मारो तो छुरपट जाए, छुरपट जाए।
1: ए पंकज।
2: इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली।

0: मरे।
1: फिल्म जस्टिस चौधरी।
0: मम्मिया मम्मिया प्यार की गाड़ी दे चलाओ, एक्सीलेटर और दबाओ।
2: जिंदगी में मोड़ बहुत है, देखो दिल के तोड़ बहुत है, रास्ता मुड़ जाने वाला है, मेन रोड आने वाला है। स्टॉप
0: लव
2: मम्मिया
0: पम पम
2: मम्मिया
0: पम पम।
1: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।

सन 1987 श्रीदेवी नजर आई बतौर क्राइम जर्नलिस्ट। ये फिल्म थी शेखर कपूर की मिस्टर

0: मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।
1: समझे क्या हो?

जब मिस्टर इंडिया की बात हो तो एक गाने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सरोज खान की कोरियोग्राफी वाला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया।

0: श्री देवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।
2: मेरे

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा गवाह।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर थे।

आदित्य श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गई। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोख, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।

0: था अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण हैं जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। और जब इन मूल्यों में

0: रुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की। तो ये अभियान कैसा रहा, क्या चुनौतियां रही, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का। तो सबसे पहले जब आपको एक एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड
1: कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या? टू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे, तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखने की ये चीज क्या होती है।
0: विभा जी और वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं, तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफर करना था। तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला?
2: तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है। पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए। रही बात भाई एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है। और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है
0: जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ। प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया, या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
3: एक्चुअली ये जो एक्सपीडिशन है, इसकी प्रिपरेशंस 3 साल 4 साल पहले स्टार्ट हुई है, तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है, एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स

0: फॉर आर एक्सपीडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश. तो इनिशियली इट वॉज ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस. तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे और हम 42 टोटली थे फ्रॉम ऑल थ्री सर्विसेज जिन्होंने थ्री फेजेस ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कंप्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ थ्री इयर्स. तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी एयरफोर्स नेवी. पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए. तो एक्चुअली बिकॉज इट इज अ मैसिव थिंग, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड. तो इनिशियल फियर तो रहता ही है.
1: आपसे जाना चाहूंगी विभाजी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
2: देखिए अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी. हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था. इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो. तो जो हमारी ट्रेनिंग थी जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है वो काफी हद तक हमारे काम आई क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है. लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई. जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना दौड़ना रस्सी चढ़ना पुशअप पुलअप मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रांग बनाया गया कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना आए. फिर दूसरा ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है. फिर रही बात हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी तो इसका मतलब हमें बोट क्या होती है कैसे चलाते हैं हवा को कैसे पढ़ते हैं नेविगेट कैसे करते हैं समुद्र में अगर दूसरे शिप्स हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं ये एक एक चीज हमें पढ़ाई गई. और उसके बाद टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज अ टीम आप वहां पे जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई.
1: जी स्क्वाड्रन लीडर वैशाली आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें लेकिन जो सबसे जरूरी होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग. तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको तो मेंटल ट्रेनिंग भी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपीडिशन में?
3: Being from a defense background or wearing a uniform itself, be it army, navy or air force, mentally strong होने की हमें already training दी जाती है. तो यहाँ पे भी वही चीज काम आई. थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कि endurance और stamina की महीनों महीनों तक कुछ ना दिखना कोई color ना दिखना कोई पक्षी ना दिखना इंसान ना दिखना और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी और उसकी बात पूरे 1-1.5 दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके. तो वो चीज ट्रेनिंग करते करते सेलिंग करते करते बढ़ाई गई. अकेलापन फील होना उसकी जो फाइट होती है वो हमने सेलिंग करते करते ही सीखी. बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील की था बाकी सेम.
1: मेजर प्राजक्ता आपका अनुभव कैसा रहा क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी मेंटल ट्रेनिंग भी फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने एक ना आत्मविश्वास बनाए रखना नहीं हम कर लेंगे तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी?
0: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज जब उठ रहे हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम ऐसा नहीं था. बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं हम सो नहीं पा रहे हैं अगले दिन इतना फटीग है हम में. एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन इनफैक्ट पहले भी बिफोर फ्लैग ऑफ हुआ हमारा उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं क्या हम कर पाएंगे या नहीं. बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था एक ही गोल था सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू. इवन अगर आप एक दिन मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो आई नो कि बाकी हैं हु विल लिफ्ट मी अप.
1: टीम वर्क काम आई इस पूरे एक्सपेडिशन में. विंग कमांडर विभा जी जैसे उन्होंने कहा कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था और हम सभी के जहन में ये है कि आप लोग एक शिप में गए हैं बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी तो क्या वाकई में ऐसा था या आपको और भी कई इसको लेकर भी उठने जागने सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
2: जनरली हम फोर्सेस में तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है हमें एक

0: अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, अगर शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहाँ आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है, हमने कहा कोई कुक नहीं होता है। हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी में हमारी पूरी दुनिया थी। और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज्यादा जगह है। और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी है, तो जब समुद्र की लहरें या विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है। तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना खाना पीना जागना कुछ भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है। एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था। धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है, और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रह के सीखा।
1: जैसे खाने के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं, तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
0: फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसा नहीं कि खाना बनाना चाहते, वो उनका पैशन था। तो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट, मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा। तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा आज क्या बनेगा। प्राजक्ता जी ने बोट में समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और हम
1: दिन बन गया,
0: दिन महीने बन गए।
1: ये है मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं, तो जैसे सी सिकनेस की बात की, तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया? तो कोई वहाँ पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
2: हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है उसमें जो तबीयत खराब होती है, और इट इज योर मंथली साइकिल, दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड। एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर, एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है हु इज ट्रेन्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना। वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था, वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं। शी यूज टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है। प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए।
1: तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
3: तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे, उसमें से एक मतलब एवरी डे देर वॉज अ मदर ऑफ द बोट, तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे। बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब 2 ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी, तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी। एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज इन समथिंग, वी ऑल नो एवरीथिंग, तो हमको सब चीज में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है। तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था, इट वाज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए।
1: तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ मालूम था, हाँ। किसी तरह की दिक्कत ना आए।
3: यस।
1: तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था, तो आप किन किन जगहों से गुजरी, कहाँ कहाँ से गए आप?
0: देखिए जब हम सरकम नेविगेशन की बात करते हैं, तो सरकम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं। उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था। तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था। ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल, फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन न्यूजीलैंड में। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया, और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे। तो लकीली हमने पास में एक

0: आइलैंड था तस्मानिया करके, वहां पे हमने हॉल्ट लिया, वो अनप्लान्ड था, बट वहां पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है। उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में, फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए। तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे ही आके खत्म हुआ।
1: विभा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने दो बार इक्वेटर को पार किया, सदर एक बार सदर्न हेमिस्फेयर फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी आपने, बहुत ह्यूमिड भी, गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा, तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुख-दुखी चल रही थी?
0: अभी भी जैसे हम आए हैं, कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो एक साल सेलिंग करके आ गए, बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है। हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ। हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था, लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम दो दो लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना जब हम सदर्न हेमिस्फेयर में गए थे, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे, और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, सेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज। जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे, और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी, हमारा सेल फट गया था, तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी, और हुक्स हमने जब ग्लव से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था 3 ग्लव्स से। हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन हो जाए। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है, तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन्स पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नंब हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम,
1: मतलब एक तो पानी की लहरें, ठंड और हवा, और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
2: नहीं नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों हफ्तों बारिश हो रही थी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके, आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय पिला देता है। ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो तो आप देखोगे क्या, तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि बारिश का पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही है। तो आप मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था।
1: तो मेजर प्राजक्ता, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्ट

0: डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी?
1: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुंचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते उस ड्यूरेशन में।
2: एक्सट्रीम देखा है हमने, एक्सट्रीम मतलब जीरो हवा भी देखी है, जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया, और हमने 60 नॉट्स ऑफ विंड मतलब ऑलमोस्ट 100 प्लस किलोमीटर पर आर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी। तो और मतलब एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हम हमारे हाथ जम गए।
1: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल दिस थिंग। सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया, इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे। आई हैव सर्वड इन थर्ड स्टेज हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है। आई हैव सर्वड इन लद्दाख, वहां पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू व्हाट वी विटनेस्ड हियर। एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊं, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे।
0: आप बताएं स्पॉटेड लीडर वैशाली की, बट नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, तो बीइंग अ वुमन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड?
3: मैं फ्रेंकली ये बताना चाहूंगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है। जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज हमने करी है। हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि मैं पीरियड्स में कैसे करूंगी, मुझे कंफर्ट जोन चाहिए, और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटेलिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटेलिटी, ऑब्वियसली इट बी इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी, आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल। इट इज जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी।
0: विंग कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप थल सेना से हैं, तो वहाँ का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपेडिशन में काम आया हो,
2: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने हमें काफी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है। इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी। पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं, तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है।
0: तो जैसे इतनी चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्राजक्ता? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
1: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे, एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्लीट ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था, एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ खराब हो गया उसका रिपोर्ट रिपोर्टिंग होती थी, एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना, एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5-5 मिनट या 10-10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए। बट ऐसे भी बहुत बार दिन हुए कि नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड बात नहीं हो पा रही है। तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे, बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी, तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ कॉल।
0: तो आपने विशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ, आपका मन किया मैं बताऊं?
3: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। What happens on the boat stays on the boat.
0: तो strong lady, मतलब ये है नारी शक्ति, आज की नारी है जो अपने experience को अपने साहस को साथ लेके हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले चलना जानती है। टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलते हैं। मतलब आपका पड़ाव भी था जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं जिसको, चार देशों में रुका, तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
2: देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट्स लिए थे, जैसे हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि

0: लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीजों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे। अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन चार कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहां पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपनी लाइफ में फील नहीं किया। जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहां पे जो उनका नेवल बैंड था, उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था, और हम सब की आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफशोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत कल्चर है। तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो, और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया। तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज अ विमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे। तो वो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, ये लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ
1: आपने
0: रखेंगे।
1: ये एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज बम्प्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे वैशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए, दर्द से और कठिनाई से चुनौतियों का सामना करते हुए वो
2: नहीं,
1: आंसू नहीं है।
2: उसके कभी नहीं।
1: नानी संदेह साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर आप बताएं मेजर प्राजक्ता, किन किन बातों का ध्यान रखा?
2: मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वॉज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी, तो हम उसको क्रश करते थे। अब एंड उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे तो हमारे पास चार बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे, क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में। एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहां पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे।
1: तो ये बहुत बड़ा संदेश है मतलब सभी के लिए। जी वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो इस दौरान ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें?
3: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, वेदर खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली, वो लगातार चलता रहता था। तो जो मिजरी है ना वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है वो होती थी, वो मुझे याद है, वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हम एक गाना सुन सके, वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था। और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर खराब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा।
1: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो?
2: हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे, एंड दिस वॉज वेन वी वर कमिंग टू मुंबई फ्रॉम केप टाउन। एंड मॉर्निंग आई थिंक 5:30-6 o'clock की बात है, हमें होराइजन पे सनराइज होता हुआ दिख रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन मे को आवाज आती है, बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में, और बहुत ही दूर है ये क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो दूर हमने देखा ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉल्फिन्स, एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले। दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग, क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है।
1: ब्यूटीफुल
0: एक्सपीरियंस।
1: तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहें?
0: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
1: वैशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बीट आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स, किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन।

0: यू कम यू एक्सपीरियंस दिस. सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरी वन, दे शुड ज्वाइन द फोर्सेज.
1: जी, आप क्या कहना चाहेंगी मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द?
2: आई वुड लाइक टू से कि सक्सेस कम्स विथ हार्डवर्क, परसिवेरेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट हैविंग एन ईगो. दिस इज समथिंग विच माई फादर यूज टू टेल मी एंड दिस हैज स्टेड विथ मी बिकॉज आई हैव अ लेटर जो उन्होंने मेरे को दिया था. एंड जब मैंने ये एक्सपीडिशन

0: मेरे को दिया था एंड जब मैंने ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था तो मैंने वो लेटर लेके गई थी एंड दैट इज वॉट केप्ट मी गोइंग थ्रू दिस एंटायर.
1: मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपीडिशन. आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं. आप तीनों का धन्यवाद. आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए.
2: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com.
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी. इस कार्यक्रम की 7वीं रिकॉर्डेड कड़ी. इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है. मीरन वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं. रात्रि के 10:30 हो गए हैं. श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत. इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अभिजीत राय चौधरी का सरोद वादन. कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं राग मियां मल्हार से.

वादन, पहले आपने सुना राग मियां मल्हार और आखिर में आपने सुनी राग देस। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में आप समाचार सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए।